मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज रविवार है, सितंबर 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 10 मई 2026। सवेरे की ठीक 5:56 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से प्रसारण आरंभ होते हैं मंगल ध्वनि के साथ।

0: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे की 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है।

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वंदना कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए आप सुने गौरव कृष्ण शास्त्री की आवाज़ में ये भक्ति रचना।

आइए अब सुने उदित नारायण की आवाज़ में ये भक्ति रचना।

0: अभी आप वंदना कार्यक्रम सुन रही थी। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 6:45 हुए, कार्यक्रम सुने चिंतन।
1: मन को अडोल करने के लिए लंबे समय से अनेक आलंबनों का सहारा लिया जाता रहा है, जैसे किसी मूर्ति का ध्यान करके, किसी मंत्र या नाम को जप करके, किसी रंग रूप आकृति का ध्यान करके, ऐ जपा जाप, खेचरी मुद्रा, अनहदनाद, ज्योतिर्मय स्वरूप विधियों का ध्यान करके। लेकिन अपनी सांस, अपने मन को शुद्ध रूप में अडोल करने का सबसे अच्छा आलंबन है, क्योंकि सांस क्षण प्रतिक्षण हमारे साथ है। मन को अडोल करने के लिए वर्तमान में रहना बहुत ही जरूरी है, और सांस से ज्यादा वर्तमान और कुछ नहीं है। हमारा सांस हमें बाहर से भीतर अपने मन की तलसपरसी गहराइयों तक ले जाने के लिए एक पुल का काम करता है। सांस का हमारे शरीर के साथ बहुत गहरा संबंध है। जब भी कोई अच्छी बुरी मनचाही अनचाही बात होती है तो सांस अपनी स्वाभाविक गति खो देता है, थोड़ा तेज या धीमा सा हो जाता है। लेकिन अपने मन को जो क्षण प्रतिक्षण या तो भूतकाल में जीना चाहता है या भविष्य काल में जीना चाहता है, उसे अपने सांस के सहारे हमें किस प्रकार वर्तमान में स्थित करना है, इसके लिए प्रतिदिन सूर्योदय से आधा घंटा पहले से लेकर के सूर्योदय से आधा घंटा बाद तक, यानी 1 घंटे रोजाना एक ही स्थान पर अपने शरीर को जरा सा भी हिलाए डुलाए बिना कमर को सीधा रखें, गर्दन व चेहरे को शून्य मुद्रा यानी रिलैक्स रखते हुए बैठे रहें। किसी भी अंग में तनाव या खिंचाव न रखें। इन सभी बातों को जांचने के बाद अपना सारा का सारा ध्यान अपनी सांस के आवागमन पर लगाए रखें। जैसे ही सांस अंदर जाए तो यह साफ साफ मालूम पड़ता रहे कि इस क्षण की यही सच्चाई है कि मेरी सांस भीतर जा रही है। अंदर जाती जाती सांस थोड़ी धीमी होकर के क्षण भर के लिए भीतर रुकेगी, और जब सांस भीतर रुकी हुई हो तो हमें पूरा बोध होना चाहिए कि इस समय मेरी सांस भीतर रुकी हुई है। इसी प्रकार जैसे सांस बाहर की तरफ आने लगे तो इसकी भी हमें क्षण प्रतिक्षण जानकारी बनी रहनी चाहिए। भीतर की तरह बाहर भी सांस क्षण भर के लिए रुकेगी। जब सांस बाहर रुकी हुई हो तो भीतर की तरह बाहर भी सांस क्षण भर के लिए रुकेगी। जब सांस बाहर रुकी हुई हो तो हमें स्पष्ट ज्ञान हो कि सांस बाहर के मोड़ पर रुकी हुई है। भीतर बाहर सांस के दोनों मोड़ पर बड़ी सूक्ष्मता के साथ ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार अपने ही सांस की क्षण प्रतिक्षण पहरेदारी होती रहे, प्रत्येक सांस की साफ साफ एवं लगातार जानकारी बनी रहे। इस तरह के अभ्यास से हमारा मन तीक्ष्ण होता जाएगा, एकाग्र होता जाएगा। हमें जानबूझ करके अपने मन में कोई विचार नहीं लाना है। अगर अपने आप कोई विचार आ जाए तो उसका साथ नहीं देना है। हमें अपना ध्यान सांस के आवागमन पर ही लगाए रखना है। यह मन जंगली है, इसे पालतू बनाना है, अपने वश में करना है तो हमें बड़े ही धीरज का परिचय देना

0: जरा सा भी उतावलापन नहीं आने पाए। यहां पर एक बात बड़े ही ध्यान देने की है, यह कामना करना कि मेरा मन टिक जाए, इधर उधर ना भटके, ऐसी कामना ही अपने आप में बहुत बड़ी बाधा है। गीता में लिखा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। अर्थात अपना सारा का सारा ध्यान काम करने के ढंग पर लगाए रखें, परिणाम कुदरत और प्रकृति पर छोड़ दें। ध्यान में सहजता हो, इच्छा है वो बाधा है, जैसे कोई आदमी किसी का नाम भूल जाए, कोशिश करने पर भी नहीं आता।
1: अभी आप चिंतन कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का गार्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 6:50 हुए हैं। आइए अब जाने कार्यक्रम विवरण के बारे में।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर सुनेंगे कार्यक्रम खेती हरा वास्ते। इसमें जानकारी आप लेंगे कंपोस्ट खाद का महत्व और साथ ही हम सुनेंगे लोक भजन। मानस गान भाग संख्या 239 आप सुनेंगे 7:20 पर। सुप्रभात, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 7:30 पर। इसमें आज आप एक हिंदी काव्य पाठ कवि सुरेंद्र सिंह बेनीवाल से आप सुनेंगे और साथ ही हम चर्चा करेंगे जीवन एक आईना, अपने परिवार को महत्व दें, स्वयं के प्रति ईमानदार बने। 8:45 पर सुनेंगे सुगम संगीत का हमारा कार्यक्रम मरुमंगल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 9:10 पर। कलाकार होंगे राजीव खान। 9:30 पर सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम सदाबहार नगमे फरमाइशी गीतों पर आधारित। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 10:00। 11:00 सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। कुछ बातें कुछ गीत आप सुनेंगे 12:05 पर। 12:30 पर सुनेंगे सुगम संगीत का हमारा कार्यक्रम खेत खलियान। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:50 पर। इसमें जानकारी आप लेंगे नरमे की उन्नत खेती। 1:05 पर सुनेंगे महिला जगत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप भेंट वार्ता सुनेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वार्ताकार होंगे पूनम कुमावत से सुमन कंवर बातचीत करेंगे और चर्चा के विषय रहेंगे हमारी बचपन की सखी साइकिल, गर्मी में इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाएं, गर्मी में बालों की देखभाल ठंडक देने वाले डेजर्ट। इस कार्यक्रम में आप जान पाएंगे। 2:30 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी शाम 5:00। इसमें जानकारी आप लेंगे मोबाइल का प्रयोग और सावधानी, डिजिटल शिक्षा, फायदे और नुकसान, दहेज प्रथा एक अभिशाप, नशा मुक्ति और युवा और आज का इतिहास। इस कार्यक्रम में आप जान पाएंगे। शाम 6:05 पर सुनेंगे सराइकी कार्यक्रम। चौपाल कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:00। 7:45 पर सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। एक ही फिल्म से जानकारी और गीत आप सुनेंगे रात्रि 8:00। फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम होता है। ये थे हमारे कुछ खास कार्यक्रम और उनके समय के बारे में जानकारी।

0: क्रीडा वार्तासु इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 77 धावनांकैः पराजितम्। आदौ पणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन 30-200 धावनांकानां विजयलक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेलूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिलग वित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिचिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा।

0: Held in January this year, the successful test positions India at the forefront of advanced aerospace capabilities and continuously emerging war technologies. In IPL cricket, today Chennai Super Kings and Lucknow Super Giants will clash at M.H. Chidambaram Stadium in Chennai at 3:30 p.m. In the second match of the day, Royal Challengers Bengaluru will take on Mumbai Indians in Raipur at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 7:10 हुए हैं। कार्यक्रम सुने खेती हरा वास्ते, इसमें जानकारी आप ले रहे हैं कंपोस्ट खाद का महत्व।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आप सगला आजकल देखने लग रहे हैं माटी की जी उर्वरा शक्ति है बिना बनाए रखने खातर आजकल प्राकृतिक खादा को जो उपयोग है वो दिन ब दिन बढ़ने लग रहे हैं। आप प्राकृतिक खादा में गोबर की खाद होगी, कंपोस्ट खाद होगी और हरी खाद होगी, ए सब बढ़िया है। पिछले कई साल में कंपोस्ट खाद बनाने खातर केंचुओं को प्रयोग होने लग रहे हैं। आप सगला जाना ही है जिकन आप वर्मी कंपोस्ट भी कह देवा। वर्मी कंपोस्ट केंचुआ की मदद बनेड़ी जैविक खाद है जिन्हें किसान भाई आप भी बना सके हैं। इन्हें जरूरी को नहीं कि भाई आपा बाजार में लेगा वहाँ, अगर आपने इनकी सही विधि और सही तरीकों पता हो तो किसान भाई ने आप भी बना सके। तो इनकी विधि के ऊपर जब आप बात करें किसान भाइयों, तो सारों पहले तो आपने अच्छी नमी और बढ़िया तापमान वाली जगह देख कर रखनी है जिनके ऊपर क्या है कि भाई आपा एक छप्पर बना सका या अस्थाई आपा शेड बना सका। इस शेड की लंबाई और चौड़ाई जिकी भी आपा टैंक बनावांगा आपा वर्मी टैंक बिंग संख्या पर निर्भर करेगी। वर्मी टैंक को जिको औसतन साइज है वो भाई लोग 3 मीटर चौड़ो, आधा मीटर गहरो और 10 मीटर लंबो है। वर्मी कंपोस्ट बनाने खातर सामग्री के रूप में आपा वनस्पति कचरो है ना बेने भी इस्तेमाल कर सका, जिया अपने कृषि अवशेष हो गया, अपने केला और बबूल की पत्तियां होगी, दूसरी कोई और हरी और सूखी पत्तियां होगी, सड़ी गली सब्जियां होगी, सड़िया गड़िया फल हो गया और गोबर ऐ में काम में आवे। वर्मी टैंक में भाई लोगों आपा 6 इंच नमी युक्त वनस्पति कचरा की आपा तय लगा देवा सबों पहले, फिर 6 इंच की परत पर लगभग आपा 6 इंच ताई अच्छे सड़े गोबर घाल देवा। ई गोबर की तय पे आपा लगभग 500-1000 केंचुआ प्रति वर्ग मीटर के हिसाब में आपने डालना है। फिर बिंग बाद ई तय पर आपने 1 फुट ऊंची आधी सड़ी और बारीक वनस्पति कचरा की तय लगा देनी है। तो इंग बाद के होसी की ढेर की ऊंचाई होगी लगभग 2-3 फुट तक हो जाएगी। बाद में आपने क्या करना है, इन्हें जूट के बोरों में आपा ढक देना है। कोशिश आपने आई रखनी है कि जिको आपनो शेड है विंग अंदर अंधेरो बने रहे तो बहुत बढ़िया रहोगे, क्योंकि क्या है कि अगर अंधेरो रहे तो भी मके केंचु है जिका ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। तो शेड के ऊपर भी आपा ध्यान रखा, चारों तरफ आपा शेड के आसपास घास फूस लगा के रखा और बोरो लगा के बिना ढक के रखा। फिर जिको आपा टैंक बनाए हुए बेंगे बोरों के ऊपर भी आपा नियमित रूप जरूरत के हिसाब में पानी छिड़कता रहा जगह में क्या है कि बिंगो तापमान भी सही बने रहे, सागे सागे जिकी नमी है वह भी बिंगो ऊपर अच्छी बनी रहे। टैंक को जिको आपा ढेर बनाए हुए अपनो तो भी ढेर ने आपा लगभग 25-30 दिन बाद या तो हाथों या अपना जिको लोहा गुपन जो आवे बिंगो आपा धीरे धीरे बिना पलटता रहे। जिंक क्या है कि जिको आपनो ढेर है बी में थोड़ी बहुत हवा लागती रहे और सागे सागे जिको बिंगो तापमान है वो भी सही बने रहे। अपने वो काम 2-3 बार कर देना किसान भाइयों और लगभग आप यहाँ कह सकें 2-2.5 महीना के अंदर अंदर आपनों जो वर्मी कंपोस्ट है वो तैयार हो जाएगा। अब आपनो वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया तो आप जब इतो काम करने लग रहे हैं तो अब आप देख लेवा कि वर्मी कंपोस्ट को के फायदे है। सब पहले तो किसान भाइयों अपने वर्मी कंपोस्ट जिकी अपनी जमीन है वह भुरभुरी होगी और बिंग सागे सागे जिकी के बिंगी उपजाऊ क्षमता है जिकी वह भी बढ़ेगी। वर्मी कंपोस्ट अपने खेत में नुकसान करने वाली दीमक होगी और बाकी जितने भी जीवाणु है बने भी खत्म कर देवे। जी उनके होगो कि आपने तो कीटनाशक की जिकी लागत है वह भी कम आसी। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग मोबाइल में आपने खेत में जिकी खरपतवार की समस्या है वह भी कम हो जाएगी और जिकी आपने मजदूरी है बिंग लागत में भी कमी आ जाएगी। वर्मी कंपोस्ट प्रयोग करे बाद आप देखा कि 2-3 फसलें तई आपने जिकी जमीन है बीमा जिका पोषक तत्व है वह बढ़िया रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट के आपने जिके बूटा की जिकी जड़ा भी है वह भी सही बनी रहे हैं। जी उनके कि बांगी आपने बढ़वार हुए वह भी बढ़िया हो जाए। यूं के आपने पौधा में जिका पोषक तत्व हो वह संतुलित मात्रा में बने रहे हैं और ऐसे उपयोग के एक तो अपनी जमीन भुरभुरी हो सागे सागे अपने जमीन में जिकी पानी धारण करने की क्षमता है वह भी बढ़ जाए। वर्मी कंपोस्ट में दूसरी खादा की तुलना में आप बात करें तो जितना भी आवश्यक पोषक तत्व है वह ज्यादा मात्रा में हुआ है जिनके कारण के कि दूसरी खादा की तुलना में आ कम मात्रा में ज्यादा फायदा दे जावे। वर्मी कंपोस्ट में भाई लूंगा आप देखा तो नाइट्रोजन लगभग 1-5%, फॉस्फोरस 1-1.5% और

0: पोटास 1.5-2% पोषक तत्व में पाया जावे। सब बड़ी बात करा भाई लोग आप तो वर्मी कंपोस्ट है जिसकी बात पूरी तरीका हूँ आपने पर्यावरण मित्र विधि है। यूं कहे कि आपने कोई भी प्रकार को पर्यावरण ने नुकसान को नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार को आपने प्रदूषण को नहीं हुआ है और कम लागत में आपने बढ़िया अच्छो फायदो देवे, अपनी फसल को उत्पादन बढ़ावे, सागे सागे अपने जिकी जमीन है बींगी भी उपजाऊ क्षमता बढ़ावे। तो किसान भाइयों आ बात आप सारा ने ध्यान रखनी है, पर अब तो टाइम इतो ही है, आगे दो राम राम सा राम राम।
1: कंपोस्ट खाद का महत्व अभी आपने इस कार्यक्रम खेती नवास्था में ये जानकारी ली। आइए अब सुने लोक भजन, कलाकार हैं रामेश्वर प्रजापत।
2: गुरु जी भाई दीवी।

0: काली सबके रे भाई।
1: इसी लोक भजन के साथ ही आज का खेती हमारे कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर यह कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 7:20 हुए हैं। कार्यक्रम आप सुने मानस गान भाग संख्या 239।

भरत के साथ अयोध्या का समस्त समाज अवधपुरी के मार्ग पर उदास लौट रहा है। सभी श्री राम के विरह में विह्वल हैं। ऐसी मनोदशा में स्नान भोजन की सुधि किसे होगी? यमुना, गंगा तथा गोमती को पार कर चौथे दिन लोग अयोध्या पहुंचे। मंत्री गुरुवर वशिष्ठ की देखरेख में भरत को राज्य सौंप सहेज कर मिथिलापति चार दिनों बाद तिरहुत लौट गए। भरत ने श्री राम की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित करके गुरुजन तथा माताओं की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर धर्म की धुरी धारण की। नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर वहां निवास करने लगे।

अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे मानस गान भाग संख्या 239। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। कार्यक्रम आप सुने सुप्रभात।

0: सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को भगवान सिंह का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आइए कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं हिंदी काव्य पाठ कवि सुरेंद्र सिंह बेनीवाल से। आप सुने
1: नमस्कार। मेरी पहली कविता है, इसका शीर्षक है आसान नहीं है औरत होना। कि एक औरत रोज सुबह जल्दी उठकर जब झाड़ू लगाती है, उसकी आहट हर सुबह मुर्गे को जगाती है। सुबह से शाम तक, तारों की छांव से तारों की छांव तक चुपचाप जुटी रहती है काम में एक औरत हर गांव में। पशुओं को चारा डालने, दूहने, पानी भरने और घर का हर काम करने के बाद भाता लेकर जाती है। पूरा दिन खेत कमाती है, शाम को लौटने पर फिर वही पारी, पशुओं की नीराचारी, गोबर बुहारी, फिर वही काम की मारामारी। दूहने से लेकर पूरा पशुपालन, बच्चों का लालन पालन, चूल्हा चौका, झाड़ू पोछा, बर्तन भांडे और कपड़े धोना, फिर वही दिनचर्या, सबसे अंत में खाना, सबसे अंत में सोना। आसान नहीं है एक औरत होना। न लोभ लालच न पगार है, न लोभ लालच न पगार है, यह एक औरत का घर के प्रति प्यार है, बड़ी भूमिका निभाती है। औरत जो मकान को घर बनाती है, वो औरत का घर के सदस्यों को एक माला में पिरोना आसान नहीं है एक औरत होना। वो घूंघट, वो पर्दा प्रथा, वो रस्म रवायत दस्तूर, वो बंदिशों में मजबूर, वो परंपराओं की पाबंदियाँ, वो पुरातनवादी पहरा। कि वो घूंघट, वो पर्दा प्रथा, वो रस्म रवायत दस्तूर, वो बंदिशों में मजबूर, वो परंपराओं की पाबंदियां, वो पुरातनवादी पैरा, वो रूढ़िवादिता का रोना, रीति रिवाज और परिपाटी के नाम पर अंधेरा ढोना, आसान नहीं है एक औरत होना। कि बंदिशों की बेड़ियों से आजादी का शांत संग्राम है औरत, कि बंदिशों की बेड़ियों से आजादी का शांत संग्राम है औरत। धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा, संघर्ष, शांति तमाम है औरत। त्याग, तपस्या, बलिदान और समर्पण का दूसरा नाम है औरत। माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार, गली मोहल्ले, सखी सहेलियों और पीहर से वो भावनात्मक विदाई, बहुत कुछ बुलाना, बहुत कुछ खोना, आसान नहीं है एक औरत होना। कुछ जख्म जो समय के साथ भरे हैं, कुछ जख्म जो समय के साथ भरे हैं, अंदर से आज भी हरे हैं, और जिन जख्मों पर सामाजिक पहरे हैं वो जख्म ज़्यादा गहरे हैं। संविधान में दर्जा है बराबरी का, पर आंकड़ों की दुनिया में हर बात नहीं होती, और ज़मीन से जुड़े बगैर सच से मुलाकात नहीं होती। सब्र के इम्तहान के बहुत पड़ाव पार किए हैं, कि सब्र के इम्तहान के बहुत पड़ाव पार किए हैं। किस किस को अनसुना करें, वो बातों के बहाने, तंज और ताने, वो तर्क इन बातें, वो झूठे फंसाने, या फिर वो कटाक्ष करना और कांटे चुभना, वो फब्तियाँ कसना और थूक बिलोना, आसान नहीं है औरत होना। आसान नहीं है एक औरत होना। मेरी दूसरी कविता है माँ। उम्र के जिस पड़ाव पर मैं खड़ा था, उम्र के जिस पड़ाव पर मैं खड़ा था, लोगों की नजरों में बड़ा था, उम्र कम नहीं थी मेरी, यह बात मैं बखूबी जानता था। कि उम्र कम नहीं थी मेरी, यह बात मैं बखूबी जानता था, पर जब तक माँ

ही खुद को बच्चा ही मानता था। अब सुनने वाले हैं सब, अब सुनने वाले हैं सब, घर में बात काटने वाला नहीं है, इसे संवाद कैसे कहूँ, मुझे कोई तू कहकर डांटने वाला नहीं है। हर किसी बड़े को यों तू कैसे कह दूँ, हर किसी बड़े को यों तू कैसे कह दूँ, यह बेहद खास सम्मान है, इसकी हकदार या तो माँ है या फिर भगवान है, या फिर भगवान है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है माँ भाग दो, कि मैं बचपन में जब भी ठोकर खाकर गिरता तो माँ कहती कि चींटी मर गई। मैं बचपन में जब भी ठोकर खाता तो माँ कहती कि चींटी मर गई, पता नहीं हर बार चींटी पर ही क्यों गिरता, मचलता था किसी चीज के लिए बार बार तो माँ कहती कि बिल्ली ले गई, तो कभी कहती कि चिड़िया ले गई, और रोने पर माँ कहती कि चुप हो जा नहीं तो हाउ आ जाएगा। ये सब सुनकर मैं रोना और मचलना भूल जाता, हालांकि मैंने न कभी चींटी मरी देखी, न बिल्ली या चिड़िया को कुछ ले जाते देखा और न ही हाउ देखा, फिर भी एतबार किया, एक बार नहीं हर बार किया, क्योंकि माँ ने कहा था। माँ का लगाया जो काजल का टीका था, जिसके आगे हर ताबीज फीका था, चोट पर माँ ने जो फूंक मारी थी वो हर मरहम पर बारी थी, कि चोट पर माँ ने जो फूंक मारी थी वो हर मरहम पर बारी थी, और पता नहीं माँ की लोरी में कौन सी लय और सुरताल थी, माँ की लोरी कमाल थी, पढ़ी लिखी नहीं थी माँ, पढ़ी लिखी नहीं थी माँ, पर समझ व्यापक थी, माँ खामोशियों की पाठक थी, मेरी नज़र पहचान लेती थी, मेरी इच्छाएं जरूरतें सब जान लेती थी, कि मेरी नज़र पहचान लेती थी, मेरी इच्छाएं जरूरतें सब जान लेती थी, स्कूल से भले ही अनजान थी पर माँ पूरा मनोविज्ञान थी, स्कूल से भले ही अनजान थी पर माँ पूरा मनोविज्ञान थी, माँ महान थी, मेरा पूरा जहान थी, सब कुछ थी माँ, माँ मेरे लिए भगवान थी, माँ मेरे लिए भगवान थी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है साक्षर, कि पत्थर दिल है मार्मिक नहीं है, कि पत्थर दिल है मार्मिक नहीं है, दकियानुषी है तार्किक नहीं है, धैर्य का दामन छोड़ चुके हैं जिनके संवेग दम तोड़ चुके हैं, भ्रमित होने के आदि हैं घोर निराशावादी हैं, कि भ्रमित होने के आदि हैं घोर निराशावादी है, ईर्ष्या क्रोध गुरूर सहनशीलता से दूर है, कान के कच्चे हैं पूर्वाग्रह के शिकार हैं, मौका प्रस्त है गैर जिम्मेदार है, न स्वाभिमान न जमीर है, बेताब हैं अधीर हैं, बदले की भावना है प्रतिशोध की कामना है, माना कि वो बड़े हस्ताक्षर हैं पर शिक्षित नहीं साक्षर है, पर शिक्षित नहीं साक्षर है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है शिक्षित, कि अक्षरों से अनभिज्ञ है पर खामोशियां पढ़ना जानता है, कि अक्षरों से अनभिज्ञ है पर खामोशियां पढ़ना जानता है, लगाता है तीर निशाने पर यूं खाक नहीं छानता है, आंख कहां किस हद तक खोलनी है परिस्थितियां पहचानता है, रखता है नजर पैनी हर पहलू पर अनदेखी करना बखूबी जानता है, कि आंख कहां किस हद तक खोलनी है परिस्थितियां पहचानता है, रखता है नजर पैनी हर पहलू पर अनदेखी करना बखूबी जानता है, भरोसे नहीं छोड़ता किसी के कुछ भी, कि भरोसे नहीं छोड़ता किसी के कुछ भी, मोर्चा खुद संभालता है, दृढ़ निश्चय है पार लगाकर ही लेता है दम, जो मन में ठानता है पढ़ने नहीं गया कभी, पढ़ने नहीं गया कभी, स्कूल का रास्ता भी नहीं जानता है, भले ही बारीकी से पढ़ा है जिंदगी को पर जमाना निरक्षर ही मानता है, कि भले ही बारीकी से पढ़ा है जिंदगी को पर जमाना निरक्षर ही मानता है, जिंदगी के अनुभवों से प्रशिक्षित है साक्षर नहीं है पर शिक्षित है, साक्षर नहीं है पर शिक्षित है। धन्यवाद।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोता, अंतराल से पहले गीत आपने सुना राजा उरंक, और लता मंगेशकर की आवाज में गीत आपने सुना, और इससे पहले एक वार्ता, अभिन्न वार्ता आपने सुनी कवि सुरेंद्र सिंह बेनीवाल से, हिंदी काव्य पाठ आपने सुना, बड़ा ही सुंदर काव्य पाठ था। और आइए बात करें, जीवन एक आईना है। श्रोता, हमारा जीवन हमारे विचार, कर्म, दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है, आईना है। यह वही दिखाता है जो हम देखते हैं। यदि हम सकारात्मकता देखेंगे तो खुशियाँ मिलेगी, और यदि निराशा देखेंगे तो नकारात्मकता ही हमें मिलती है। यह सुविचार हमें आत्म परीक्षण के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम खुद को बदलकर जीवन बेहतर बना सकें। हम दुनिया के प्रति जो नज़रिया रखते हैं, दुनिया हमारे प्रति वैसा ही व्यवहार करती है। हमारे अच्छे या बुरे कर्म ही अंत समय में हमारे सामने स्पष्ट होकर आ जाते हैं। अगर आप मुस्कुराएंगे तो जिंदगी भी आप पर मुस्कुराएगी। यह हमें अपनी गलतियों को सुधारने और व्यवहार बदलने के लिए भी प्रेरित करती है। ये कहावत हमें याद दिलाती है कि हमारी सोच में भी हमारी शक्ति छिपी है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही काम हो जाता है। ये हम सभी जानते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण से जो विचार है वो सकारात्मक ही आएंगे, सारे काम अच्छे होते हैं।

अगर हमारे मन में नकारात्मकता आती है तो धीरे धीरे एक व्यक्ति उसी नकारात्मक में चला जाता है, सारे काम गलत होने लगते हैं। तो हमेशा सकारात्मक विचार रखें, अच्छे विचार रखें, क्योंकि जीवन एक आईने की तरह साफ है। जैसा हम कुछ सोचते हैं, जैसा हम कुछ मानते हैं, वैसा हो जाता है। आइए सुने ये गीत, बात हम और भी करेंगे।

में खाना खाएं, बात करें, एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और हमेशा सुख दुख में काम आए, सम्मान करें, निस्वार्थ प्रेम जताएं और ख़ास तौर पे बच्चों को अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्य हमें परिवार में देना चाहिए, क्योंकि परिवार ही समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, इकाई है, जो हमें पहचान और स्थिरता प्रदान करती है। कहते हैं कि पहली जो शिक्षा है हमें स्कूल से मिलती है, पाठशाला से मिलती है, और दूसरी जो शिक्षा प्रारंभ होती है व्यक्ति की, वो परिवार है। परिवार में अगर व्यक्ति संस्कार सीख लेता है, वो जीवन पर्यंत वही बना रहता है। अच्छे संस्कार ही हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायी स्रोत के रूप में सामने आते हैं। बात हम और भी करेंगे, आइए सुनाइए गीत।

श्रोता अंतराल से पहले गीत आपने सुना, फिल्म का नाम था दो बहनें और इसे गाया था प्रदीप ने। बात करें अपने परिवार को महत्व देने की, श्रोताओं परिवार ही जीवन की असली पूंजी, शक्ति, सुरक्षा है। इसे प्राथमिकता देना सुखद और सफल जीवन की नींव होती है। निस्वार्थ प्रेम संस्कार हर सुख दुख में भावनात्मक सहारा देते हैं। परिवार के साथ गुणवत्तापूर्वक समय हमें बिताना चाहिए, उनके साथ बातचीत करें और उनके सहयोग की सराहना करें। काम के बीच में परिवार के लिए समय निकालें।

श्रोताओं, गीत आपने सुना वास्तव फिल्म से हमने लिया था और इसे गाया था सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति ने, गीतकार समीर और संगीत जतिन ललित का था। बात करें स्वयं के प्रति ईमानदार होने का, श्रोताओं, अपने वास्तविक भावनाएं, खुशियां, कमियां और लक्ष्यों को बिना किसी दिखावे या बहाने से हमें स्वीकार करना चाहिए। यह आत्म जागरूकता सफलता और मानसिक शांति की नींव है जो आंतरिक संघर्ष को कम कर बेहतर निर्णय लेने में हमारी मदद करता है। अपनी कमजोरियों और गलतियों को पहचानने और स्वीकार करें। दिन भर की अपनी भावनाओं और कार्यों का विश्लेषण करने के लिए हमें समय निकालना चाहिए। पहचाने कि आप वास्तव में जीवन से क्या चाहते हैं, न कि दूसरों के द्वारा तय किए गए रास्ते।

रास्ते पर हमें चलें चलना चाहिए। स्वीकार करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, भले ही वह भावना असहज हो। अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करें, लेकिन उनके परिणामों को जिम्मेदारी भी हमें लेनी चाहिए। आत्म सम्मान बढ़ता है और अनिश्चितता कम होती है अगर हम अपने प्रति ईमानदार होते हैं। बड़ी मानसिक शांति मिलती है। अपनी वास्तविक स्थिति जानने के लिए आप सही फैसले ले सकते हैं। जब आप खुद के साथ सच्चे होते हैं तो दूसरों के साथ भी बेहतर संबंध बना सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है। अगर हम सत्कर्म और अच्छे विचार अगर हम अपने मन में रखते हैं और वैसे ही विचार अगर हम प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं किसी को, या किसी के साथ जीवन बिताते हैं, तो वो हमारे लिए बड़ा ही फलदायी और सुखदायी होता है। आइए सुने ये गीत।

0: बन होता है या आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगी समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मामकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
5: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार

0: लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
2: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
6: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
7: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज

0: मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कंबस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त, अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ

0: boxers advanced to finals of Asian Boxing Under 15 and Under 17 Championships in Tashkent. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरा करेंगे। वो हैदराबाद में तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए की मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के क्याम के 45 साल पूरे होने की तकरीबात में शिरकत करेंगे। टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय को आज सुबह तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का वजीर आला मुकर्रर किया है। मरकज ने जाब्तों की इशात के साथ मेहनत से मुतालिक 4 जाब्तों को नाफिज कर दिया है। डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट कम्बस्टर के तवील दौरानिए के तजुर्बे के जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल की तैयारी में बड़ी कामयाबी हासिल की है और 9 भारतीय मुक्केबाज ताशकंद में 15 साल और 17 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वजीर आजम बेंगलुरु में तकरीबन 11 बजे दिन में द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के क्याम के 45वें साल के तकरीबात में शिरकत करेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नए तामीरशुदा ध्यान मंदिर का इफ्तिताह भी करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के अकीदतमंदों से खिताब करेंगे और अहाते में नए तामीर करदा ध्यान मंदिर या मेडिटेशन हॉल का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी दिमागी सेहतमंदी, देही तरक्यात, फितरत के तहफ़ और समाजी बुनियादी ढांचे से मुतालिक मजकूरा फाउंडेशन के साल भर तक जारी रहने वाले प्रोजेक्टों का भी आगाज करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर जाने से कबल वजीर आजम HAL हवाई अड्डे पर BJP के रहनुमाओं और कारकुनों से खिताब करेंगे। बेंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैदराबाद रवाना होंगे, जहां वो दोपहर तकरीबन 3 बजे लगभग 9,400 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। तमिलनाडु वेत्री कशगम TVK के बानी सी जोसेफ विजय आज रियासत के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनकी हलफ बर्दारी की तकरीबात आज सुबह 10 बजे नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुनाकिद होगी। रियासत के गवर्नर विश्वनाथ आर्लेकर जनाब विजय को ओहदे का हलफ दिलाएंगे। पार्टी जराये के मुताबिक उनके साथ 9 वजीर भी हलफ लेंगे। चेन्नई में इस तकरीब के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि उनकी हलफ बर्दारी की तकरीबात में कसीर तादाद में लोगों के आने की तवक्को है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: चेन्नई सुपर किंग्स का शहर आज 51 साल जोसेफ विजय के लिए बिगुल बजाएगा, जो इस तकरीब की मरकजी शख्सियत होंगे। आज रियासत की राजधानी हल्की बारिश और बूंदाबांदी के साथ नए वजीर आला का खैर मकदम कर रहा है। 34% से ज्यादा मैंडेट हासिल करने वाले नीज कई कामयाब फिल्मों में अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाले विजय अब वजीर आला बनने जा रहे हैं। उनके वालिद SA चंद्रशेखर फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पू से अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिनमें सियासी मुकालमे भी शामिल थे। 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली TVK ने कांग्रेस, VC के बाएं बाजू की पार्टियों और IUML की हिमायत से अक्सरियत हासिल की है। हुकूमत की तश्कील के लिए उन्हें 5 दिन तक मुसलसल बातचीत और मीटिंगें करनी पड़ी। अपनी मकबूलियत और करिश्माती शख्सियत के बायस विजय ने पहली ही कोशिश में तारीख रकम करते हुए वजीर आला का ओहदा हासिल कर लिया। उंगा विजय नान वारेन उनका इंतखाबी नारा था, जिसके जरिए उन्होंने कामयाबी हासिल की। अब इस नई हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा आवाम लेंगे, जिन्होंने उन्हें मैंडेट दिया है। तमिलनाडु से जुआ की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगास्वामी को पुदुचेरी के वजीर आला के तौर पर मुकर्रर किया है।

0: इस तकरूरी के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन ने रंगासामी को मरकज के जेर इंतजाम इलाके में नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदु किया है। 13 मई को जनाब रंगास्वामी वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। गुज़िश्ता 9 अप्रैल को मरकज के जेर इंतजाम इलाके में हुए इंतखाब में AINRC की क़यादत वाले NDA की आसान जीत हासिल करने के बाद जनाब रंगास्वामी 5वीं मुद्दत कार के लिए वजीर आला का ओहदा संभालेंगे। चुनाव के नतीजों का ऐलान 4 मई को किया गया था। आसाम बीजेपी कानून साज पार्टी आज गुवाहाटी में अपने रहनुमा का इंतखाब करने के लिए मीटिंग करेगी। बीजेपी के 9 मुंतखब अरकान असेंबली आज सुबह 9 बजे अटल बिहारी वाजपेयी भवन में मीटिंग करेंगे। इस दौरान आसाम में एनडीए सरकार की मुसलसल तीसरी मुद्दत कार के लिए हलफ बर्दारी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग बीजेपी के मरकजी मुशाहिदीन जगन प्रकाश नड्डा और उनके साथी मुशाहिद नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में मुनक़िद होगी। मीटिंग के बाद एनडीए कानून साज पार्टी की मीटिंग भी इसी मकाम पर होगी। इसके बाद एनडीए कानून साज पार्टी हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश करने के लिए गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगी। इस दौरान 12 मई को मुनक़िद होने वाली हलफ बर्दारी तकरीब के लिए खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में तेज़ी से तैयारियाँ जारी हैं। कामरूप मेट्रोपॉलिटन ज़िला इंतजामिया ने इस दिन के लिए शहर में ट्रैफिक के जाब्ते भी जारी कर दिए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करने की तवक्को है। इसके अलावा बीजेपी के इकतदार वाली मुख्तलिफ रियासतों के कई वज़राए आला और मरकजी वज़रा को भी इस अहम तकरीब में मदऊ किया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: कांग्रेस पार्टी की आला क़यादत ने कल नई दिल्ली में केरला में हुकूमत की तश्कील पर तबादला ख्याल के लिए एक मीटिंग की। ये मीटिंग कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर बुलाई गई थी, जिसमें सीनियर रहनुमा राहुल गांधी, पार्टी की रियासती इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दीपा दास मुंशी, जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और केरला के सीनियर रहनुमा रमेश चैनीथाला और VD सतीसन ने शिरकत की। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी केरला के नए वजीर आला के बारे में हतमी फैसला करेंगे और बहुत जल्द नाम का ऐलान किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने तमाम मरकजी वजारतों, महकमों, खुद मुख्तार इदारों और मरकजी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज CPSEs में काम करने वाले आउटसोर्स्ड और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के तहफ़ को नुमाया तौर पर मजबूत करने के लिए इकदाम किए हैं। लेबर कोड्स की तामील को सरकारी खरीदारी और बोली लगाने की अहलियत से बराह रास्त मुंसलिक कर दिया गया है, ताकि उजरतों की अदायगी में ताखीर और कानूनी वाजिबात की अदम अदायगी जैसे मसाइल को रोका जा सके। इन हिदायत में इस बात का इरादा किया गया है कि पेशे से मुतालिक तहफ़ हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 के सेक्शन 55(3) के तहत ये प्रिंसिपल आजिर की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि ठेकेदार बर वक्त उजरत अदा करे। इन हिदायत में कोड ऑन वेजेस 2019 के सेक्शन 17(1) का भी हवाला दिया गया है, जो उजरतों की अदायगी के लिए वक्त की हद मुकर्रर करता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: नया फ्रेमवर्क 4 लेबर कोड्स के तहत मजदूरों के तहफ्फुज़ के तसव्वुर को अमली शक्ल देता है और साथ ही उजरत की बरवक्त अदायगी और सोशल सिक्योरिटी के वाजिबात जमा कराने में नाकाम रहने वाली फर्मों के लिए सख्त सजाएं बशमूल ब्लैक लिस्टिंग और काम से रोकने जैसी दफात मुतारफ़ करवाता है। जुमे को जारी करदा नई हिदायत के तहत तमाम वजारतों, महकमों, आइनी व खुद मुख्तार इदारों और मरकजी पब्लिक सेक्टर इदारों को हिदायत दी गई है कि सख्ती से इस बात को यकीनी बनाएं कि ठेकेदार मुकर्रा वक्त के अंदर उजरतें तकसीम करें। हिदायत के मुताबिक रोज़ाना की उजरत शिफ्ट के अख्तिताम तक हफ्तावार उजरत, हफ्तावार छुट्टी से पहले 15 रोज़ा उजरत, 15 दिन ख़त्म होने के 2 दिन के अंदर और माहाना उजरत अगले महीने की 7 तारीख तक अदा की जानी चाहिए। हुकूमत ने मज़ीद हिदायत दी है कि उजरतों की अदायगी सिर्फ बैंक ट्रांसफ़र या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाए और ठेकेदारों के लिए ये लाजमी है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO ने हैदराबाद में अपने एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कम्बस्टर का तवील दौरानी का एक जामी टेस्ट कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया।

0: या है। वजारत दिफा ने बताया कि इस तजुर्बे के दौरान 1,200 सेकंड से जायद का रन टाइम हासिल किया गया, जो रवां साल जनवरी में किए गए 700 सेकंड के पिछले टेस्ट से कहीं ज्यादा है। ये कामयाब तजुर्बा भारत को जदीद एरोस्पेस सलाहियतों और मुसलसल उभरती हुई जंगी टेक्नोलॉजीज में सफे अव्वल में खड़ा कर देता है। वजारत ने मजीद बताया कि ये कम्बस्टर DRDO की लेबोरेटरी DRDL ने सनअती शराकत दारों के तआवुन से तैयार किया है। इस कम्बस्टर में मकामी तौर पर करदा माई हाइड्रोकार्बन ईंधन, जदीद थर्मल बैरियर कोटिंग और मैन्युफैक्चरिंग की जदीद टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं। मुकद्दस सोमनाथ मंदिर रूहानियत और पायदार सियाहत के आलमी मरकज के तौर पर अपने जदीद सफर के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन होने के नाते उनकी क्यादत में मंदिर अपने सुनहरे दौर में दाखिल हो गया है। अपनी मजहबी अहमियत से हटकर सोमनाथ माहौलियाती तहफ्फुज में एक अलमबरदार के तौर पर उभर रहा है, जिसका मकसद कार्बन के सिफर अखराज वाला भारत का पहला मंदिर बनना है। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: मिशन लाइफ पहल के तहत मंदिर फूलों के फजले को खाद में और प्लास्टिक के फजले को पेवर ब्लॉक्स में तब्दील करके पायदारी में मेयारात कायम कर रहा है। इसके अलावा जदीद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बारिश के पानी को जखीरा करने के निजाम और मियावा की जंगलात के साथ मंदिर का ट्रस्ट तेजी से कार्बन के सिफर अखराज की तरफ बढ़ रहा है। इस डिजिटल पहल से अब दुनिया भर के अकीदतमंद ना सिर्फ घर बैठे पूजा बुक कर सकते हैं, बल्कि मंदिर का प्रसाद भी हासिल कर सकते हैं। ये कदीम रिवायात को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मिलाने की एक बेहतरीन मिसाल है। आज वंदे भारत और बैन अक्वामी हवाई अड्डों समेत आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी से लैस इस मुकद्दस मंदिर में हर साल 97 लाख से ज़्यादा अकीदतमंद पूजा अर्चना करने आते हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के तआवुन से गुज़श्ता रोज नई दिल्ली में माइंड एक्टिवेशन थ्रू एजुकेशन मेट काउंसलर्स कॉन्क्लेव का इनेकाद किया। ये तकरीब प्रोजेक्ट मेट की तौसी की अलामत है, जो कि एम्स नई दिल्ली की जानिब से तैयार करदा नौमरों के फलाह बहबूद का एक प्रोग्राम है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कल ट्रिनिडेड एंड टोबेगो में वाक़ नेल्सन आइलैंड का दौरा किया, जहां उनके हमराह वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर भी मौजूद थी। नेल्सन आइलैंड वो मकाम है जहां ठेके पर भारतीय मजदूर पहली बार ट्रिनिडेड एंड टोबेगो पहुंचे थे। अमरीका ने H-1B वीजा प्रोग्राम के तहत मुलाजिम की खिदमात हासिल करने के लिए अदा की जाने वाली कम अज कम उजरत में पहले से तयशुदा हद से 30% इजाफा करने की तजवीज पेश की है। मुक्केबाजी में ताशकंद में जारी 15 साल और 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत की 15 साल से कम उम्र की लड़कियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 9 मुक्केबाज अलग अलग जुमरों में फाइनल में पहुंच गई हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने मगरबी बंगाल में हुकूमत की तश्कील की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब की इस सिलसिले में शह सुर्खी है, शुभेंदु अधिकारी ने वजीर आला के अहदे का हलफ लिया, मगरबी बंगाल में पहली बार BJP की हुकूमत। इसी अखबार की एक सुर्खी है, तमिलनाडु में काफ़ी उथल पुथल के बाद विजय की हुकूमत साजी का रास्ता साफ। वजीर आजम का तेलंगाना दौरा, हैदराबाद में 9,400 करोड़ रुपए के मंसूबों का आगाज़ करेंगे। इस खबर को अखबार प्रताप ने नुमाया तौर पर शाया किया है। सभी अखबारात ने लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यन के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और वाइस एडमिरल स्वामीनाथन के बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर होने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। मुतअद्दिद दिफाई आदाब को निशाना बनाने वाले जदीद अग्नि मिज़ाइल के कामयाब तजर्बे से मुतल्लिक खबर को भी हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप समेत दीगर अखबारों ने बड़ी खबर बनाया है। अखबारात की अहम बैन अल-अक़वामी खबरें इस तरह हैं, लबनान में इसराइली फ़ौज के हमले जारी, मजीद 31 अफराद हलाक, मुख्तलिफ गाँव को खाली करने का हुक्म।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वो हैदराबाद में तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए की मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। TVK के सरबराह सी जूसफ विजय को आज सुबह तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने N. रंगास्वामी को पुदुचेरी का वजीर आला मुकर्रर किया है।

ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 8:45 हुए हैं। कार्यक्रम आप सुने हैं सुगम संगीत का। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद।

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का, कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के गाए कुछ भक्ति गीत।

इसी वक्त के साथ ही आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे की 9 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारी जयपुर केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया। समग्र बौद्धिक विकास पर आज नई दिल्ली में परामर्शदाता सम्मेलन का आयोजन। प्रदेश भर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने अदालत में राजीनामे के जरिए लगभग 47 लाख मामलों का निस्तारण किया गया। और मातृत्व दिवस पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि श्री सुब्रमणि पदभार ग्रहण करने के साथ ही सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। केंद्र ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को अगला नौसेना प्रमुख भी नियुक्त किया है। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि भारतीय सेना के अनुभवी और प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। वे वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय

0: में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत है। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में काम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे वहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करने का कार्यक्रम है। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की है। समग्र बौद्धिक विकास पर आज नई दिल्ली में परामर्शदाता सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से ये आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। बोर्ड ने बताया कि इस परियोजना के दूसरे चरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 60 से अधिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य और परामर्शदाता भाग लेंगे। ये परियोजना इस साल जुलाई से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लागू की जाएगी। इसके तहत कल्याण मॉड्यूल, सहकर्मी सहायता गतिविधियां और अभिभावक सहभागिता कार्यशालाएं शामिल हैं। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भिवाड़ी में जलभराव की समस्या के निवारण के लिए 34 एमएलडी का एसटीपी प्लांट तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन इसी सप्ताह मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेंगे। इसके अलावा सीईटीपी से पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन डालने का काम भी जल्द शुरू होगा और नेशनल हाईवे 919 की समस्या का भी समाधान जल्द किया जाएगा। श्री यादव कल अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार हर क्षेत्र में प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वे अलवर जिले के विकास के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे।
1: भिवाड़ी की जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है पानी की है। हमने 34 एमएलडी का जो संयंत्र है वेस्ट पानी का, उसको कंप्लीट कर लिया है और माननीय बालकनाथ जी के साथ जो एक काम पूरा हुआ है, इसी हफ्ते में मुख्यमंत्री जी को बुला करके उसका उद्घाटन करेंगे। पानी को निकालने के लिए जो पाइपलाइन का विषय है उसकी भी पैसा आवंटन करा दिया है और उसका भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी से करा के ये काम हम करेंगे। और जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसका भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी डीपीआर तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहला काम तो इसका 2/3 हिस्सा तो अब उद्घाटन हो जाएगा, 1/3 हिस्से का टेंडर हो जाएगा और बाकी बचा हुआ एनएचआई से भी हम जल्दी से जल्दी पूरा कराने का काम।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अजमेर के एक दिन के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे पुष्कर क्षेत्र के कडेल गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में भाग लेंगे। चौपाल में श्री शर्मा ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री का कल गांव का भ्रमण कर स्थानीय व्यवस्थाओं और विकास कार्यों के अवलोकन का भी कार्यक्रम है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश भर में आयोजित इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत प्रदेश में राजीनामे के जरिए कुल 46,91,311 मामलों का निस्तारण किया गया। इनमें 7,15,00,000,000 रुपए से अधिक के अवार्ड जारी किए गए। लोक अदालत में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने उपस्थित पक्षकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस अदालत के माध्यम से ऐसे मामलों को तय किया जाता है जिसे पक्षकार का समय और दोनों बचाया जा सके। कई पक्षकारों के बीच सिविल और छोटे आपराधिक प्रवृत्ति के मुकदमे आपसी राजीनामे से सुलझाए जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहाँ 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहाँ प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। प्रदेश भर में आज मातृत्व दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। ये दिन माताओं के योगदान को सम्मान

0: देने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि ममता, त्याग और समर्पण की सबसे पवित्र भावना है। उन्होंने कहा कि माँ हमारे जीवन की पहली गुरु होती है जो हमें संस्कार, साहस और सही मार्ग पर चलना सिखाती है। मातृत्व दिवस पर पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज मदर्स डे के अवसर पर पूरा प्रदेश अपनी माताओं के सम्मान में भावनाओं के रंगों से सराबोर है। कहीं बच्चे अपनी माँ को उपहार दे रहे हैं तो कहीं माँ के सम्मान में कार्यक्रम और समारोह रखे जा रहे हैं। माँ वह कविता है जिसे शब्दों में पूरा नहीं लिखा जा सकता। वह घर की धड़कन है जो अपने सपनों को चुपचाप बच्चों की मुस्कान में बुन देती है। उसकी दुआएं जीवन की हर कठिन राह को आसान बना देती हैं। आज का दिन केवल उत्सव नहीं बल्कि उस अनकहे प्रेम को महसूस करने का अवसर है जो माँ हर दिन बिना किसी अपेक्षा के हमें देती है। आइए इस विशेष अवसर पर हम अपनी माताओं को केवल धन्यवाद ही नहीं बल्कि सम्मान, समय और अपनापन भी दें। प्रदेश की सभी माताओं को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार कक्ष से ज्योति पारीक।
0: प्रदेश में मौसम के दो रूप देखने को मिल रहे हैं। पश्चिमी जिलों में लगातार मौसम शुष्क बने रहने से भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। वहां अधिकतम तापमान एक बार फिर 45 डिग्री तक पहुंच गया है। कल बाड़मेर में पारा 46 डिग्री सेल्सियस रहा। जोधपुर, बीकानेर, फलौदी और चित्तौड़गढ़ में पारा 43 डिग्री से ज्यादा रहा। वहीं कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं बादल गरजने के साथ आंधी चली और बारिश हुई। नागौर के मेड़ता में 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। हालांकि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल और परसों बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
2: आगामी 2-3 दिनों में और 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने और पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन हीट वेव का दौर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में अगले 2-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा केवल उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में 11, 12 और 13 मई को मेघ गर्जन और कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया। समग्र बौद्धिक विकास पर आज नई दिल्ली में परामर्शदाता सम्मेलन का आयोजन। प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे के जरिए लगभग 47 लाख मामलों का निस्तारण किया गया। और मातृत्व दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का गार्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे की 9:10 हुए हैं। कार्यक्रम सुने मरुमंगल। कलाकार हैं राजीव खान।

श्रोता हम कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मरुमंगल, कलाकार हैं राजीव खान, कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। इस समय ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे मरुमंगल, कलाकार राजीव खान। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 9:30 हुए हैं। आइए कार्यक्रम सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, गीत आपने सुना, फिल्म का नाम अनाड़ी। इसे गाया था उदित नारायण ने और गीतकार समीर थे और संगीत आनंद मिलन का था। आइए अब सुने बंदिश फिल्म का ये गीत अलका याग्निक, कुमार सानू की आवाज़ में।

0: आइए अब सुने आमिर खान अलका याग्निक की आवाज़ में सरफरोश फिल्म का ये गीत आप सुने। गीतकार समीर हैं और संगीत जतिन ललित का है।
1: माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
2: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
1: सुना।
2: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

श्रोतों, गीत आपने सुना होगी प्यार की जीत फिल्म से, और इसे गाया था उदित नारायण ने। आइए अब सुने दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म का गीत। आप सुने कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में।

श्रोताओं, गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 10 बजे हैं। कार्यक्रम आप सुने, सदाबहार नगमे।

सदा भानक में सुनने वाले सभी श्रोताओं को भगवान सिंह का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और हम तक ये संदेश पहुँचे हैं रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित,

खुशी गोस्वामी। मानपुर साबित ज़िला मुरादाबाद से शेख जियारुद्दीन रहमान, शेख हबीब रहमान। और ये संदेश हम तक पहुंचा है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ से ये संदेश हम तक पहुंचा है विक्रम कड़वास्तरा, सचिन, सतीश, योगेश, यौधव कड़वास्तरा, कुंदन, लीलाधर, कृष्ण, किराड़ूराम जोहिया, हनुमान सहन, सुनील पाईवाल। हनुमानगढ़ से ये संदेश है सुल्तान सिंह, कृष्ण, मुकेश, रामचंद्र, कांता चौधरी, कपिल। बेहरवाला खुर्द सिरसा से ये पत्र है बलवंत जाखड़, ममता, प्रिया, हिमानी जाखड़, शिवम जाखड़। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, रेखा, जसवीर, गगन, सोनी, सीता और गीता। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म कभी कभी का ये गीत मुकेश की आवाज़ में।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: अंतराल के बाद स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। ये संदेश हम तक पहुंचा है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार, सौरभ डोडी, गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से। ये संदेश है मोनिका।

प्रेम सहारण, मनीष सहारण, नई बस्ती गज मुंडवावरा से ये पत्र है मोहम्मद यासीन, नजमा मोहम्मद तौसीफ तैमूर, गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश, रजत और बेबी गरिमा, चंडीगढ़ से ये संदेश है सतीश अनेजा, विमला अनेजा, मैन बाजार कुड़लवाड़ी महाराष्ट्र से ये पत्र है गंगाधर, प्रमोद और प्रदीप का, और ये संदेश हम तक पहुंचा है गांव खोखरावाली श्री गंगानगर से विनोद बरासा, विशाल, विकास, रोशनी, शगुन बरासा, गांव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढुकिया, प्रमिला ढुकिया, ज्योति, सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु, शिवम ढुकिया, भोलागढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, छींपा, कपिल, ईरान, छींपा और पूजा परिहार, दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से ये पत्र है हरिमणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र और इनके परिवार के लोग, रिंगणी छत्तीसगढ़ से ये पत्र है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, और गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ से ये वेद मिढा, अलका मिढा। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म अनोखी अदा का ये गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

जनकपुरी सहारनपुर से ये संदेश हम तक पहुंचा है जॉन डेक्रेस्ट्रो, रोजी पर्ल और वैलिस डेक्रेस्ट्रो, और ये संदेश हम तक पहुंचा है बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित और तानिया। और ये संदेश हम तक पहुंचा है नारगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, योगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। डबाकी रोड अकोला से सुशीला देवी, सदानंद कुमार, गौरव, आरव और अर्पिता। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से संदेश हम तक पहुंचा है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, मिड्डा बजाज। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, श्रवण रणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम, किरोड़ीवाल। श्री कर्णपुर से पवन कटारिया, शालू कटारिया, खमीर, क्षमा करें समीर। और ये संदेश हम तक पहुंचा है रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान, हनुमानगढ़ टाउन से ये संदेश हम तक पहुंचा है। फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिरसला जिला चूरू असन से ये संदेश है संदीप सिंह, सोनगरा, प्राची, सोमल, कार्तिक। जोरड फार्म हाउस गांव बहलोल नगर से ये संदेश हम तक पहुंचा है नरेंद्र जोरड, भीमसेन, लोकेश, गौरव, पुनीत, पुनीता और आरविका। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म मजबूर का ये गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

ये संदेश हम तक पहुंचा है शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता गौरव, ईशान, कार्तिक सैनी और दुर्गा कॉलोनी हांसी से ये संदेश हम तक पहुंचा है राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। हयात कॉलोनी अटरिया बिहार से ये संदेश है फैसल, इमाम मोहम्मद, मोहम्मद अकमल, नफीसा, प्रवीण और वड़िंगखेड़ा पंजाब से मीटू, थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा। पटेल नगर मालोट से ये पद संदेश है डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू,

और गुड्डू, शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि, दीपाली, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा, झारखंड से ये संदेश हम तक पहुंचा है और ये संदेश हम तक पहुंचा है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, हरदेव मीका, बलविंदर वीरक, जीतेक वीरक और मीका वीरक का। सोलापुर महाराष्ट्र से ये संदेश पहुंचा है गणेश, आम्रपाली और आरव का। मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगहत परवीन, सहनाज, फरदीन सुहान, उमरकोट मोहल्ला, चौकुंठी, बुलंद शहर से ये संदेश हम तक पहुंचा है। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म मीरा का मोहन का ये गीत, अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडेकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमई कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। और ये संदेश हम तक पहुंचा है दादा बाबू रोड झारखंड से, मोहम्मद यासीन साइना हसन बाबू बेबी चाहत। और ये संदेश मरहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन, शहनाज नावेद सुहेल रसीद सिकंदर और इशरत का। और मोहम्मद कलीम जहिरा, मोहम्मद अयान यासीन कोटवा नैन पट्टी से। ये पत्र है ओम प्रकाश, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवदा जिला गाजीपुर से। ये पत्र है प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। और ये संदेश पहुंचा है सैफुल्ला सबाहत कीरत हुजरे रेहान शेख रायपुर से, कालनौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नीतिक और मयंक शर्मा। शिरवानी स्कूल उत्तर प्रदेश से पत्र है आफ्ताब रियाज, मोहम्मद अनवर और आली अंसारी का। बहलोल नगर से हरीश हैरी, जगतार, सुशील डेलू, राकेश चाहर। और ये संदेश हम तक पहुँचा है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, मंगला, पद्मा टाकिज, नेपानगर, मध्य प्रदेश। ये पत्र संदेश हम तक पहुँचा है डोंगरा गांव छत्तीसगढ़ से। संदेश है राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय। जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ये संदेश है रिजवान खान, आयाशा, सबीहा, अनस और रेहान का। और तेलंगाना निज़ामाबाद से ये संदेश हम तक पहुँचा है शेख अल्लाह बख्श का, बेगम रबिया, शेख रहीम, दानिश का। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से संदेश हम तक पहुंचा है नवदीप येले, विश्वदीप और अशोक येले का। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म रोटी का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

ये संदेश हम तक पहुंचा है प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, दीपेंद्र, कुलदीप, दमन, बुच्चो कैंचिया, बठिंडा पंजाब से ये संदेश हम तक पहुंचा है। आरनपुर मध्य प्रदेश से संदेश है जय मंत्री, कैवट, अंजलि, रुद्राणी, कृष्णा। गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा से ये संदेश पहुंचा है प्रताप जिनागल, इंद्रा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदीव। और ये संदेश हम तक पहुंचा है गांव पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश। शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान, इन्होंने नाम नहीं लिखा अपने कोई शहर का। और ये संदेश पहुंचा है नावीड एताला महाराष्ट्र से, संदेश है शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल, शुभम, कुमारी दुर्गेश्वरी,

और ये संदेश हम तक पहुंचा है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला मंजुला राठौड़, विशाल और निशा का। बीड शहर महाराष्ट्र से संदेश आनंद किशोर, संगीता घाटे, साक्षी, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल और धनंजय। लखवाली हैड से मास्टर भंवरलाल, कृष्णा, सौरभ, विशाल, राजबाला, नव्या, लक्षिता, ममता, मोहम्मद, रफीक। संगरिया से मुकना राम, महावीर लोहरा। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म धड़कन का ये गीत। इसे आवाज़ दी है नुसरत फ़तेह अली खान ने और गीतकार हैं समीर और संगीत है नदीम श्रवण का।

और ये संदेश हम तक पहुंचा है 365 हेड मूलचंद नायक जगदीश कल्पना चित्रांश प्रवीणा मनीष और करणपुर से ही अनिरुद्ध सेखों ने भी संदेश हम तक पहुंचाया है। उत्तम नगर दिल्ली से ही बोधराज खौरवाल कमला रानी गीतिका भानु प्रकाश और ये संदेश हम तक पहुंचा है। कभी रेडियो श्रोता संघ हैं बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर अजय देव तामुरिया डॉली राधिका प्रभा देवी मास्टर अल कबीर और ये संदेश हम तक पहुंचा है। ग्राम पंचायत काले गांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे डॉक्टर प्रशांत कुमार सचिन कुमार प्राथमेश प्रणाली सर्वद और सान्विका और ये संदेश हम तक पहुंचा है। भूपेंद्र सुथार शिवरतन गंगाराम श्याम मिड्ढा कैलाश मिड्ढा जिला हनुमानगढ़ से ये संदेश हम तक पहुंचा है। और विजय पाटिल पद्माबाई पाटिल चिरंजीव ज्ञानेश्वर पाटिल कुमारी तेजस्वनी और समस्त पाटिल परिवार अड़गांव तालुका भोकरदन जिला जलाना महाराष्ट्र से ये संदेश हम तक पहुंचा है। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म हम साथ साथ हैं का ये गीत। इसे गाया हरिहरन प्रीतम राव ने और साथ ही हैं वैष्णवी संतोष तिवारी। आइए सुने आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से, और ये हम तक संदेश पहुंचा है विजय पाटिल सो पद्माबाई पाटिल महाराष्ट्र से। ये पत्र संदेश हम तक पहुंचा है। सनी कंबोज, मनिंदर, तरसेम, जसविंदर, गांव सुलर, जिला पटियाला से संदेश हम तक पहुंचा है। और पायला कला जिला बालोतरा राजस्थान से ही संदेश है मोहनलाल प्रजापत, माणक उषा, बाला देवी प्रजापत, मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी शिवन्या, अन्नु गोस्वामी, उच्च भट्टी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से ही संदेश हम तक पहुंचा है। और एमएलबी रोड ग्वालियर से ही संदेश है सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आशीष, एस के, हैप्पी खुराना, मायापुरी कॉलोनी श्री विजयनगर से ही हनुमान तिवाड़ी, मंजुल बाला, दीक्षा, कन्हैया, रेशमी, राजकुमार, सुमन देवी, आदित्य, प्रतीक, राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला टुटेजा, गुड्डू, जीनू, मनु, शिव सेठी, करणपुरी, स्माइल टुटेजा, पाल मिस्त्री, करणपुरी, पवन गुज्जर, गोविंदगढ़ मांझी वाला, श्री करणपुर से संदेश हम तक पहुँचा है। जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से संदेश है मनोज नामदेव, मयंक नामदेव, खुशबू नामदेव, राहुल नामदेव, ममता नामदेव। और नागेश्वर नगर नारविल महाराष्ट्र से ये संदेश है एस नवाकर, निर्मला, विशाल, मलाकपुर से नारायण, राजकुमार, आशीष, महेश गेट, नाभा, जिला पटियाला पंजाब से संदेश है शुभमदत्त, कैरवा, ज्योति रानी, गुरमत कौर। और नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ से ये संदेश है रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश और मदन लाल वर्मा का। गांव भोमपुर राजेसर से रायसीनगर से ये संदेश है समाज सेवी सुनील डाका, मोहन लाल जी जांगीर, परवीन जी सरावगी, चेतन राम जोशन और आकाशवाणी रेडियो श्रोत संघ सभी रायसीनगर के। चक 5 MD पत्रोड़ा से मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी, अंकुर जनागल, डॉक्टर सुनीत जनागल। बोरसरा नेला छत्तीसगढ़ से ये संदेश है प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांश साहू। गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से संदेश है सतवीर सिंह बिजरानिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा अर्जू, नव्या बिजरानिया का। और जिला श्री गंगानगर से ये संदेश है डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, बिमला सोनू, बमना ममता, मोक्ष विक्रम जयपाल। ढाणी लाल खां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ से संदेश है मास्टर मुकेश, सुथार, कृष्णा, बबीता, रविंद्र।

महेंद्र अशोक और गौरव का। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म प्यार झुकता नहीं का ये गीत, लता मंगेशकर और समीर कुमार की आवाज़ में।

जिस संदेश हम तक पहुंचा है, संजय ढिंगिया नमन अपार ढिंगिया का, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा। चक 14 PS BC कुलदीप सिंह, राजविंदर, संदीप, जसकरण सिंह, हरदीप, मनराज, विर्क और उनके परिवार के लोग, गांव जाखो, जरासन से ये संदेश है। शंभू दयाल, विमला, अमरजीत, सुंदर, योगीश, दीपक, कुमारी पूजा खटक, और ये संदेश हम तक पहुंचा है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। ये संदेश है सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश बेबी वेदही जोशी, रेणु शर्मा, रुद्र शर्मा, विशेष वंदना, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। ये संदेश हम तक पहुंचा है मुंगेर भागलपुर बिहार से। ये संदेश है कुमार रामदेव, सुनीता देवी, कुमार अमित, पुष्पा देवी, आकाश और वाणी, पीएलएस सैनी सॉन्ग। ये संदेश हम तक पहुंचा है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। तुलसी मस्कीन बीना आशीष चैतन्य चंडीगढ़ से। राहुल खुराना, रचिता खुराना और रिधान खुराना, और

गांव ढाणी लालखां, तहसील नोहर से जिला हनुमानगढ़ से संदेश है मास्टर मुकेश सुथार, कृष्णा बबीता, रविंद्र, महेंद्र, अशोक और गौरव का। और ये पत्र हम तक कुछ पहुँचे हैं। अभिषेक श्रीवास्तव हिमानी, श्रीमती हेमलता श्रीवास्तव, सतीश श्रीवास्तव का, जिला 12 से। आप सबकी पसंद सुने फिल्म लता मंगेशकर की आवाज़ में शागिर्द फिल्म का ये गीत आप सुने।

जीवन मृत्यु फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और इसी गीत के साथ ही आज का सदाभर नगमे कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मुझे दें इजाज़त, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सदाबहार नगमे सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं लक्ष्मी। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज मदर्स डे पर हम सम्मान और आभार प्रकट करते हैं उस ममता की मूर्ति को, जिसके आंचल में पूरी दुनिया की शांति बसती है, उस माँ को जिसकी दुआओं से हमारी हर राह आसान हो जाती है, माँ जो स्वयं धूप में जलकर भी बच्चों को छांव देती है, जो अपने सपनों को त्याग कर परिवार के सपनों को आकार देती है, जिसका

प्रेम निस्वार्थ है, अटूट है और अनंत है। माँ के इसी असीम प्रेम, भावनात्मक जुड़ाव, त्याग, शक्ति और समर्पण को नमन करते हुए आइए आज के इस संगीतमय सफर की शुरुआत करते हैं।

श्रोताओं, अभी आपने अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में बेटा फिल्म का गीत सुना। गीत के बोल समीर के थे और संगीत आनंद मिलन का।

लीजिए सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में ये वादा रहा फिल्म का गीत। गीत के बोल गुलशन बावरा के हैं और संगीत आदि बर्मन का।

अभी आपने जानी दुश्मन फिल्म का गीत सुना। आवाज़ें किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की थी। गीत की बोल वर्मा मलिक के थे और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था सूर्या। गीत के बोल संतोष आनंद के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने संतोष फिल्म का गीत सुना। आवाज़ें लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की थी। गीत के बोल संतोष के थे और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आपने मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक को सुना। फिल्म का नाम था बीवी हो तो ऐसी। गीत के बोल हसन कमाल के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

श्रोताओं, अभी आपने अभिजीत और साथियों को सुना। फिल्म का नाम था दस्तूर। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के थे और संगीत दिया था आनंद मिलन ने।

अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था लाल दुपट्टा मलमल का। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के थे और संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर आप कार्यक्रम सुनेंगे कुछ बातें कुछ गीत। सुगम संगीत का समय रहेगा 12:30 पर। खेत खलियान कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:50 पर। इसमें आज जानकारी का विषय होगा नरमे की उन्नत खेती।

बहनें अपना कार्यक्रम महिला जगत सुनेंगी दिन में 1:05 पर। इसमें आज आप सुनेंगे हमारी बचपन की सखी साइकिल गर्मी में इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाएं, गर्मी में बालों की देखभाल और ठंडक देने वाले डिजर्ट। साथ ही भेंटवार्ता सुनेंगे आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर। वार्ताकार होंगे पूनम कमावर से सुमन कंवर की बातचीत।

युवाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5 बजे। इसमें आज आप सुनेंगे मोबाइल का प्रयोग और सावधानी, डिजिटल शिक्षा के फायदे और नुकसान, दहेज प्रथा एक अभिशाप, नशा मुक्ति और युवा, और आज का इतिहास।

सराइकी का समय रहेगा शाम 6:05 पर। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम आप हमारे जयपुर केंद्र से सुनेंगे 6:40 पर।

चौपाल कार्यक्रम आप सुनेंगे 7 बजे। इसमें आज आप सुनेंगे सब्जियों की खेती में ध्यान देने योग्य बातें, बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय, पशु चारे के लिए ज्वार की खेती, मौसम और बाजार भाव।

फिल्म संगीत का समय रहेगा 7:45 पर। फिल्म संगीत एक ही फिल्म से आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। सुगम संगीत आप सुनेंगे 9:15 पर।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम के साथ मैं लक्ष्मी आप सबका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, लफ्ज़ जब रूह से निकलते हैं तो असर रखते हैं, सिर्फ कहे नहीं जाते, दिलों में उतरते हैं। कुछ अल्फाज वक्त के साथ मिट जाते हैं, पर कुछ कैफी आज़मी बनकर अमर हो जाते हैं। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं उस फनकार को जिसने फिल्मी गीतों को महज धुनों का सहारा नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें साहित्य की ऊंचाई, शायरी की गहराई और इंसानी जज्बातों की सच्चाई दी। कैफी आज़मी के गीतों में प्रेम है, विरह है, इंतजार है, मिलन है, समाज की टीस है और जीवन का दर्शन है। उनकी कलम ने यह साबित कर दिया कि गीत भी कविता हो सकते हैं और कविता भी जन जन की जुबान बन सकती है। वो शायर नहीं एहसास थे, वो गीतकार नहीं एक आवाज़ थे, जो हर दिल की धड़कन में आज भी साज है। आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं

इस गीत से कि मुस्कान कभी दर्द की चादर भी होती है, चेहरे पर उजाला भीतर गहरा समंदर भी होता है, जो हंसते हैं अक्सर वही सबसे ज़्यादा छुपाते हैं, कैफी ऐसे चेहरों की खामोशी पड़ जाते हैं। तो सुनते हैं अर्थ फिल्म का ये गीत, आवाज़ जगजीत सिंह की, गीतकार कैफी आज़मी।

दोस्तों, जब दिल की बेचैनी आवाज़ तलाशती है तो धड़कनों की लय भी गज़ल सी लगती है। कैफी के शब्दों में ठहराव भी है और तड़प भी। तो लीजिए, सुनिए अनुपमा फिल्म का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की, संगीत हेमंत कुमार का, गीतकार कैफी आज़मी।

वाकई में ये गीत नहीं, दिल की धीमी सी दस्तक है जो देर तक सुनाई देती है। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, हंसते जख्म फिल्म से, कि कभी कोई यूं ही मिलता है राहों में जैसे भटके मुसाफिर को मंजिल मिल जाए। मिलन की खुशी को कैफी ने दर्शन बना दिया। इस गीत के गायक हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, संगीत मदन मोहन का।

दोस्तों, कुछ रिश्ते सांसों जैसे होते हैं, जिसके बिना जीवन अधूरा लगता है। कैफी ने रिश्तों की सच्चाई को गीत बना दिया। सुनते हैं बावर्ची फिल्म का ये गीत, आवाज़ मना देगी।

दोस्तों, रास्ते चलते चलते जब कोई दिल में उतर जाए तो सफ़र महज सफ़र नहीं, इश्क बन जाता है। तो सुनते हैं पाकीज़ा फ़िल्म का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की, गीतकार कैफ़ी आज़मी।

दोस्तों, गीत थम जाते हैं मगर एहसास चलते रहते हैं। शायर चला जाता है मगर उसके अल्फाज सांस लेते रहते हैं। कैफी आज़मी कोई नाम नहीं, एक एहसास है जो हर दिल की धड़कन में आज भी गूंजते हैं। आज के इस भावपूर्ण सफ़र में हमने कैफी साहब के शब्दों की रोशनी को महसूस किया। मैं लक्ष्मी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।

अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे कुछ बातें कुछ गीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे गजल गायक जगजीत सिंह को।

श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलियान।

किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आपा देखा यहाँ कि अब कणक और चना का बड़ खाली हो ही गया और अपना किसान भाई लोग है जगह सावणी की फसल की बिजाई शुरू कर देगा। अपनी हाड़ी का बड़ जिया ही खाली हो तो अच्छी तरह से आपा बाढ़ ने गहरी जुताई करके छोड़ देवा ताकि अपनी जमीन में और माटी में जगह कीड़ा कंटा हुए और खरपतवार का बीज हुए वे नष्ट हो जाए। सावणी की फसल में अपना भाई लोग है जगह इन क्षेत्र में नरमे की बिजाई सांगोपांग करे। नरमे की खेती खातर आपा ने जमीन सुधार करनो जरूरी है सा। इनके अलावा आपा ने टेम सारू खेत को चुनाव कर लेनो चाहिए। किसान भाइयों नरमे की खेती वास्ते मध्यम किस्म की भूमि ज़्यादा फायदेमंद मानी जाए। सफाई रेतली भूमि नरमे की खेती खातर उपयुक्त कौन मानी जाए। इनके अलावा किसान भाइयों जठे ज़्यादा पानी इकट्ठो रेवे और जठे क्षारीय भूमि है बीज यहाँ आपा ने नरमे जैसी फसल की बिजाई नहीं करनी चाहिए। अब बात करें खेत की तैयारी की तो जको खेत नरमे खातर पड़त रखेड़ो है बिंगी तैयारी पिछली फसल काटता ही शुरू कर देनी चाहिए। कणक के बाद नरमे की फसल लेन खातर कणक की फसल काटता ही अपन ने नरमे की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और टाइम पर खेत ने दो तीन बार जुताई करके खेत तैयार कर लेनो चाहिए। किसान भाइयों कणक की फसल काटने के बाद एक गहरी जुताई माटी पलटन वाले हल से कर देनी है और बाद में कल्टीवेटर से दो तीन जुताई अपन ने और करनी है ताकि अपनी ज़मीन की माटी की भुरभुरी हो जाए और माटी रल मिल जाए। तो इन तरिया से आपा ने बिजाई से पहली खेत तैयार करना है। किसान भाइयों अब बात करें आपा भूमि उपचार और रूणी के बारे में तो नरमे की फसल खातर आपा ने रूणी गहरी सिंचाई करके काटनी चाहिए और रूणी करने के बाद जुताई करने से पहली दीमक प्रभावित खेत में आपा ने उचित उपचार है जो वो कर लेना चाहिए। बुवाई आपा दिन के ठंडे टाइम या आथण के टाइम करा तो बढ़िया रहे क्योंकि खेत की नमी भी बनी रहेगी और बीज को जमाव भी अच्छो होवेगो। किसान भाइयों जके खेता में बालू रेत उड़ने से पौधा खत्म होने की समस्या है बैठे हाड़ी की फसल काटने के बाद बिना जुताई करे डंठल छांट के रूनी करनी चाहिए जिसे अपनी फसल को बचाव हो सके। और जठे तक बुआई के टाइम की बात है तो नरमे की बुआई आप सही टाइम में 1 मई से 20 मई तक कर सका। पर अपना किसान भाई अलग अलग किस्म लेके बुआई कर भी दी है लेकिन किसान भाइयों बुआई से पहले अच्छी किस्म का उन्नत बीज लेके फिर ही बुआई करनी चाहिए और आप बेई किस्म लेवा जकी खातर कृषि विशेषज्ञ राय देवे। इनके अलावा बीज उपचार भी करना जरूरी है ताकि की भी तरियांगो रोग कीट अपनी फसल में न लगे। बीज उपचार खातर आप गंधक और तेजाब भी इस्तेमाल कर सका। 10 किलो बीज खातर 1 लीटर गंधक और तेजाब लेके बीज उपचारित कर लेवा। किसान भाइयों गंधक और तेजाब से बीज उपचारित करने खातर आप माटी या प्लास्टिक को बर्तन ले लेना है और 1-2 मिनट बाद बीजा ने अच्छी तरह से साफ पानी शुद्ध होके फिर बुआई कर देनी है। इनके अलावा किसान भाइयों बीज के अंदर कई बार गुलाबी लट

को भी प्रकोप दिखाई देवे तो इंगी रोकथाम खातर 40 किलो बीज 3 ग्राम एल्यूमिनियम फास्फाइड शू कम से कम 24 घंटा तक धूमित करा। जे किसान भाइयों धूमित करना संभव न है तो बीज ने तेज धूप में कम से कम 6 घंटा तक अच्छी तरह फैला के रखना है। इनके अलावा किसान भाइयों नरमे के बीज ने 5 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड 70 WS या फिर 4 ग्राम थायोमिथोग्जाम 70 WS शू भी उपचारित कर सका, जिस रस चूसक कीट और पत्ती मरोड़ वायरस को प्रकोप कम कर सका। इनके अलावा किसान भाइयों जड़ गलन रोग की रोकथाम खातर नरमे बिजाई शुपेली 6 किलो जिंक सल्फेट प्रति बीघा की दर शू माटी में मिला देना चाहिए, और जठे ज़्यादा प्रकोप है तो खेत की जुताई शुपेली 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम 50 किलो गोबर की खाद में अच्छी तरह मिला के 10 से 15 दिन तक छाया में रख देवा, और ये मिश्रण ने रूणी करता टाइम माटी में अच्छी तरह मिला देवा। किसान भाइयों बीज की मात्रा की जठे तक बात है तो नरमे खाता 4 किलो प्रमाणित बीज प्रति बीघा के हिसाब से राखनो है। बीज लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में बीजना चाहिए और कतार से कतार की दूरी 67 सेंटीमीटर रखनी है। और सिंचाई की किसान भाइयों बात करा तो नरमे की फसल में लगभग 6 सिंचाई की जरूरत पड़े। पहली सिंचाई बुवाई से 30 से 35 दिन बाद कर सका और बाद की सिंचाई 20 से 25 दिन के अंतराल पर करता रहना है। जे आपने कने पानी की व्यवस्था कम है तो 5 सिंचाई से भी काम आप चला सका। किसान भाइयों हाइब्रिड नरमे में बूंद बूंद सिंचाई ज़्यादा फायदेमंद रहे। इनके अलावा नत्रजन और पोटाश की मात्रा 6 बराबर भागा में बांट के 2 सप्ताह के अंतराल पर आप दे सका। इस के होवे के पैदावार बढ़ने के सागे सागे पानी की भी बचत होवे और उत्पादन भी अच्छा होवे और रोग कीड़ा कांटा भी कम लागे। तो आम बातों को ध्यान रखना ऐसा। अब बात करें किसान भाई नरमे की अच्छी उन्नत किस्म की तो अपने ही क्षेत्र में किसान भाई बांध बांध की किस्म लेके बीजांत कर सके। जी हाँ, RS 2013 आ किस्म एक अच्छी और उन्नत किस्म है। ये किस्म के पौधों की लंबाई 125 से 130 सेंटीमीटर होवे। इनकी पत्तियाँ मध्यम आकार की हल्के हरे रंग की होवे और इनके फूलों की पंखुड़ियाँ को रंग पीलो होवे। किसान भाइयों इन किस्म में 2 से 3 एकांक्षी शाखावां और फलदायक शाखावां होवे। फसल 165 से 170 दिन में पाक के तैयार हो जाए। इनके अलावा इन किस्म में सुंडी कम लगे और आ किस्म पत्ता मरोड़ विषाणु के प्रति सहनशील होवे। औसत उपज की बात करें तो आपने 23 से 24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 6 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से पैदावार मिल सके। किसान भाइयों RS 2013 किस्म आप जठे सिंचाई की व्यवस्था ज़्यादा है बठे बीज सका, क्योंकि ई किस्म की फसल अच्छी होवे। और ई किस्म की एक खास बात आ भी है कि जठे सेमग्रस्त क्षेत्र है बठे भी आप इन्हें बीज सका, क्योंकि सेमग्रस्त भूमि में RS 2013 अच्छी पैदावार देवे। जगह क्षेत्र में पानी भूमि से 125 से 175 सेंटीमीटर के बीच में है बठे आप 3 सिंचाई में भी ई किस्म ने पैदा कर सका। जी हाँ, पहली सिंचाई 45 दिन बाद, दूसरी सिंचाई फूल आने पर और तीसरी सिंचाई टिंडा बनता टाइम देगे फसल ले सका। यही ही एक RS 810 किस्म है। ई किस्म के पौधा की लंबाई 125 से 130 सेंटीमीटर होवे। फूल पीले रंगा होवे और टिंडा को आकार की छोटो होवे। जी हाँ, कह सका के 250 से 3.5 ग्राम गो एक टिंडो होवे। किसान भाइयों इनमें रेशे की लंबाई 24 से 25 सेंटीमीटर और ओटाई 33 से 34% तक होवे। आ किस्म 165 से 175 दिन में पाक के तैयार हो जाए। 24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ईशू आप उपज ले सका। आ किस्म यानी RS 810 पत्ती मरोड़ रोग के प्रति सहनशील होवे। आपने ई क्षेत्र में किसान भाई RST 9 किस्म की बीजांत भी कर सके। किसान भाइयों ई किस्म के पौधों की ऊंचाई लगभग 130 से 140 सेंटीमीटर तक होवे और फूल पीले रंगा होवे। रेशे की लंबाई 24 से 25 सेंटीमीटर और टिंडा को आकार मध्यम होवे यानी 2.5 से 3 ग्राम को एक टिंडो होवे। इनमें 4 से 6 एकांक्षी शाखावां होवे। पत्तियां को रंग हल्को होवे। किसान भाइयों आ किस्म पकाव में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगावे। आ किस्म 160 से 200 दिन में पक के तैयार हो जाए। और इनकी एक खासियत आ भी है कि तेलो जका ने आप जेसीड भी कह देवा इन किस्म में कम लगे। किसान भाइयों इन किस्म में ओटाई 2% भी दूसरी किस्म से ज़्यादा होवे। RS 875 किस्म की बात करें तो इन किस्म के पौधे की लंबाई 100 से 110 सेंटीमीटर तक होवे और इनमें पत्तियां चौड़े आकार की गहरे हरे रंग की होवे। किसान भाइयों आ किस्म एकांक्षी शाखा वाली किस्म है। टिंडा मध्यम आकार का होवे। इन किस्म में रेशे की लंबाई 27 मिलीमीटर और ओटाई यानी बिनोड़ा में 23% तक तेल की मात्रा होवे। ई किस्म को फायदा ओ भी है कि आप हाड़ी की बिजाई भी टाइम पर कर सका। तो आ किस्म किसान भाइयों
આપણે ખાતર

0: बढ़िया किस्म है, फायदाड़ी किस्म है, इनके अलावा मरु विकास किस्म है, इन आपा RHS भी कह देवा। आ किस्म एक संकर किस्म है। इन किस्म में पौधे की लंबाई 135 से 145 सेंटीमीटर तक होवे। पत्तियां औसत आकार की होवे और हल्के हरे रंग की होवे। इन किस्म में किसान भाइयों फूल हल्के हरे रंग का होवे और 3 से 4 एकांक्षी शाखावां इन किस्म में पाई जावे। टिंडांग आकार मध्यम होवे और एक टिंडा का वजन लगभग 4.5 ग्राम होवे। इनमें रेशे की लंबाई 27 मिलीमीटर तक होवे। तो आ किस्म लेगे भी आपा नरमे की बिजाई कर सका। तो इन तरह अच्छी अच्छी किस्मा लेगे और उन्नत बीज लेगे आपा नरमे की बुवाई कर सका। लेकिन किसान भाइयों, बीज खरीदता टाइम बीज की थैली ने अच्छी तरह जांच परख करके फिर ही बीज लेने। ज़्यादा पुरानो और ख़राब बीज नहीं खरीदना है। बीज खरीदने के बाद बिल जरूर लेना है ताकि आपने की भी तरह को नुकसान न हुए। बीज ने उपचारित भी करना है और सागे सागे माटी जांच और पानी जांच भी करवा लेवा तो अच्छी बात है ताकि आपने अच्छी पैदावार मिल सके। ज़्यादातर आपने जैविक खेती का नहीं ध्यान देना जरूरी है। रासायनिक खाद दवाई कम इस्तेमाल करनी है। तो आ सगली बातों को ध्यान रख के आप अच्छी पैदावार अच्छी उपज ले सका। पण अब मैं खेत का नहीं चालू सा। राम राम सा, राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलियान। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

फिल्म संगीत या आकाशवाणी जगह छू का चक्र नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपये की हैं। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के संस्थापक सी जोसेफ विजय ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। श्री विजय की टीवी के पार्टी को 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 108 सीटें मिली हैं और उन्होंने 120 विधायकों का समर्थन जुटाया है। श्री विजय 1967 के बाद राज्य के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो किसी भी द्रविड़ पार्टी से नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक रूप से दी जाने वाली राशियों के भुगतान में चूक कम हो सकेगी। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की

0: बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार समावेशी और समान शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। झुंझुनू के बगड़ कस्बे में करीब 150 साल पुरानी फतेह सागर और भूतनाथ तालाब अब नए स्वरूप में नजर आएंगे। केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के तहत करीब 1,38,00,000 रुपए की लागत से दोनों तालाबों के कायाकल्प का काम शुरू हो गया है। परियोजना के तहत तालाबों के घाटों और सीढ़ियों का पुनरुद्धार किया जाएगा। तालाबों के जीर्णोद्धार से स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश भर में आज मातृत्व दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। ये दिन माताओं के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि ममता, त्याग और समर्पण की सबसे पवित्र भावना है। उन्होंने कहा कि माँ हमारे जीवन की पहली गुरु होती है जो हमें संस्कार, साहस और सही मार्ग पर चलना सिखाती है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर तेज गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 45.7 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में रहा। जैसलमेर में 45, फलौदी में 44.8, जोधपुर में 43.9, चित्तौड़गढ़ में 43.8 और बीकानेर में 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। ने आज जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों तक पश्चिमी जिलों में तेज गर्मी और लू चलने की संभावना को देखते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी जिलों में इसके विपरीत आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। अब कार्यक्रम प्रस्तुत है महिला जगत।

कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को उर्मिला का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उनके लिए जो त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति हैं। जी हाँ, हमारी माँ। माँ से हमारा रूह से जुड़ा रिश्ता है। रूह के रिश्ते की गहराइयाँ तो देखिए, चोट हमें लगती है और दर्द माँ को होता है। सच है बहनों, माँ वो इंसान है जो खुद अधूरी नींद में रहकर हमारे सपनों को पूरा करती है, जो अपने हिस्से की खुशियाँ काट कर हमारे चेहरे पर मुस्कान सजाती है, हमारी हार में भी जो हमारी जीत का सपना देखती है और पूरा भरोसा रखती है। वो माँ ही तो होती है जो किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। और इस मदर्स डे पर सिर्फ हैप्पी मदर्स डे कहना काफ़ी नहीं होगा। आज का दिन उस औरत को समर्पित है, उस औरत को सलाम करने का दिन है जिसने बिना किसी उम्मीद के हमें ज़िंदगी में जीना सिखाया है। और यदि हमारी मेहनत में जुनून है और हमारी कामयाबी में चमक है, तो ये सब माँ की ही देन है। और इन सब में हमारी माँ की दुआओं का असर दिखाई देता है। माँ को स्पेशल फील कराने के लिए मदर्स डे से बेहतर कोई दिन हो ही नहीं सकता। ऐसे में साल का ये दिन बहुत खास हो जाता है उनकी ममता, उनके त्याग और उनके प्यार को दिल से धन्यवाद कहने का। और ये मौका हमें मिला है तो हम इस मौके को ना छोड़ें और अपनी माँ को दिल से धन्यवाद दें। माँ ने सिर पर हाथ रखा तब चैन मिला बीमारी में, और अब पता चला है कि एक मसीहा भी रहता है घर की चार दीवारी में।

बचपन में साइकिल की सवारी मानो आज की हो लग्जरी सफारी। क्या आनंद आता था, लगता था मिल गई दुनिया सारी। पैरों में पैडल, हाथ में हैंडल और ब्रेक पर चलती उंगलियां, मन में जोश, फकीरों का सा आनंद और मौज ही मौज। यही है आनंद भरा जीवन, ना कोई डर ना कोई अभिलाषा, सिर्फ खुशियां ही खुशियां, कभी कहीं आसपास नहीं निराशा। सच में बचपन की जो साइकिल की सवारी थी, वो एक सवारी ही नहीं थी बल्कि आज़ादी और खुशियों का पहला एहसास थी। बचपन की साइकिल की सवारी से पूरी दुनिया मुट्ठी में आ जाती थी। वो साइकिल प्यारी हो भी क्यों ना, क्योंकि उस साइकिल को हमने अपनी जिद से और भूख हड़ताल करके जो हासिल किया है, उस पर हम सिर्फ और सिर्फ अपना हक समझते हैं। घर वालों से जिद करके हमने उस साइकिल को लिया और हमारे दोस्तों ने साइकिल को चलाना सिखाया। गिरते पड़ते, गिरते उठते, आखिरकार हमें साइकिल चलाना आ ही गया। जैसे ही साइकिल चलाना सीखा, असली आज़ादी का आनंद मिला और साइकिल चलाते चलाते हवा से बातें करना, ऐसा लगता था मानो हमें पंख मिल गए हों। और याद करें बचपन के वो दिन, जब हम बड़े भाई या फिर बड़ी दीदी की साइकिल से अभ्यास करते थे और साइकिल को 3 चरणों में चलाना सीखते थे, कैंची चलाना, डंडा, और उसके बाद हमारा तीसरा चरण होता था गद्दी पर बैठकर साइकिल चलाना। और फिर खुद की साइकिल मिलने की खुशी तो कुछ अनूठी ही होती थी। और वो साइकिल अब सिर्फ यादों में ही है और उसकी याद आज भी ताज़ा है, जिसे हम कभी भी भुला नहीं सकते।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: बहनों, अब सुनते हैं एक भेंट वार्ता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पूनम कुमावत से सुमन कंवर की बातचीत। नमस्कार श्रोताओ, सोशल मीडिया पर पॉडकास्ट एक ऐसी विधा है जो इन दिनों बहुत पॉपुलर हो रही है। पॉडकास्ट में काम करने वाली एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ हैं, आप हैं पूनम कुमावत जी। आज अपने इस प्रोग्राम में पूनम जी से बात करेंगे, कहाँ से शुरुआत इन्होंने की, किस तरह के ये पॉडकास्ट करती हैं। तो पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में।
3: थैंक यू सो मच मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए।
2: जी पूनम जी, सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूँगी कि आपने पॉडकास्ट की शुरुआत कैसे की, सोशल मीडिया पर आने का इस रूप में आपने कब सोचा?
3: दरअसल मैम, मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ एंड मैं नीट की प्रिपरेशन करवाती हूँ।
2: जी,
3: हमारे पॉडकास्ट का मेन एजेंडा ये था कि हमारे एरिया की जितनी भी बेस्ट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके बेस्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सकूं, ताकि वो उन एक्सपीरियंस का यूज़ करके अपने लाइफ में सक्सेस को जल्दी से जल्दी अचीव कर सके। क्योंकि समझदार उसे कोई बोला जाता है जो दूसरों के अनुभव से ही चीज़ों को सीखता है, जानता है, समझता है और सफल होता है।
2: जी, आपको याद आता है आपका पहला पॉडकास्ट किससे किया आपने?
3: जी, मैंने मेरा पहला पॉडकास्ट अपनी मातृभाषा में ही किया था, बागड़ी में ही किया था। और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि जब मैं पॉडकास्ट लेने वाली थी तो उन्होंने बोला कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगा। तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम अपनी मातृभाषा में, बागड़ी भाषा में करेंगे। और वो मेरे लिए लाइफ का पहला ऐसा एक्सपीरियंस था कि क्योंकि लगभग इंग्लिश और हिंदी में ही पूरा कम्युनिकेशन रहता है। और उस दिन मेरे को बड़ा ही प्राउड फील हुआ कि मैं बागड़ी भाषा में, उसमें मैंने पॉडकास्ट लिया और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई।
2: जी पूनम जी, थोड़ा और पीछे चलते हैं और शुरुआत करते हैं, कहाँ पर आपकी पैदाइश हुई और कहाँ से आपने अपनी स्टडी जो है कंप्लीट की, स्कूलिंग कहाँ से, इसके बारे में हमें बताएं।
3: मैम, मेरा जो पैतृक गांव है दादाजी का, वो है बिरकाली नोर के पास।
2: जी,
3: ठीक है। वहाँ पे मेरे पापा 6 भाई थे, उनमें से एक टीचर बने। मम्मी जो है नेशनल प्लेयर रहे हैं हॉकी के।
2: जी,
3: तो मेरी शुरुआती जो शिक्षा थी वो हनुमानगढ़ से ही रही, लेकिन फिर मैंने आगे जो मेरी MSc है वो वनस्थली से की। उसके बाद में मैं एज अ GRF मैंने काम किया नोएडा के अंदर, वहाँ पे सर्विक्स कैंसर पे मैं एज अ GRF वहाँ पे वर्क किया। पापा से सुना था कि एक शिक्षक जो होता है ना, वो एक टीचर एक बच्चे की लाइफ को ही नहीं सेट करता, वो आने वाली 7 पीढ़ियों को भी सेट करता।
2: बिल्कुल सही कहा आपने।
3: तो मुझे ये बात बड़ी इंस्पिरेशन वाली लगी और मैं मेरे पापा को अपना आइडल मानते हुए, और मेरे को ऐसे था कि मैं भी पापा की तरह ही टीचर बनूंगी और बच्चों को और उनकी आने वाली पीढ़ियों को संवारने में हेल्प करूंगी।
2: जी,
3: मैंने ऐसा किया भी और कर भी रही हूँ। लेकिन मीनवाइल मुझे ऐसे लगा कि बच्चों को यूँ लगता है कि एग्ज़ाम एक जंग है और अगर उसके अंदर हम जीत गए तो ठीक, नहीं तो हमारी लाइफ स्पॉइल है, ख़त्म हो गई। तो इसीलिए मेरे को ऐसे लगा कि नहीं, सिर्फ एग्ज़ामिनेशन के अंदर आप पास हो गए वही सफलता नहीं है। सफलता को तय करने के लिए कई सारे पैमाने होते हैं। अगर आप में कोई आर्ट है तो उसको आप निखार सकते हैं, आप अपने आप को और अच्छे से संवार सकते हैं। एक रास्ता बंद हो गया इसका मतलब नहीं है सारे बंद हो गए हैं। फिर मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत की और ऐसे हमारे यहाँ के लोकल हीरोज़ जो बड़े ही स्ट्रगल करके, संघर्ष करके जीरो से हीरो तक पहुँचे हैं, उनकी कहानियाँ मैंने हमारे चैनल पे बतानी स्टार्ट की।
2: जी, तो आप हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं में पॉडकास्ट आप
3: जी,
2: करते हैं?
3: जी बिल्कुल, मेन तो हमारा राजस्थानी भाषा में ही पॉडकास्ट रहता है, लेकिन कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती है जो बोलने में कंफर्टेबल होती है तो हम उनके साथ

0: हिंदी में भी करते हैं पॉडकास्ट।
1: जी, यानी राजस्थानी भाषा जो है उसको आप अपने चैनल के माध्यम से आप प्रमोट भी कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, हमारी मातृभाषा है और इसको बोलते हुए हमें बड़ा ही प्राउड फील होता है और बड़ा मज़ा आता है। मैम, मैं सही बोलूँ तो अपनी ही भाषा में अपने ही लोगों से बात करते हुए एक अलग ही खुशी होती है, और वो खुशी का पैमाना जितने यहाँ के श्रोता हैं वो अपने जिस तरीके से हमें प्यार कर रहे हैं, हमें मान सम्मान दे रहे हैं, वो हमें लग रहा है कि उनके दिलों तक हमारी बातें पहुँच रही है।
1: जी पूनम जी, किस तरह की कठिनाइयाँ आईं जब आपने ये पॉडकास्ट की शुरुआत की?
0: मैम, कठिनाइयाँ तो आप कुछ भी स्टार्ट करें सब में ही आती हैं,
1: बिल्कुल
0: सब कुछ नया था हमारा। एज ए हॉबी के तौर पे ये स्टार्ट हुई, सेटअप की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए हमें काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ी, कैमराज, माइक, मतलब बैकग्राउंड साउंड, इन सब की, क्योंकि हम बाय प्रोफेशन इस सोशल मीडिया फील्ड से बिलोंग नहीं कर रहे थे, तो ये इनिशियली प्रॉब्लम्स थी जो हमने कवर की। बहुत कुछ गलतियां कर करके सीखे और जितनी गलतियां की उतने ही निखरते गए।
1: जी, तो जो आपका परिवार है
0: जी
1: वो किस तरह से आपको सपोर्ट करता है? महिला होने के नाते मैं भी इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जब हमें कई स्तर पर काम करना होता है, हमें घर परिवार को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, बाहर जाकर भी हमें
0: जी
1: काम
0: जी
1: करना होता है, तो सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो वो
0: बिल्कुल,
1: परिवार किस तरह से कर रहा है आपका?
0: ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की सबसे मतलब लकीएस्ट गर्ल हूँ कि मुझे मेरे इन लॉज की जो फैमिली मिली है वो ठीक उतनी ही सपोर्ट करती है जितनी मेरे पेरेंट्स करते हैं, या सही बोलूँ तो दोनों में कंपटीशन है कौन कितना सपोर्ट करेगा, और इसी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं इतनी लकी हूँ कि मेरे चारों माँ बाप मुझे रोज़ दिखते हैं, रोज़ मिलते हैं, मेरे बच्चों को संभालते हैं, मेरे जेठानी भी हैं वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं फैमिली हाउस होल्ड वर्क में, और इन लोगों की वजह से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो उनकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है और वो बहुत अच्छी तरीके से मुझे संभाल भी रहे हैं, और मतलब मेरे हर एक फील्ड में मेरे को हमेशा मोटिवेट करते हैं। नहीं, उन्होंने बोला कि तुम करो, तुम्हें जो अच्छा लगता है बस वो करो, लेकिन नीयत हमेशा अच्छी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और नीयत अच्छी की जहाँ हमने बात की, वहाँ पर घर परिवार में ये भी होता है कि घर में जब सब लोग मिलकर बैठते हैं तो कि हाँ एक अच्छा सा खाना भी होना चाहिए, सब
0: जी
1: लोग मिलकर बैठें तो खाना बनाती हैं आप?
0: बिल्कुल
1: जी क्या चीज़ है
0: देखो,
1: जो सबसे बढ़िया बना लेती हैं आप?
0: मैं अगर ईमानदारी से आंसर करूं तो मेरी मदर इन लॉ बहुत ही प्यारी हैं और बहुत अच्छा खाना बनाती हैं वो,
1: अच्छा
0: ठीक है। उसके बाद में मेरी जेठानी है, वो मतलब सेकंड नंबर पे, मेरा रैंक आता है घर में बेसिकली थर्ड नंबर पे, तो मेरे लिए खाना बनाना मतलब बिल्कुल ही होता है कि जब भाभी और मम्मी नहीं बनाएंगे तभी मैं बनाऊंगी, लेकिन मैं उन दोनों के अंडर ऑब्जर्वेशन में मुझे यूँ लगता है मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, कभी आप आओ तो पता चले।
1: बिल्कुल ज़रूर। और ये भी पूनम जी हम जानना चाहेंगे कि कभी जब फुर्सत के पल मिलते हैं
0: जी
1: तो आप क्या करना पसंद करेंगी?
0: मैं जब फुर्सत के पल में होती हूँ तो मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मैं ओशो को बहुत प्यार करती हूँ और मैं ओशो को पढ़ती हूँ, उससे भी ज़्यादा अगर मैं कभी भी फ्री होती हूँ और अपने आप के साथ होती हूँ तो उस परमात्मा को याद करती हूँ।
1: जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं
0: जी
1: जो हमारे अंदर से जो है
0: जी
1: अंतरात्मा से जुड़ी होती हैं
0: जी जी
1: और उसकी वजह से हम निखरते हैं, बहुत सारी
0: बिल्कुल
1: चीज़ें हम
0: बिल्कुल,
1: सीखते हैं।
0: नहीं बिल्कुल मैम, मैं आपको बताऊं कि जब मेरे को ये बात समझ में आई ना कि जो कुछ भी है वो हमारे अंदर है तो फिर हम बाहर ढूंढ किसको रहे हैं, तो मैंने उस दिन से अपने अंदर ही उसको खोजना स्टार्ट किया, और जितना उसके पास जाती जा रही हूँ ऐसा लगता है कि वो मुझे उतना ही ज़्यादा संवारता जा रहा है और बहुत प्यार करता जा रहा है।
1: जी, बहनें जो रेडियो सुनती हैं
0: जी
1: तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि आप इस मकाम पर पहुंची हैं, तो
0: जी
1: उनके लिए क्या संदेश आप करेंगे?
0: जितनी भी बहनें हैं जो ये प्रोग्राम सुन रही हैं, मैं बस उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी लाइफ है, इसको बहुत प्यार करें अपने आप को। हमारी ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने ही सबसे बड़े दुश्मन हैं, हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं, मेरी ज़िंदगी ऐसी, मेरी लाइफ ऐसी, मेरा रिश्ता ऐसा, मेरा स्वास्थ्य ऐसा, मैं ऐसी, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, मुझे ही ऐसा क्यों दिया, मतलब अगर हम देखें तो हमने पूरे दिन में अपने आप को इतनी ब्लेसिंग देने की जगह इतना कोसना स्टार्ट किया है ना, तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी फीमेल्स हैं, चाहे वो वर्किंग में हैं चाहे हाउस होल्ड वर्क कर रही हैं, दोनों अपने अपने लेवल पर बहुत ही ईमानदारी से काम कर रही हैं, बस अपने आप को प्यार करना स्टार्ट कर दें और अपने आप को प्रेज करना स्टार्ट कर दें, हम किसी और की तारीफ की मोहताज नहीं है, हम हमारे बल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें अपने आप को प्रेज करना आना चाहिए, अपने आप की तारीफ करनी आनी चाहिए और अपने आप को खुश रखना आना चाहिए,
1: जी
0: तो आपकी लाइफ कैसे भी हो अपने आप को खुश रखना
1: जी
0: सीखिए।
1: एक सवाल जो मैं करना चाहती हूँ कि
0: जी
1: अगर आपके फील्ड में या कोई आना चाहे महिला,
0: जी
1: तो सबसे पहले उसको

0: सोचना पड़ेगा, पहला कदम उसका क्या होना चाहिए?
1: देखो, अगर कोई भी यूथ में या कोई फीमेल पॉडकास्ट फील्ड में अगर आना चाहता है, तो उसको मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आप जिन भी पर्सनैलिटी का आप पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं, तो उनकी लाइफ से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च है वो आपके पास होनी चाहिए. दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होती है मैम कम्युनिकेशन स्किल.
0: बिल्कुल,
1: वो बहुत ज़रूरी है. आपको अपनी बातें रखनी आनी चाहिए, अपने शब्दों का चुनाव इतना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मुझे यूँ लगता है कि पढ़ा लिखा डिग्री से नहीं आंका जाता. एक पढ़े लिखे की पहचान होती है उसके शब्दों के चयन से, उसके बोलने के तरीके से और व्यवहार से. और मुझे लगता है व्यवहार, शब्दों का सिलेक्शन, वो इत्र है जो आपके जाने के बाद में भी महकता है.
0: जी
1: तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए और आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए.
0: जी पूनम जी, जैसे जैसे हम ये कहते हैं कि लोग सोशल मीडिया
1: जी
0: पर आने लगे हैं, तो उनका जो जीवन है, उनकी ज़िंदगी है, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो एक एकाकी होने लगी है. फ़ोन में उनकी दुनिया है, लेकिन वो उस फ़ोन से या उस सोशल मीडिया से, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. क्या बुरा असर जो है आपको दिखाई देता है?
1: देखिए मैम, फ़ोन का यूज़ आज अकेला सिर्फ बच्चा नहीं कर रहा है, पेरेंट्स भी उतना ही कर रहे हैं. बच्चा आज पेरेंट्स को करता हुआ देख रहा है, तो पेरेंट्स ने अपनी विरासत में बच्चों को ये गिफ्ट दिया है. पेरेंट्स को एक्सेप्ट करते हुए शायद जोर आएगा इस चीज़ को, लेकिन सच ये है कि आज मैं बुक पढ़ती हूँ ना, तो मेरा बच्चा मुझे देख के एक्टिंग करता है बुक पढ़ने की. ठीक है,
0: बिल्कुल.
1: तो आज जो हमने दुनिया बनाई है ना, ये अपने लिए तो बनाई है, साथ में बच्चों को भी गिफ्ट किए. और फिर जब बच्चे उसके अंदर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब हमें ये लगता है कि हम उनका बचपन नहीं देख पाए, उनके साथ खेल नहीं पाए, उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाए, क्योंकि हमने टाइम स्पेंड तो किया है लेकिन सोशल मीडिया के साथ. और देखो, जब एक लिविंग थिंग आपके सामने हो और आप नॉन लिविंग थिंग पे टाइम दोगे,
0: बिल्कुल
1: तो
0: यही बात मैं आपसे कहना
1: जी,
0: चाह रही
1: तो
0: थी.
1: ऐसे में तो कुछ भी सही नहीं होगा, ना फ्यूचर, ना रिश्ते, ना कैरियर.
0: क्या कदम क्या होना चाहिए?
1: सॉल्यूशन पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सॉल्यूशन किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं कर रहा. ठीक है, सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले, एज ए आप पेरेंट सुन रहे हैं, तो आपको अपने बच्चे के सामने इन सारी चीज़ों पे पोच लगाना पड़ेगा. बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट्स को फॉलो करता है. आप उनको नहीं बोल सकते कि आप फ़ोन मत देखो, क्योंकि आप खुद देख रहे हो. तो बेटर है कि आप अपने बच्चों के साथ जैसे जैसे टाइम स्पेंड करेंगे, तो बच्चों को भी उनसे पूछें, उनसे इंट्रैक्शन करें. कम्युनिकेशन एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे इन सारे डेविल्स को हम हटा सकते.
0: तो स्कूल में किसी तरीके से माहौल बदलना चाहिए, क्योंकि आप टीचर भी हैं.
1: जी, स्कूल के अंदर मैम फोन का कोई काम ही नहीं है.
0: बच्चों की मानसिकता पर अगर हम बात करते हैं,
1: जी,
0: तो
1: बिल्कुल.
0: उन पर टीचर्स को बात करनी चाहिए या की जा सकती है?
1: बिल्कुल की जा सकती है. मेरे अकॉर्डिंग टीचर को आज के टाइम पे ये चीज़ लगती है कि टीचर मतलब सिलेबस कंप्लीट करवाना, जबकि ये थ्योरी बिल्कुल गलत है. टीचर मतलब पहले एक अच्छा इंसान बनाना. बच्चे को एक अच्छे इंसान के रूप में या तो उसके पेरेंट्स बना सकते हैं या टीचर. बच्चा पेरेंट्स से इतना कनेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो उनको फॉर ग्रांटेड कर सकता है, लेकिन टीचर को सुनना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको पढ़ना है उससे. तो यहाँ पे टीचर की मेरे अकॉर्डिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज कम्पेयर टू पेरेंट्स, कि आप अपने स्टूडेंट को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने की नसीहत दें, उनको वो सारे चीजें बताए, एग्जाम्पल के साथ बताए. सिलेबस इज अ सेकेंडरी मेरे अकॉर्डिंग. मैम मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ आपको, जो मैं मेरे बच्चों को बताती हूँ, कि ना जितने भी यूथ है, जो यंग जनरेशन है, जो कंपटीशन फील्ड में है, 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि ये उनकी उम्र बहुत ही सेंसिटिव होती है. तो मैं उनको हमेशा यूँ बोलती हूँ कि तुम्हें अपने आप को 3 devils से बचाना है, कि 3 devils ऑफ योर लाइफ. पहला जो डेविल होता है, वो उनकी बॉडी में निकलने वाले सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो इमोशनली इंबैलेंस्ड होते हैं, फिजिकली इंबैलेंस्ड होते हैं.
0: जी, और इस पर बहुत कम बात की जाती है,
1: बहुत ही कम. मेरे को बोलते हुए बड़ा दुख होता है कि जब मेरे पास कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स आते हैं और वो यूँ बोलते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स तो हमें पढ़ाए नहीं गए थे. ये कह के निकाल दिया गया था कि ये तो कोई जरूरत की चीज़ ही नहीं है, इसको पढ़ने के लिए ये ऐसे लगाए हुए, तुम खुद पढ़ लेना. क्यों जरूरत नहीं है? अगर ये जरूरत नहीं है तो संभाल के क्यों रखे हुए? क्योंकि इनके बिना भी तो लाइफ पॉसिबल है. ये है मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे डिवाइन ऑर्गन है, जहां पे सृजन हुआ है लाइफ का.
0: बिल्कुल
1: ठीक है, और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी में हमें एक आइडेंटिटी दी है. अगर ये ऑर्गन्स नहीं डेवलप होते, तो हम शायद मेल और फीमेल भी ना होते. तो सबसे पहला जो डेविल मैं मानती हूँ, वो सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड बात ना करके तो बच्चे उसको अपने ही लेवल पे गलत ही समझते हैं. दूसरा डेविल जो इन दिनों बड़ा राक्षस जो आ रहा है, वो है ड्रग एडिक्शन. वो स्मोक करते हुए देखते हैं, गालियां बकते हुए देखते हैं सोशल मीडिया पे. उनको लगता है कि हीरोज ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही सिगरेट पीते हैं, ऐसे ही अल्कोहल लेते हैं. ये बहुत ही गलत इंस्पिरेशन मिल रही है बच्चों को. डेविल में क्यों बोला गया है? क्योंकि आज अगर कोई ड्रग अडिक्ट कर रहा है ना, तो वो अपने साथ के बच्चे को भी

0: कोशिश करेगा कि आप करो, बच्चा बोलेगा नहीं मैं नहीं करूंगा, तो वो उसको साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाएगा, तो बच्चे को एक ट्रिगर पॉइंट मिलता है और वो पीता है, फिर
1: जी ट्रिगर किया जाता है
0: ट्रिगर किया जाता है। और ये दूसरा डेविल है। तीसरा जो डेविल वो है सोशल मीडिया,
1: जी
0: जिसमें एडिक्शन अगर गलत डायरेक्शन में लग गया तो अब उसको कोई नहीं बचा सकता। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि आज का जो यूथ है वो 90-95% डिस्ट्रैक्टेड है इन तीन डेविल की वजह से।
1: जी बिल्कुल
0: अगर इन तीनों पे जीत गया तो फिर अब उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
1: जी, तो ये जिम्मेदारी
0: ये है
1: सबकी
0: मैम,
1: बनती है।
0: बिल्कुल। पेरेंट्स को यूं लगता है कि जो हमें नहीं मिला वो हम बच्चों को दें, अच्छी बात है देना चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपने जो अर्न किया है ना वो बच्चों को दें। आपने अर्न किया है धैर्य, आपने अर्न किया है पेशेंस, आपने अर्न किया है वो संस्कार जो आपको विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा कर सकती है। आपने अर्न किए हैं अपने बुरे और अच्छे दिनों के अंदर जो मानसिक स्थिति में जो ठहराव आया है वो। आपने बच्चे को वो सारी चीज़ें डिलीवर करें ना आप, कि कोई ट्रिगर करे तो आपको रिस्पॉन्स नहीं करना है, आपको जज करना है। तो ये मॉरल ड्यूटी बनती है पेरेंट्स की। आप उनको ये तो बता देते हो कि भाई गर्ल्स को मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है, कि गर्ल्स को संभाल के रखना चाहिए, घर की इज्जत है। तो मैंने एक बार किसी से पूछा क्यों गर्ल्स को इतना क्यों प्रोटेक्ट किया जाता है, क्यों उसके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, तो कहते हैं गर्ल्स जो होती हैं लड़कियां सोना होती है और सोने को तिजोरी में रखना चाहिए। तो अगर लोहे के समान लड़के को मानोगे तो लोहे को जंग ही लगेगी। तो बहुत ज़रूरी है दोनों बच्चों को इक्वलेंट इंपॉर्टेंस दें, इक्वलेंट संस्कार दें, और दोनों को बिठा के पेरेंट्स सही और गलत की बातें उनके सामने शेयर करें।
1: जी, मैं ये कहूँ कि एक सच्चाई के धरातल पर अगर हम बात करते हैं, यूं तो कहा जाता है कि हाँ महिला और पुरुष जो हैं बराबर हैं,
0: जी
1: अगर आप ईमानदारी से कहें तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की जो स्थिति है
0: जी
1: वो हमारे समाज में
0: जी
1: कैसी है?
0: मैम, ये सोच पे डिपेंड करता है कैसी है। मैं अगर सही बोलूं तो आप दोनों को इक्विवेलेंट कभी रख ही नहीं सकते। सुई की जगह सुई काम आएगी और तलवार की जगह तलवार काम आएगी। मैंने कहा ना बहुत सारे पैमाने यहाँ पे रखने पड़ेंगे। आप एकदम से नहीं बोल सकते कि दोनों बराबर हैं, नहीं है। दोनों की अपॉर्चुनिटीज़ बराबर नहीं है, दोनों के लिए कंडीशंस बराबर नहीं है, लेकिन दोनों अपने अपने लेवल पे बहुत बेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, अभी हमारा जो समाज है ना उसको ये बात अभी एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। उनको लगता है कि हमारे फीमेल काम भी करे और घर को भी संभाले, दोनों को एक साथ करे। देखो ये चीज़ फैक्ट है, हर जगह देखने को मिलती है। ये थोड़ी सी पार्शियलिटी है और ये मुझे नहीं लगता अभी बहुत जल्दी जाएगी, लेकिन आने वाली जनरेशन में चली जाएगी मैम।
1: लेकिन हम ये कह सकते हैं कि योग्यता के आधार पर अगर हम बात करें
0: जी
1: तो महिलाएं कहीं भी
0: पीछे नहीं है,
1: पीछे नहीं है।
0: बिल्कुल भी नहीं है।
1: इक्वलिटी की अगर हम बात करते हैं तो हम सिर्फ ये बात कर सकते हैं कि हाँ जो भी हमें संवैधानिक अधिकार मिले हैं
0: जी
1: उसमें है, बाकी अगर स्वभाव से अगर महिला पुरुष अलग अलग हैं तो उसमें कोई गुरेज नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ जो
0: नहीं,
1: है चीज़ वो
0: बिल्कुल
1: सबकी खूबसूरती अपनी अपनी जगह जो है वो कायम
0: जी,
1: रहनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जितनी भी फीमेल्स हैं वो, मतलब देखो मैंने एक जगह पढ़ा था कि व्रत करवा चौथ का सिर्फ मर्दों के लिए रखा जाता है, क्योंकि फीमेल खुद इतनी ताकतवर है कि उसके लिए किसी व्रत की जरूरत नहीं होती है। और ये फैक्ट है जो सृजन कर सकती है ना। बच्चों को बोलती हूँ कि एक आपकी आंख में अगर कचरा चला जाए ना तो क्या 9 मिनट आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? नहीं।
1: बिल्कुल
0: एक मदर 9 महीने तक एक पैरासाइट परजीवी के रूप में पलने वाले बच्चे को रखती है,
1: जी,
0: ठीक है
1: और
0: ना?
1: कहा भी गया ना कि एक बहुत खूबसूरत बात किसी शायरा ने कही है
0: जी
1: कि जिस लम्हा मेरे बच्चे ने माँ कहा मुझे,
0: जी
1: मैं एक शाख से कितना घना दरख्त हुई।
0: एग्जैक्टली
1: जी
0: तो मैं कभी मानती ही नहीं कि फीमेल और मेल कभी बराबर हो सकते हैं, वो कभी हो ही नहीं सकते। ये इक्वलिटी मेरे लिए समझ में ही नहीं आती है। वो कभी मदर का फॉर्म, मदर की डिग्निटी, मदर का पेशेंस, मदर का कॉम्प्रोमाइज़ करना, मदर का हर प्यार से चीज़ों को संभाल लेना, ये पोटेंशियल मेल में नहीं आ सकता। मेल की अपनी अलग पावर है।
1: जी
0: हमारा जो समाज है ना फीमेल के लिए, उसके लिए जितने भी फीमेल्स हैं ना, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ता जा रहा है, जागरूक होता जा रहा है। तो किसी शायर की ये बातें मुझे याद आती है कि चंद बादलों के दरमियाँ कुछ ऐसी साजिश हुई, चंद बादलों के दरमियाँ कुछ ऐसी साजिश हुई, मेरा ही घर था मिट्टी का और मेरे ही घर बारिश हुई। घर
1: बिल्कुल
0: जिद है उसे हमें पे बिजलियाँ गिराने की, घर जिद है उसे हमें पे बिजलियाँ गिराने की, तो अब हमें भी है जिद यहीं पे आशियाँ बसाने की।
1: जी, बहुत खूब पूनम जी, आपसे जो इतनी सुंदर बातचीत हमारी हुई है बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और आकाशवाणी स्टूडियो पधारने के
0: जी
1: लिए।
0: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।
2: किसान भाई और
3: बहनों, भेंट वार्ता आपने सुनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पूनम कुमावत से सुमन कंवर की बातचीत। बहनों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इस प्यारे से।

बहनों, गर्मी का मौसम है और ऐसे मौसम में हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। और इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर होगा तो हमारा शरीर बीमारियों से घिरा रहता है और इन्फेक्शन बार बार हमें होता है, शरीर में कमज़ोरी महसूस होती है, बार बार थकान होती है। और यदि इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर है तो बहुत ही समस्याएं होती हैं, पेट संबंधी समस्याएं भी होती हैं, जैसे गैस बनना, कब्ज़ होना, इस तरह की, और बार बार इन्फेक्शन में खुजली भी होती है, त्वचा संबंधी में फोड़े फुंसी ये भी हो जाते हैं हमें। तो ऐसे में स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत

बहनों, गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में हमारे बालों की देखभाल करना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस मौसम में हमारे बाल बहुत रूखे और बेजान हो जाते हैं। गर्मी का मौसम होता है तो उमस बहुत बढ़ जाती है, और उमस होने से हमारे जो बाल हैं वो अपनी अतिरिक्त नमी को खो देते हैं। इसके अलावा गर्मी का मौसम जब होता है तो हमारे बाल बहुत फ्रिजी हो जाते हैं, जिससे वो बहुत अधिक टूटते हैं और उनकी वॉल्यूम भी बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे मौसम में बालों को हमें बहुत देखभाल से रखना चाहिए। इसलिए चाहिए कि हम धूप से बालों को बचा कर रखें। इसके लिए हम टोपी पहनें या फिर स्कार्फ का प्रयोग करें, और गर्मी में बार बार बालों को ना धोएं। यानी गर्मी का मौसम होता है, हमारी इच्छा होती है कि हम रोज़ बालों को धो लें, लेकिन बार बार अगर हम शैम्पू करते हैं तो जो सिर की त्वचा है उससे प्राकृतिक तेल निकलता है और बाल बहुत अधिक रूखे हो जाते हैं। ऐसे में हम सप्ताह में 2 या 3 बार से अधिक बालों को ना धोएं, और बालों को समय समय पर ट्रिम करवाते रहें, और जिससे बालों की जो समस्या है वो दूर हो जाती है, और ट्रिमिंग से बालों को संभालना भी बहुत आसान हो जाता है। बहनों, ट्रिमिंग क्या नाम सुनकर आप बालों की लंबाई की चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो बालों की लंबाई है वो गर्मियों में बहुत तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि इस मौसम में जो बाल होते हैं वो अपनी वृद्धि अवस्था में ही होते हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और जब गर्मी का मौसम है तो ऐसे मौसम में हम अपने बालों को अतिरिक्त नमी दें, इसके लिए आप डीप कंडीशनिंग करें, और इसके अलावा अपने बालों की देखभाल के लिए आप गर्मियों में खूब पानी पिएं। और खूब पानी पीते हैं तो हमारे बालों को प्राकृतिक नमी प्राप्त होती है। इसके अलावा बालों को धूप और पसीने से बचा कर रखें, इसलिए आप बालों को

बांध कर रखें बालों को, आप जुड़ा स्टाइल में या फिर पॉनीटेल करके या फिर किसी भी स्टाइल से बांध कर रखें, बाल आपके सुंदर भी लगते हैं और आप थोड़े स्टाइलिश भी दिखते हैं, इसके अलावा आपके बाल बचे भी रहते हैं। बहनों, गर्मी का मौसम हो तो बालों को आप प्राकृतिक रूप से सुखाएं। बालों को सुखाने के लिए आप किसी तरह के उपकरण का इस्तेमाल ना करें, और गर्मी का मौसम है तो बालों में ब्रश बहुत जोर से ना करें। अच्छा होगा कि आप कंघी का ही इस्तेमाल करें और गीले बालों में कंघी ना करें। हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर, इन सब का इस्तेमाल आवश्यक होने पर ही करें। और गर्मी का मौसम है तो आप ऐसे मौसम में तैराकी करना आपको अच्छा लगता है, और अगर आप तैराकी करते हैं तो आपको ये पता होगा कि जो क्लोरीन युक्त पानी होता है वो हमारे बालों के लिए सही नहीं होता, हमारे बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं। ऐसे में आप अपने बालों का विशेष ध्यान रखें और विशेष रूप से बनाए गए शैम्पू और कंडीशनर का ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा गर्मी के मौसम में अपने बालों में मालिश जरूर करें, जैसे कि नारियल तेल, जैतून का तेल या फिर बादाम का तेल। इन में से जो भी आपको अच्छा लगता हो उससे आप अपने बालों की मालिश जरूर करें। इससे रक्त संचार बढ़ता है और बालों को नमी प्राप्त होती है और बाल आपके खूबसूरत हो जाते हैं। अच्छा होगा बहनों कि ऐसे मौसम में आप बालों को रंगने से बचें, और यदि रंगने की ज़रूरत हो तो आप ऑर्गेनिक सामग्री का ही प्रयोग करें, जिससे कि आपके बाल खराब नहीं होंगे। और अब ये प्यारा सा गीत।

अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे महिला जगत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam. Punjab's industry minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है
0: द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कॉल्ड फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स टू बिल्ड अ डेवलप्ड इंडिया थ्रू एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूथ एम्पावरमेंट एंड इनर वेलबींग
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग मेंटल हेल्थ योग मेडिटेशन इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है
0: Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building. The Prime Minister also launched the year-long projects of the Foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to the Art of Living International Centre, the Prime Minister addressed BJP leaders and workers at HAL Airport in Bengaluru. The Prime Minister said BJP's victories in West Bengal, Assam and Puducherry

0: days. The weather agency has also forecast heavy rainfall over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. World Lupus Day is being observed today globally. The day is marked to raise awareness about lupus, which is a complex autoimmune disease in which the immune system mistakenly attacks healthy tissues and organs, causing widespread inflammation and damage to joints, skin, kidneys, heart, and lungs. Lupus has no known cure and often put devastating impact on daily life. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma, unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam, stakes claim to form government. Punjab's industry minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी. जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से

0: कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय தெரியவருவதுமான முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से NDA का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
4: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल

0: सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त दो दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर GST के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वॉशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिविन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला MV होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया।

0: इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के GST धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं नगीना फिल्म के गीत के साथ। आवाजें मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की है, गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल को आप सुन रहे हैं। फिल्म का नाम है बड़े घर की बेटी। गीत संतोष आनंद का है और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था खतरों के खिलाड़ी। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

हमारा खानदान फिल्म का भी आपने गीत सुना, आवाजें थी मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 3 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से उर्दू सर्विस का प्रसारण सुनेंगे।

3:05 पर खबरें नशे की जाएंगी और 3:15 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मेरी पसंद। सपहर 3:30 मारूफ शायर नगमा निगार कैफी आजमी के फन और शख्सियत के हवाले से उनकी बरसी के मौके पर फीचर का दूसरा और आखिरी हिस्सा आप सुनेंगे, खामोश बगावतों का शायर, तहरीर डॉक्टर इकबाल रहमान की।

शाम 4 बजे आप लुत्फानंदोज होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नाखों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। शाम 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पसीर हो जाएंगी। सामने ये था एक मुख्तसर तारुफ हिस्से मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन, आप हमारे नशा सुन रहे हैं मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर के अलावा डीडी फ्री डिश पर। दिन के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब से चंद लम्हों के बाद आप खबरें सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माहौलियाती जिम्मेदारी, नौजवानों को बाख्तियार बनाकर और दाखिली बहबूद के जरिए एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने की खातिर इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। तमिलनाडु में जोसेफ विजय ने चेन्नई में वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया है, 9 वजीरों को भी हलफ दिलाया गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अनकरीब खत्म हो सकती है। और शंघाई में जारी तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारतीय खवातीन की रिकर्व टीम ने शूट ऑफ में चीन को हराकर सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत की। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग बैन अलाक्वामी सेंटर में नए तामीर किए गए ध्यान मंदिर का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने खिदमत, रूहानियत और सामाजिक कायापलट के फरोग में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के रोल को सराहा। जनाब मोदी ने माहौलियात से मुतालिक जिम्मेदारी, नौजवानों को बाख्तियार बनाकर और दाखिली बहबूद के जरिए एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर भी जोर दिया। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि सियासी निजाम के मुकाबले समाजी शमूलियत ज्यादा बासर है और मुल्क की तामीर के लिए लाजमी है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि मगरबी बंगाल, आसाम और पुदुचेरी में बीजेपी की कामयाबी उनकी सरकार की जानिब से नाफिज की गई कौमी पॉलिसी के लिए अवाम की हिमायत का मजर है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के नतीजों से लोगों के मूड की अक्कासी होती है और इससे ये इशारा भी मिलता है कि आवाम उनकी सरकार के कौमी प्रोग्रामों और पॉलिसियों की हिमायत कर रही हैं। जनाब मोदी आज बेंगलुरु में बीजेपी कैडर से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने ऐसी सरकार की जरूरत उजागर की जो ठीक ढंग से काम करे, तेज रफ्तार के साथ अच्छी हुक्मरानी फराहम करे, मसाइल का हल निकाले और मुल्क को आगे ले जाए। कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए वजीर आजम ने उस पर इल्जाम लगाया कि उसने पार्लियामेंट में नारी वंदन संशोधन बिल के खिलाफ वोट देकर खवातीन को धोखा दिया है, जबकि इसमें पार्लियामेंट में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन को यकीनी बनाने की बात कही गई थी। वजीर आजम ने लोगों से अपील की कि वो मुल्क की तरक्की के लिए काम करें और अमरीका ईरान जंग जैसे जुग्राफियाई और सियासी हालात व वाकयात से पैदा चैलेंजों पर उबूर हासिल करने के लिए मुत्तहिद रहें। तमिलनाडु में तमिलगा वैत्री करगम टीवी के पार्टी के बानी जोसेफ विजय को आज सुबह वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर ने नेहरू इंडोर स्टेडियम में एक तकरीब में उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। उनके हमरा 9 वजीरों को भी हलफ दिलाया गया। हलफ बर्दारी की तकरीब में कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी और तमिल फिल्म सनत से वाबस्ता कई सरकर्दा शख्सियात ने भी शिरकत की। जनाब जोसेफ विजय ने तारीख रकम की है। हालिया असेंबली इंतखाबात में पहली बार चुनाव लड़ने वाली उनकी पार्टी टीवी के वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 1967 के बाद से वो रियासत के ऐसे पहले वजीर आला बने हैं जिनका ताल्लुक ना तो डीएमके से और न ही ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से है। जनाब जोसेफ विजय को कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल की हिमायत के साथ 234 रुकनीय वार्ड में 120 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है। लोक भवन के एक अखबारी बयान के मुताबिक गवर्नर मौसूफ ने वजीर आला जोसेफ विजय को हिदायत दी है कि वो बुध के रोज या उससे पहले असेंबली में एतमाद का वोट हासिल करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने पर जोसेफ विजय को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी सरकार अवाम के रहन सहन को बेहतर बनाने की खातिर तमिलनाडु सरकार के

साथ मिलकर काम करेगी। वजीर आजम ने जनाब जोसेफ विजय के तई नए ख्वाहिशात का भी इजहार किया। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिस्सा नाइके ने टीवी के पार्टी के सरबरा जोसेफ विजय को तमिलनाडु के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के फौरन बाद मुबारकबाद पेश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब दिस्सा नाइके ने कहा कि श्रीलंका और तमिलनाडु गुज़िश्ता कई नस्लों के जमाने से तारीख, सकाफत, इंटरप्राइजेस और आवाम से आवाम के मजबूत राब्तों के जरिए मुंसलिक रहे हैं। उन्होंने भारत और श्रीलंका के दरमियान मजबूत साझेदारी को यह कहते हुए उजागर भी किया कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत होते जा रहे हैं और वसी इक्तिसादी इम्कानात और मौके भी सामने आ रहे हैं। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा को इत्तेफाक राय से बीजेपी कानून साज पार्टी के साथ साथ एनडीए कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में मजमुई तौर पर पार्टी के 8 अरकान असेंबली ने डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम तजवीज किया। वहां मौजूद दीगर अरकान असेंबली ने इसकी तायद की। इसके बाद एजीपी और बीपीएफ के 10 अरकान असेंबली की मौजूदगी में आसाम गण परिषद के लीडर अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के रहनुमा रिहोन डे मारी ने एनडीए लीडर के तौर पर जनाब शर्मा का नाम तजवीज किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के जीएसटी धोखाधड़ी केस में पंजाब के वजीर सनत संजीव अरोड़ा को 7 दिन के लिए ईडी की तहवील में भेज दिया गया है। गुरुग्राम में काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम से मुतालिक पीएमएलए की एक खसूसी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह कार्रवाई की है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजीव अरोड़ा को कल चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए अदालत में पेश किया गया। इससे कबल 4 ठिकानों पर दिनभर की तलाशी की कार्रवाई की गई थी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अनकरीब खत्म हो सकती है। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की है कि मगरबी एशिया में भी कशीदगी जल्द दूर हो जाएगी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये तंबीह भी की है कि अगर टकराव में इजाफा होता है तो सभी फरीकों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। सदर पुतिन ने यह भी कहा कि वो मुस्तकिल अमन समझौते को हतमी शक्ल दिए जाने के बाद ही यूक्रेन के सदर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। नागालैंड हुकूमत ने रियासत भर में मोटर गाड़ियों पर मजहब पर मबनी किसी भी गैर सरकारी तंजीम एनजीओ से मुतालिक और दीगर गैर मजाज नारे, स्टिकर्स और निशानदेही करने वाले निशानात लगाने पर पाबंदी नाफिज कर दी है। ये पाबंदी सभी निजी और सरकारी मोटर गाड़ियों पर लागू होगी। अलबत्ता मोटर गाड़ियों से मुतालिक कानून और जवाबित की शिकों के तहत खसूसी इजाजत हासिल करने वाली मोटर गाड़ियों को इससे छूट हासिल होगी। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत की जानिब से एक एडवाइजरी जारी किए जाने के बाद 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह हुक्म जारी किया गया है। मोटर गाड़ियों के मालिकान को हिदायत दी गई है कि वो इस नोटिफिकेशन के इजरा के 45 दिन के अंदर इस किस्म की सभी चीजें अपनी मोटर गाड़ियों से हटा दें। दीगर सूरत में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और अमरीका के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने कल मियामी में कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अस्सानी के साथ मीटिंग की और मगरबी एशिया महाजराई के तनाजुर में अमरीका और ईरान के दरमियान मुजाकरात पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग के दौरान दोनों फरीकों ने ईरान के साथ समझौते के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत की। इससे कबल कतर के वजीर आजम ने वाशिंगटन में अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस के साथ तबादला ख्याल किया था। चीन के शहर शंघाई में जारी तीरंदाजी के आलमी कप के दूसरे मरहले में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत पर मुश्तमिल भारतीय खवातीन की रिकर्व टीम ने आज एक ड्रामाई शूट आउट के बाद मेजबान चीन को शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया। 4 सेट के बाद मुकाबला टाई होने पर शूट ऑफ की नौबत आ गई। फैसला कुन मरहले में अपने हिसाब पर काबू रखते हुए भारतीय टीम ने चीन पर 5-4 से कामयाबी हासिल की। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एमएस चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। यह मैच अब से थोड़ी देर बाद 3:30 बजे शुरू होगा।
इधर रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई

0: इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माहौलियाती जिम्मेदारी नौजवानों को बाख्तियार बनाना कर और दाखिली बहबूद के जरिए एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने की खातिर इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। तमिलनाडु में जोसेफ विजय ने चेन्नई में वजीर आला की हैसियत से हल्फ लिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अनकरीब खत्म हो सकती है। और शंघाई में जारी तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारतीय खवातीन की रिकर्व टीम ने शूट ऑफ में चीन को हराकर सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस मेरी पसंद। ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। आज के प्रोग्राम में नगमा निगार कैफी आजमी के लिखे नगमे आपकी नजर करते हैं। आज कैफी आजमी साहब की बरसी है।

कागज़ के फूल फिल्म का ही नगमा सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में एस डी बर्मन की थी मौसीकी। और लीजिए अब सुनिए शमा फिल्म की गज़ल सुमन कल्याणपुर की गई हुई कलाम कैफ़े आज़मी का मौसीकी गुलाम मोहम्मद की।

और यह है मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश हंसते जख्म फिल्म से, कैफी आजमी का लिखा हुआ नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मौसीकी मदन मोहन की।

हंसते जख्म फिल्म का नगमा सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, और इस नगमे के साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। खामोश बगावतों का शायर, मारूफ शायर, नगमा निगार कैफी आज़मी के फ़न और शख्सियत के हवाले से फीचर का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनिए।

इस तरह कैफी आजमी को दीगर फिल्मों में भी कभी कभी गाने मिलने लगे। इस दौरान उनकी जिंदगी में शबाना के साथ साथ अहमर नाम के एक बेटे का भी इजाफा हो गया। यही अहमर बाद के दौर में बाबा आजमी के नाम से फिल्मी फोटोग्राफी के मैदान में बहुत कामयाब हुए। खैर, हम बता रहे थे कि 50 के दहे के इब्तदाई दौर में कैफी की आमदनी हालांकि बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अपनी छोटी सी दुनिया समेटे ये खानदान एक खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहा था।

इसके बाद एक के बाद एक और अपना हाथ जगन्नाथ जैसी फिल्में आईं, जिनमें कैफी के कई अच्छे गाने थे, लेकिन ये फिल्में भी तजारती कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। इसी दौरान कैफी के गानों से आरास्ता फिल्म शमा आई, जिसने अच्छा बिजनेस किया।

कैफी रहते थे उनसे मिलने चेतन आनंद आए। उन्होंने कैफी से कहा कि मैं काफी अरसे के बाद एक फिल्म बनाने जा रहा हूं और चाहता हूं कि उसके गाने आप लिखें। कैफी ने कहा, लोग कहते हैं कि मैं लिखता तो अच्छा हूं लेकिन सितारे ठीक नहीं है। चेतन आनंद ने कहा कि लोग यही मेरे बारे में भी कहते थे। हो सकता है दो मनफी असरात मिलकर मुस्बत बन जाए, लेकिन लोगों ने जो चैलेंज हम दोनों के सामने रखा उसको तो कबूल करना ही पड़ेगा। ये फिल्म थी हकीकत और इस फिल्म से मदन मोहन, चेतन आनंद और कैफी आजमी का साथ शुरू हुआ। इस फिल्म ने कैफी को रातों रात कामयाबी के आसमान पर पहुंचा दिया। मैं ये सोचकर उसके डर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको।

0: इस फिल्म में पहली बार कैफी ने अपनी एक मशहूर नज्म अंदेशे को भी फिल्म नगमे के कालिब में ढाल कर पेश किया। आपको हम पहले वो नज्म खुद कैफी की आवाज में सुनाते हैं और फिर वो नगमा सुनाते हैं, ताकि आप तय करें कि नज्म ज्यादा अच्छी है या इस नज्म पर मबनी नगमा ज्यादा अच्छा है।
1: रूह बेचैन है, एक दिल की अज़ियत क्या है, दिल ही शोला है तो ये सोज़े मोहब्बत क्या है। वो मुझे भूल गई, इसकी शिकायत क्या है, रंज तो ये है कि रो रो के बुलाया होगा। वो कहां और कहां काहिशे गम सोजिशे जां, उसकी रंगीन नजर और नकुशे हिरमा, उसका एहसास लतीफ और शिकस्ते अरमा, तानाजन एक जमाना नजर आया होगा। झुक गई होगी जवां साल उमंगों की जबी, दब गई होगी ललक, डूब गया होगा यकीन, छा गया होगा धुआं, घूम गई होगी जमीन, अपने पहले ही घरौंदे को जो ढाया होगा। दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, अश्क आंखों ने पिए और न बहाए होंगे, बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जमी पर उभर आया होगा। उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी, मिट के एक नक्श ने सौ शक्ल दिखाई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा। बेमहल छेड़ पर जज्बात उबल आए होंगे, गम पशेमान तबस्सुम में ढल आए होंगे, नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे, सर न कांधे से सहेली की उठाया होगा। जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होगी, रूठे जलवों पर खिजा और बिछाई होगी, बर्क नजरों ने कई दिन गिराई होगी, रंग चेहरे पर कई रोज न आया होगा। वो मुझे भूल गई, इसकी शिकायत क्या है, रंज तो ये है कि रो रो के बुलाया होगा।
2: और अब समाप्त फरमाइए मोहम्मद रफी, तलत महमूद, मन्ना डे और भूपेंद्र की आवाज में इसी नज्म पर मबनी वो यादगार नगमा।

चेतन आनंद मदन मोहन और कैफी आजमी की टीम ने उस दौर के कामयाब तरीन गाने दिए जिनकी बाजगश्त आज भी हमारे जहनों में मौजूद है। फिल्म हंसते जख्म का ये नगमा रफी ने जिस शिद्दत एहसास के साथ गाया है वो अपनी मिसाल आप है।

चेतन आनंद के दिल में बरसों से एक ख्वाब था कि वो वारिस शाह के पंजाबी शाहकार को फिल्म के कालिब में ढाली। उन्होंने इस ख्वाहिश का तस्करा कैफी से किया। कैफी ने कहा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो पहले कभी ना किया गया हो। कैफी ने तजवीज़ पेश की कि ये पूरी फिल्म नज़्म में लिखी जाए। चुनांचे हिंदुस्तानी फिल्मों की तारीख में ये वाहिद ऐसी फिल्म है जिसमें शायरी के अलावा किसी और सिंफ का एक जुमला भी नहीं है।

कैफी ने इस फिल्म के लिए सिर्फ जबरदस्त गाने ही नहीं लिखे बल्कि पूरी की पूरी कहानी और तमाम तर्मकाल में भी शेरों में लिखे। हालांकि राजकुमार और प्रिय राजवंश दोनों ही अदाकार अपने किरदार में मौजूद नहीं थे, लेकिन फिल्मी गानों और मकालमों की खूबसूरती के दम पर फिल्म चल गई।

0: इस दौरान बस उनकी शायरी ही उनकी दवा थी, उनकी मुनिसो गमखार थी, उनकी रफीको अनीस थी।
1: कभी जुबूद कभी सिर्फ इंतशार सा है, कभी जुबूद कभी सिर्फ इंतशार सा है, जहां को अपनी तबाही का इंतजार।

बाद के दौर में फिल्म पाकीज़ा का उनका गाना चलते चलते एक निहायत मकबूल गाना साबित हुआ और लता मंगेशकर के बेहतरीन गानों में इसका शुमार किया जाता है।

कमाल अमरोही कैफी आजमी के फन की बहुत कद्र करते थे, उन्हें चलते चलते की गैर मामूली कामयाबी याद रही, और जब उन्होंने रजिया सुल्तान बनाई तो इसमें भी लिखने के लिए कैफी से दरखास्त की। कैफी को जो सिचुएशन दी गई थी वो कुछ अलग तरह की थी। रिझाने वाले नाजो अंदाज और अदाए दिल फरेबी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस नगमे का अपना एक अलग हुस्न है।

सच तो यह है कि गुलकार जगजीत सिंह ने इस फिल्म से जो मकबूलियत हासिल की, उसने रातों रात उन्हें मुल्क के अहम तरीन सिंगर्स की फहरिस्त में शामिल कर दिया। आज भी ये गजल हमें जगजीत और कैफी के मुनफरिद इश्तराक की कहानी सुनाती महसूस होती है।

अभी आप सुन रहे थे गर्म हवा फिल्म की कवाली, अजीज अहमद खान वारसी कव्वाल और साथियों की आवाज़ों में कलाम था कैफी आज़मी का। और लीजिए अब सुनिए मदन मोहन की मौसीकी में कैफी आज़मी का लिखा नगमा, फिल्म है हीर रांझा, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

दो बूंद पानी फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे। परवीन सुल्ताना, मीनू पुरुषोत्तम और साथियों की आवाज़ों में कैफी आज़मी का लिखा हुआ मौसीकी जयदेव की थी। और लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में इस प्रोग्राम की अगली पेशकश। फिल्म है हकीकत।

0: फरार फिल्म का नगमा सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, और इस नगमे के साथ ही फिल्मी मौसीकी का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 4:50 हुए हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माहौलियाती जिम्मेदारी नौजवानों को बाख्तियार बनाकर और दाखिली बहबूद के जरिए एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने की खातिर इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। तमिलनाडु में जोसेफ विजे ने चेन्नई में वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया, 9 वजीरों को भी हलफ दिलाया गया। आसाम में हेमंत

सभी युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युववाणी लेकर आप सभी के बीच उपस्थित है आपका अपना साथी करण वर्मा। स्वागत है आपका हमारे आज के इस अंक में, जिसका आगाज हम करेंगे मातृ दिवस से आज की बात के साथ। दोस्तों, माँ इस संसार में भगवान का सबसे सुंदर और अनमोल उपहार होती है। माँ का प्यार निस्वार्थ, पवित्र और असीम होता है। माँ अपने बच्चों के लिए सुख और उज्जवल भविष्य के लिए हर कठिनाई सहन कर लेती है। माँ के त्याग, ममता और प्रेम को सम्मान देने के लिए हर वर्ष मातृ दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें माँ के महत्व को समझने और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करने का अवसर देता है। श्रोताओं, मातृ दिवस हर वर्ष मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इस दिन बच्चे अपनी माँ को विशेष महसूस कराने के लिए उन्हें उपहार देते हैं। माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। वो हमें चलना, बोलना और अच्छे संस्कार सिखाती है। माँ अपने बच्चों को सही और गलत का अंतर समझाती है। वो हमेशा अपने बच्चों की सफलता और खुशियों के लिए प्रार्थना करती है। मित्रों, हम जब बीमार होते हैं तब माँ पूरी रात जागकर हमारी देखभाल करती है। वो स्वयं कष्ट सहकर भी अपने परिवार को खुश रखने का प्रयास करती है। माँ का हृदय दया, प्रेम और त्याग से भरा होता है। संसार में माँ के प्रेम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। साथियों, भारतीय संस्कृति में माँ को भगवान के समान माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव, अर्थात माँ देवता के समान होती है। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, जबकि अपने बच्चों का जीवन भी संवारती है। इसीलिए हमारे समाज में माँ का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। हमें केवल मातृ दिवस के दिन ही नहीं, जबकि हर दिन अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए। हमें उनकी बात माननी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए और उन्हें कभी दुख नहीं देना चाहिए। माँ की सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो दोस्तों, चर्चा और भी करेंगे। आइए पहले चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म राजा और रंग का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

दोस्तों, आइए अब बात करते हैं डिजिटल शिक्षा की। श्रोताओं, आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। तकनीक से हमारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आया है और शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। पहले शिक्षा केवल स्कूलों और पुस्तकों तक सीमित थी, लेकिन अब इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर और ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई की जा रही है। इसी आधुनिक शिक्षा प्रणाली को डिजिटल शिक्षा कहा जाता है। मित्रों, डिजिटल शिक्षा ने पढ़ाई को आसान और सुलभ बनाया है, लेकिन इसके कुछ लाभ भी है और नुकसान भी। इन दोनों को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आइए पहले बात करते हैं इसके फायदों की, जैसे घर बैठे शिक्षा प्राप्त करना। साथियों, डिजिटल शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ यही है कि विद्यार्थी घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, उन्हें स्कूल और कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं होती है। समय की बचत होना। श्रोताओं, ऑनलाइन पढ़ाई में

विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। वे किसी भी समय वीडियो लेक्चर देखकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इससे समय की बचत होती है। पढ़ाई को रोचक बनाना। दोस्तों, डिजिटल शिक्षा में चित्र, वीडियो, ऑडियो और एनिमेशन का उपयोग किया जाता है। इससे कठिन विषय भी आसानी से समझ में आ जाते हैं और पढ़ाई रोचक बन जाती है। दूर दराज क्षेत्रों तक शिक्षा का होना। मित्रों, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थी भी इंटरनेट माध्यम से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इससे शिक्षा का प्रसार होता है। तो साथियों, डिजिटल शिक्षा के नुकसान को जानने से पहले आइए एक बार फिर चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म पापा कहते हैं का ये गीत उदित नारायण की आवाज़ में।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: दोस्तों, आइए अब बात करते हैं डिजिटल शिक्षा से होने वाले नुकसानों की, जैसे इंटरनेट और उपकरणों की समस्या होना। मित्रों, हर विद्यार्थी के पास स्मार्टफोन, कंप्यूटर या अच्छा इंटरनेट उपलब्ध नहीं होता। गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को इससे कठिनाई होती है। ध्यान भटकने की समस्या। साथियों, मोबाइल और इंटरनेट के कारण विद्यार्थी पढ़ाई के बजाय खेल, सोशल मीडिया और मनोरंजन की ओर आकर्षित हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ना। लंबे समय तक मोबाइल और कंप्यूटर का उपयोग करने से आंखों में दर्द, सिर दर्द और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं हो सकती है। शिक्षकों और विद्यार्थियों का कम संपर्क होना। श्रोताओं, ऑनलाइन शिक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी आमने सामने नहीं मिलते, जिससे कई बार विषय को सही ढंग से

समझने में कठिनाई होती है। अनुशासन की कमी। मित्रों, घर पर पढ़ाई करने के कारण कई विद्यार्थी नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कर पाते, उनमें अनुशासन की कमी भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे डिजिटल शिक्षा के फायदे और नुकसान। डिजिटल शिक्षा वास्तव में आधुनिक समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है, इसीलिए हमें डिजिटल शिक्षा का सही और संतुलित उपयोग ज़रूर करना चाहिए। तो श्रोताओं, बातें तो चलती रहेगी, लेकिन अब समय एक गीत का है। लीजिए, अब सुनिए फिल्म परदेश का ये गीत कुमार शानू की आवाज़ में।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: दोस्तों आइए अब बात करते हैं दहेज प्रथा की। श्रोताओं, दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक गंभीर सामाजिक समस्या है। विवाह के समय लड़की के परिवार द्वारा लड़के के परिवार को धन, गाड़ी, गहने, कपड़े और अन्य वस्तुएं देने की प्रथा को दहेज प्रथा कहा जाता है। पहले ये प्रथा प्रेम और सम्मान के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन समय के साथ ये एक बुरी सामाजिक कुरीति बन गई। आज दहेज के कारण अनेक परिवार आर्थिक और मानसिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मित्रों, दहेज प्रथा के कई कारण हैं, जैसे समाज में लंबे समय से ये सोच बनी है कि शादी में दहेज देना आवश्यक है। लोग इसे प्रतिष्ठा का विषय मानते हैं। कुछ लोग अधिक धन और वस्तुएं प्राप्त करने के लिए दहेज की मांग करते हैं। शिक्षा की कमी के कारण लोग दहेज प्रथा के दुष्परिणामों को नहीं समझ पाते हैं। कई परिवार समाज के डर और दिखावे के कारण अपनी क्षमता से अधिक दहेज देते हैं। साथियों, दहेज प्रथा के कारण कई दुष्परिणाम सामने आए हैं, जैसे आर्थिक बोझ, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा व आत्महत्या और अपराध। दोस्तों, दहेज प्रथा रोकने के कई उपाय हैं, जैसे शिक्षा का प्रसार करना होगा, कानून का सख्ती से पालन करना होगा, सामाजिक जागरूकता को बढ़ाना होगा और सरल विवाह अपनाना होगा। इस प्रकार के उपाय अपनाकर हम दहेज प्रथा को रोक सकते हैं। दहेज प्रथा समाज के लिए एक अभिशाप है। हमें मिलकर इस बुरी प्रथा को समाप्त करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक दहेज प्रथा पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। इसीलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो दहेज का विरोध करें और समाज को बेहतर बनाने में योगदान दे। तो श्रोताओं, चर्चा और भी करेंगे।

दोस्तों, युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं। देश की प्रगति और विकास युवाओं की शक्ति पर निर्भर करता है। यदि युवा शिक्षित, स्वस्थ और जागरूक होंगे तो देश उन्नति करेगा। लेकिन आज के समय में नशे की बढ़ती आदत युवाओं के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। शराब, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा और अन्य नशीले पदार्थ युवाओं को धीरे धीरे शारीरिक और सामाजिक रूप से कमजोर बना रहे हैं। इसीलिए नशा मुक्ति आज समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। साथियों, युवाओं में नशे के कई कारण हैं, जैसे गलत संगति का प्रभाव, तनाव और चिंता के कारण, फिल्मों और सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण और जागरूकता की कमी के कारण। आज युवाओं में नशा बढ़ता जा रहा है। नशे के कारण कई दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, पढ़ाई और करियर पर असर, परिवार और समाज में समस्याएं और आर्थिक नुकसान भी शामिल हैं। श्रोताओं, नशा मुक्ति के कई उपाय अपना सकते हैं, जैसे शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाकर नशा कम किया जा सकता है, अच्छी संगति से, योग व खेल के अभ्यास से, परिवार के सहयोग से और नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्त नियंत्रण से नशे को कम किया जा सकता है। मित्रों, नशा समाज और युवाओं दोनों के लिए हानिकारक है। ये केवल व्यक्ति का ही नहीं जबकि पूरे परिवार और देश का नुकसान करता है। इसीलिए हमें मिलकर नशा मुक्त समाज बनाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। यदि युवा नशे से दूर रहेंगे तो देश का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित बनेगा। तो साथियों, बातें तो चलती रहेगी युवाणी कार्यक्रम को जारी रखते हुए, लीजिए अब सुनिए फिल्म कयामत से कयामत तक का ये गीत।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

दोस्तों, आइए अब बात करते हैं टुडेज हिस्ट्री यानी आज के इतिहास की। श्रोताओं, आज ही के दिन सन 1857 में मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह शुरू किया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। 10 मई के दिन ही सन 1904 में पेरिस में फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा की स्थापना भी हुई थी। सन 1993 में संतोष यादव लगातार दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही भी आज ही के दिन बनी थी। साथियों, 10 मई के दिन ही सन 1994 में नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ भी ली थी, जो रंग भेद के अंत का प्रतीक भी बना था। आज ही के दिन सन 2005 में लाहौर अमृतसर बस सेवा शुरू करने पर भारत और पाकिस्तान सहमत हुए थे। 10 मई के दिन ही सन 1898 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी विचित्र नारायण शर्मा का जन्म भी हुआ था। तो मित्रों, युवाणी कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए एक बार फिर चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म सौदागर का ये गीत।

दोस्तों, युवाणी कार्यक्रम के आखिर में आइए चलते चलते सुनते हैं फिल्म डर का ये गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम यहीं तक। अब अपने साथी करण वर्मा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी युवा साथी युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सहराइकी। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल होगा शाम 7 बजे। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे सब्जियों की खेती में ध्यान देने योग्य बातें, बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय, पशु चारे के लिए ज्वार की खेती और उपलब्ध होने पर मौसम और बाजार भाव की भी जानकारी दी जाएगी। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:45 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इसमें आज आप सुनेंगे जानकारी और गीत। चंद गजलें पेश की जाएंगी सुगम संगीत कार्यक्रम में रात्रि 9:30 पर। ये थे इस सभा के शेष कार्यक्रम। हमारे दिल्ली और जयपुर केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार से हैं। हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेगा 6:30 पर, राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार 6:45 पर, जिले की चिट्ठी आप सुना करते हैं शाम 6:40 पर। कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का रहेगा रात्रि 8:30 पर। रात्रि 9:30 पर सुने कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर्स। रविवार या संगीत सभा आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, एफएम पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

पहले सुन रहे हैं सूरज कटपालिया को लो वार्ता माखनलाल चतुर्वेदी दा जीवन दर्शन। कवि अपने वेले दे समाज दा शीशा होंदे जेड़े समाज को उनकी सच्ची तस्वीर अपने रचनावां दे बाबत दिखेंदे रहंदे ते समाज को हमेशा सजग रखण विच अपना किरदार ईमानदारी नाल निभेंदे। वो समाज विच नवे विचारें को मनवेंदे ते लगातार एक नवी ऊर्जा का संचार करके लोगों को अपना जीवन सार्थक बनावण विच मददगार साबित थींदे। तारीख का कोई भी दौर होवे, कोई भी अंदोलन होवे, कवि उकू सफल बनाने विच हमेशा अगो रहंदे। अज असन जिहड़े कवि दे बारे वार्ता करेंदे पए हैं उन्हें दा नां है माखन लाल चतुर्वेदी। इन्हें दा जन्म 4 अप्रैल 1889 विच बाबई होशंगाबाद मध्य प्रदेश विच थिया है। इन्हां दे पिता जी दा नां पंडित नंद लाल चतुर्वेदी है ते माता जी दा नां सुंदरी बाई है। पिता जी कस्बे दे स्कूल विच शिक्षक हन पए। ए ओ वक्त है जिहड़े वेले आजादी की लड़ाई का जज्बा जोर पकड़ेंदा पिया है। 1906 तो गिन के 1910 तोणी इन्हें शिक्षक की नौकरी की थी, लेकिन वतन की आजादी का सड्डा आ गया ते कवि माखन लाल चतुर्वेदी जी ने असहयोग अंदोलन ते भारत छोड़ो अंदोलन विच अगो थी के अपना किरदार निभाया। कई बारी कैद किया गया, लेकिन मुसीबत उन्हें दी हिम्मत को ना तोड़ सकिया। 1910 दे बाद माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रवादी पत्रिकावां प्रभात ए उन्दे बाद करमवीर दे संपादक बने। उन्हें विच देश भक्ति का उत्साह, भाषण जोशीले हन ते उन्हां दे लेखां विच जनता विच नवे जोश को तेज करन वाली चिंगारी है। श्री माखन लाल चतुर्वेदी भारत माँ दे सच्चे सपूत हन ते उन्हें दी सच्ची भारतीय भावना ने आम लोगों विच आजादी की उम्मीद को जगावण दा सफल प्रयास किया। हिंदी साहित्य विच उन्हें दा उल्लेखनीय योगदान है। 1955 विच सागर विश्वविद्यालय तो प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतण वाले वो पहले आदमी हैं। 1963 विच इन्हें को पद्म भूषण पुरस्कार दे के सम्मानित किया गया। कोई भी लोग उन्हें को अपने रस्ते तो इड्डे उड्डे ना कर सकिया। वो मध्य प्रदेश विच सत्ताधारी कांग्रेस दे वरिष्ठतम नेता हैं, पर सत्ता का लोभ उन्हें को कदें भी ना आया। उन्हें दे मन विच संघर्ष की ज्वाला हमेशा बलदी रही तो वो हमेशा समझौतों के खिलाफ हमेशा आवाम विच चेतना जगेंदे रहे। उन्हें लिखा भी है, अमर राष्ट्र उदंड राष्ट्र उन्मुक्त राष्ट्र ये मेरी बोली, ये सुधार समझौतों वाली मुझको भाती नहीं ठिठोली। माखन लाल जी हमेशा असंतोष ते इंसानी दर्द दे एहसास को अपनी पत्रकारिता दी मार्फत अपनी आवाज दे के बुलंद करेंदे रहे। माखन लाल आम लोगों विचों निकले हुए पत्रकार हन। उन्हें दा आखण है कि संपादक दी नज़र हमेशा परिणाम ते लगातार बनी रावनी चाहिदी है, क्योंकि उन्दी पूरे देश दे प्रति जवाबदेही होंदी है। उन्हें दा आखण है कि समाचार पत्र को ऐसा होना चाहिदा है कि उन्हें ते ज्ञान दी कमी दा कदें भी कोई लांछन न लगे। कवि माखन लाल चतुर्वेदी दी गाल करूँ ते उन्हें दी लिखी कविता पुष्प की अभिलाषा दी गाल ना करूँ ते ए उन्हें नाल ना इंसाफी होसी। केड़ा ऐसा स्कूल बनण वाला बाल होसी जै ए कविता ना पढ़ी होसी। इन कविता विच फुल दी इच्छा दिखाई गई है कि वह चाहते उकू देश दी हिफाजत विच लगे हुए सैनिकां दे रस्ते विच सट्या वंजे ताकि उनकी जिंदगी सार्थक थी वे। एक कविता बाले को देशभक्ति दे भावे नाल ओत प्रोत करेंदी है ते ओ फुल कोलो सिख दे कि वतन वास्ते कुर्बानी देवण वाले हमेशा वास्ते अमर थी वेंदे। इन कविता दे कुछ लाइना तुसा भी सुनो। चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी पर ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वन माली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। एक कविता नाल कवि दे मन विच राष्ट्र प्रेम का जज्बा पूरी तरह उजागर थींदे ते उन्हें दे जीवन दर्शन की भी झलक मिलती है। माखन लाल आखर तोणी समाज विच समानता घेनावण वास्ते लड़ते रहे ते महात्मा गांधी जी दे दिखाए रास्ते ते चलते रहे। वो हमेशा सच ते अहिंसा दे नियम दा पालन करेंदे रहे। उन्हें दी कवितावां विच वतन ते सब कुछ कुर्बान ते वतन दी मुहब्बत दा जज्बा छलकदा होया हमेशा डिठा बन सकदे। उन्हें दी कविता अमर राष्ट्र दे कुछ लाइना सुनो जेंदे विच आप सबको उन्हां दे राष्ट्र प्रेम दी भावना स्पष्ट नजर आसी। यह जागृति तेरी तू ले ले, मुझको मेरा दे दे सपना, तेरे शीतल सिंहासन से सुख कर सो युग ज्वाला तपना, सूली का पथ ही सीखा हूँ सुविधा सदा बचाता आया, मैं बलि पथ का अंगार

हूं, जीवन ज्वाल जलाता आया, एक बिता तो पता लग दे कि कवि उन्हें हर प्रकार दे आराम कुन छोड़ के सिर्फ संघर्ष का रास्ता चुने, जेड़ा हमेशा जिंदगी को मुश्किल बने दे। लेकिन माखन लाल ई जीवन दर्शन विच देश सब को पहले है। माखन लाल चतुर्वेदी का संपूर्ण जीवन देश वास्ते समर्पित आई। उन्हें अपनी आवाज़ को बुलंद किया, नौजवानों को देश की आज़ादी किते मर मिटन वास्ते तैयार किया। जिमें स्वामी विवेकानंद जी को कोरा सन्यासी ते महात्मा गांधी जी को कोरा राजनेता आख के निशे टाल सकते, उमें माखन लाल चतुर्वेदी को भी कोरा साहित्यकार या पत्रकार आख के निशे टाल सकते। पंडित जी आज़ादी की लड़ाई के निडर योद्धा हैं, क्रांतिकारी कवि हैं ते निर्भीक पत्रकार हैं। वो कम करने वाले योद्धा, बुद्धि तो चिंतक, दिल तो कवि, स्वभाव तो संत, तो उमदा किस्म का भाषण करने वाले इंसान हैं। उन्हें का पूरा जीवन ते चिंतन भारत के समाज की रक्षा करन विच ते उकूं सवारन विच लगा रिया। उन्हें दी भाषण देवन की कला ते एक बारी महात्मा गांधी जी ने आख्या है कि हम सब लोग तो बात करते हैं, बोलना तो माखन लाल जी ही जानते हैं। सन 1933 विच मध्य प्रदेश विच हरिजन दौरे दे वक्त महात्मा जी बाबई पहुँचे तो उन्हें आख्या है, मैं बाबई जैसे छोटे स्थान पर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वह माखन लाल का जन्म स्थान है। जिस भूमि ने माखन लाल को जन्म दिया उसी भूमि को मैं सम्मान देना चाहता हूँ। एक भारतीय आत्मा, ए ना माखन लाल जी वास्ते बिल्कुल वाजिब उपनाम है पिया। एक भारतीय आत्मा एजा ना है जै वतन की गुलामी कबूल करन दी बजाय जेल विच दुख भोग के सुख का आनंद माणिया। सच विच माखन लाल विच देश प्रेम कुट कुट के भरया होया है। वो अपने आप को ते वतन दे सारे जवाने को सिपाही समझते हैं। उन्हें दी सिपाही कविता दे कुछ लाइना सुनो। बोल अरे सेनापति मेरे, मन की घुंडी खोल, जल थल नभ हिल डुल जाने दे, तू किंचित मत डोल, दे हथियार या कि मत दे तू, पर तू कर हुंकार, ज्ञातों को मत अज्ञातों को तू इस बार पुकार, धीरज रोग प्रतीक्षा चिंता सपने बने तबाही, कह तैयार द्वार खुलने दे, मैं हूँ एक सिपाही। माखन लाल ने अपने देश विच एक पत्रकारिता विद्यापीठ स्थापित करने का सुपना डिठा आई। उन्हें 1927 विच एक संपादक सम्मेलन विच आख्या है कि हिंदी अखबारें विच संपादन कला वास्ते एक विद्यापीठ की लोड़ है अते एजी विद्यापीठ की देखभाल करने वाला इंसान आला विद्वान, बुद्धिमान, परिश्रमी अते अनुभवी भी होवे। एक संयोग की गाल है कि उन्हें दे इस सुपने को 1990 विच मध्य प्रदेश सरकार ने साकार किया ते उन्हें दे नाते भोपाल विच एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की। अपने लंबे पत्रकारिता के जीवन विच माखन लाल जी ने आवण वाली पीढ़ी को रचना ते संघर्ष का जड़ा पाठ पढ़ाया वो हैरान करने वाला है। लिखण को घिन के ते प्रूफ रीडिंग तक का सारा काम माखन लाल जी खुद कर गिनते हैं। एजा है उन्हें विच अपने काम को ईमानदारी ते मेहनत नाल करन दा जज्बा, जेड़ा आज मिसाल बन के रह गए। सारे कष्ट को चुपचाप करके सहंदे हैं, लेकिन कदें भी करम बीर विच उन्हें इश्तिहार दे के अपने दुखों का रोवन नहीं रोया। कदें धन वास्ते अपील नहीं की थी। गाहक वधाउन वास्ते अपने कालमे विच कदें नहीं लिखा। उन्हें विज्ञापन कट्ठे करके धन जुटाने वास्ते कदें कई आदमी की नियुक्ति नहीं की थी। ऐसे हैं माखन लाल जी चतुर्वेदी। गांधी जी के सच्चे सिपा सलार, अपनी धुन दे पक्के, जिन्हें की नज़र सिर्फ अपनी मंजिल ते आई। माखन लाल चतुर्वेदी की प्रसिद्धि एक कवि के रूप में ज्यादा है, लेकिन वह एक पत्रकार, निबंधकार ते सिद्धस्थ संपादक हैं। इन्हें दी कविता का जड़ा मूल है वह है राष्ट्रीयता, जिंदे विच त्याग, बलिदान ते कर्तव्य भावना दे नाल समर्पण भाव है। इन्हें दी कविता की भाषा सरल है, वह इंसान को जोश नाल भर देती है। इन्हें हिंदी के शब्दों के नाल उर्दू ते फारसी लफ्जों का भी प्रयोग किए, जिंदे कारण एक अलग तरीके की सादगी ते मिठास है। इन्हें दी रचनावां विच देश प्रेम का जज्बा साफ नज़र दे। इन्हें अपनी रचनावां विच त्याग ते बलिदान दे रंग घोल लिते न, जिंदे विच पाठक सरोबार थी वेंदे। माखन लाल जी दियां कुछ कालजई रचनावां हैं, जिंदे विचों कुछ का नाँ है हिम तरंगणी, समर्पण, युग चरण, साहित्य देवता, दीप से दीप जले और पुष्प की अभिलाषा। इनके अलावा कुछ कवितावां जिमें अमर राष्ट्र, अंजलि के फूल गिरे जाते हैं, आज नयन के बंगले में, इस तरह ढक्कन लगाया रात ने,
उस प्रभात तू बात

0: नमा ने किरणों की शाला बंद हो गई चुप चुप, कुंज कुटीरे यमुना तीरे, गाली में गरिमा घोल घोल और मधुर मधुर कुछ गा दो मालिक इत्यादि। माखनलाल जी ने अपने लेखन दे तरीके नाल अपने वतन दे बहु बड़े तबके को प्रभावित किया ते उन्ने विच देश प्रेम जगाया। उन्ने दे भाषण भी बड़े ओजस्वी ते देश प्रेम नाल ओत प्रोत होंदे हन। इन्हें दे रचनावां आवण वाले कई युगे तोणी आम आदमी वास्ते प्रेरणा दे स्रोत बने रासन। राष्ट्र ने साहित्य दी दुनिया दा ए अनमोल हीरा 3 जनवरी 1968 को खो दिता ते पंडित जी 79 साल दा अपना संघर्षपूर्ण जीवन जी के अंतहीन यात्रा ते निकल गए। देश को उन्ने दे लेखन कोलो बहु उम्मीदा हन। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी देश दी कोई भी भाषा दे काबिल कवि को माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार देंदी है, जेड़ा कि पंडित जी दे देहांत दे 19 साल बाद 1987 कोलो शुरू किया गए। भारत दे पोस्ट ते टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ने भी माखनलाल चतुर्वेदी को सम्मान देवन देंदे हुए पोस्टेज स्टैंप दी शुरू की है। ये स्टैंप पंडित जी दे 88वें जन्मदिन 4 अप्रैल 1977 को जारी की गई। आखिर विच उन्हें दी कविता दे कुछ सत्रां पढ़ के मैं अपनी वार्ता खत्म करे सा। श्वेत केश भाई होने को है श्वेत पुतलियां बाकी, आया था इस घर एकाकी, जाने दो मुझको एकाकी, अपना कृपादान एकत्रित कर लें उससे जी बहला लें, युग की होली मांग रही है आओ उसमें आग लगा दें, मत बोलो वो रस की बातें, रस उसका जिसकी तरुणाई, रस उसका जिसने सिर सौंपा, आग लगा भभूत रमाई, मैं ये चला पत्थरों पर चढ़, मेरा दिलवर वहीं मिलेगा, फूंक जला दे सोना चांदी तभी क्रांति का सुमन खिलेगा, मैं न रहूंगा मुकुट और सिंहासन नहीं ये मूछ मरोड़ी, जाने दे सिर लेकर मुझको, ले संभाल ये लोटा डोरी। हुणे तो सुनदे पे आवे सूरज कटपालिया कोलो वार्ता माखनलाल चतुर्वेदी दा जीवन दर्शन। आओ हुण सुनदे हैं सराय की गीत संगीत।
1: पहला सुनेंदे हां जीशम खान रोखड़ी दा गाया गीत।

ए कार्यक्रम इथै खत्म थींदे मेकुंडे बो इजाजत सारी सराइकी संगत को राम राम। ई कार्यक्रम दे प्रस्तुत करता हन डॉक्टर सुरेश मीणा।

अभी आप सहराइकी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में समाज की भागीदारी को राजनीतिक व्यवस्था से कारगर बताया। देश भर में कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन राज्यस्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर राज्य के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव का प्रकोप जारी, दिन के साथ रातें भी काफी गर्म।

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी से एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में समाज की भागीदारी राजनीतिक व्यवस्था से कहीं अधिक कारगर है। प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सभी से पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी, युवाओं को रोजगार और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में सहभागी होने की अपील की।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आध्यात्मिक केंद्रों के समर्थन से किसानों को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और धरती को नुकसानदायक रासायनिक उर्वरकों से बचाने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र प्रति बूंद अधिक फसल पहल को बढ़ावा देने, जल संरक्षण, बिजली की बचत और सिंगल यूज प्लास्टिक को नकारने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। देश भर में कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 साल और मंदिर पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय समारोह गुजरात के सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजन होगा। साथ ही पुनर्निर्मित मंदिर के शिखर का 11 तीर्थ स्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए ऐसे अवसर सभी में नई ऊर्जा का संचार करते हैं।
1: कल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
0: राज्य में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। राज्यस्तरीय कार्यक्रम जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समारोह में शामिल होंगे। कला और संस्कृति विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने बताया कि इस अवसर पर प्रदेश भर के शिवालयों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे, साथ ही राष्ट्रीय आयोजन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर रहे। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में जल जीवन मिशन की प्रगति, रामजल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते पर चर्चा की गई। साथ ही राजस्थान के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से भी भेंट की। इस दौरान राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा तथा शहरी विकास से जुड़े विषयों पर बातचीत हुई। श्री शर्मा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से भी मुलाकात कर हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत पर बधाई दी। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अलवर में साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। श्री यादव ने सभी को मातृ दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें जन्म देने वाली माता और धरती माता दोनों के प्रति कृतज्ञ रहना आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य का अस्तित्व संभव नहीं है। केंद्रीय मंत्री श्री यादव और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज अलवर, खैरथल तिजारा और कोटपुतली क्षेत्र के करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। अलवर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि इन विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाएगा।
2: तो राम जल सेतु परियोजना है, उसमें विशेष रूप से डडीकर का रिजर्वायर, नीमराना का रिजर्वायर, अलवर भरतपुर चंबल मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को लेकर के यमुना लिंक प्रोजेक्ट हरियाणा और राजस्थान को

0: लेकर राणा प्रताप सागर से बिलासपुर वाटर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर, उसके साथ ही अलवर शहर के वाटर सप्लाई के 25 करोड़ के विषयों को लेकर, उसके साथ ही जहां तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का विषय है, रामगढ़ में जो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं वो हमारा एनसीपी जोन में आ रहा है, उसको लेकर के चर्चा हुई।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। व्याख्याता कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा 2022 में पेपर लीक और नकल गिरोह का खुलासा हुआ है। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता में बताया कि भर्ती परीक्षा में संगठित तरीके से पेपर लीक किया गया और फर्जी डिग्री तथा प्रमाण पत्रों के माध्यम से नौकरी हासिल करने की कोशिश की गई। गिरफ्तार अभ्यर्थी अशोक कुमार यादव ने पूछताछ में पेपर लीक की बात कबूल की है। एडीजी ने बताया कि पेपर लीक मामले में शेर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और उसके रिश्तेदार विजय डामोर को भी गिरफ्तार किया गया है। एसओजी कटारा के आरपीएससी सदस्य बनने की नियुक्ति प्रक्रिया और उसके द्वारा किए गए पेपर लीक से जुड़े नेटवर्क की भी जांच कर रही है।
2: हमारे द्वारा बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया है। बाबूलाल कटारा के गिरफ्तारी के उपरांत में उनसे पूछताछ करी जा रही है। पूछताछ में तरह तरह के जानकारियां प्राप्त हो रही है। मेन चीज कि बाबूलाल कटारा द्वारा स्वयं द्वारा क्या क्या गड़बड़ियां करी गई उसके बारे में जानकारी, इसके अलावा उनके कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने स्वयं ने नहीं करी हो लेकिन उनकी नॉलेज में होगी और क्या क्या गड़बड़ियां हुई है उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एकत्रित करी जा रही है।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इस बीच नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के लिए राजस्थान एसओजी को जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए इस मामले में सभी जरूरी डेटा और तकनीकी सहायता भी दे रही है। एनटीए की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 3 मई को ये परीक्षा पूरे सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत आयोजित की गई थी। 7 मई को परीक्षा के बारे में कथित कदाचार गतिविधियों के बारे में एनटीए को सूचना मिली। इसके बाद आवश्यक कार्यवाही के लिए ये सूचनाएं केंद्रीय एजेंसियों को भेज दी गई। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया। उन्होंने प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी तालमेल पर भी चर्चा की। गृह मंत्री ने लंबी अवधि के बाढ़ निवारण उपायों की प्रगति को भी जांचा। इनमें अहम बुनियादी परियोजनाओं का संरक्षण, नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान की वैज्ञानिक प्रगति शामिल है। बैठक में जनजागरूकता, जानमाल के नुकसान को रोकने और आवश्यक राहत सामग्री तथा दवाओं के पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने पर भी मंथन किया गया। और अब मौसम। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में हीट वेव का प्रभाव बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तेज गर्मी और लू को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। यह दिन के साथ ही रात में भी हीट वेव का असर रह सकता है। आज भी इन जिलों में लू का प्रकोप रहा। इन जिलों में दिन का पारा औसतन 44 से 45 डिग्री सेल्सियस मापा जा रहा है। वहीं चित्तौड़गढ़, बीकानेर, उदयपुर, जालौर और श्रीगंगानगर भी तेज गर्मी की चपेट में हैं। इधर पूर्वी राजस्थान के जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। हालांकि जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, सीकर, टोंक और झुंझुनू में धूप की तपिश और उमस लोगों को परेशान कर रही है। सुबह शाम हल्की हवाएं चलने से मामूली राहत मिल रही है। कल से राज्य में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इससे कई जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। सवाईमाधोपुर जिले में पशुओं में मुंहपका, खुरपका बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। पशुपालन विभाग की ओर से ये अभियान 15 मई तक चलेगा। विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. राजीव गर्ग ने बताया कि जिले में अब तक 2.5 लाख से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने पशुपालकों से गौवंश का समय पर टीकाकरण करवाकर इस अभियान में भागीदारी निभाने की अपील की है।
3: सवाईमाधोपुर जिले में खुरपका मुंहपका रोग के लिए जो FMD टीकाकरण कार्य का सप्तम चरण अभी इस वर्ष राजस्थान के अंदर सवाईमाधोपुर जिले ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करते हुए अधिक से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया है।

0: समस्त जिले के पशुपालकों से अधिक पशुओं में अपने टीकाकरण कराने का आह्वान किया जाता है ताकि हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकें, ताकि ये पशुओं को नुकसान ना पहुंचा पाए।
1: उत्तर पश्चिम रेलवे बाड़मेर से हरिद्वार के बीच कल से विशेष रेलगाड़ी चलाएगा। ये सेवा सप्ताह में 2 बार संचालित होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ये रेलगाड़ी बाड़मेर से हर सोमवार और गुरुवार को उपलब्ध रहेगी। ये विशेष ट्रेन 16 जुलाई तक चलेगी। आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ में आज 2 मैच हो रहे हैं। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जारी है। चेन्नई में खेले जा रहे इस मैच में लखनऊ की टीम ने सीएसके को जीत के लिए 204 रनों का लक्ष्य दिया है। वहीं दूसरा मैच शाम 7:30 बजे से रायपुर में खेला जाएगा। इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में समाज की भागीदारी को राजनीतिक व्यवस्था से कारगर बताया। देश भर में कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन राज्यस्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर राज्य के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव का प्रकोप जारी, दिन के साथ रातें भी काफी गर्म। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से अलवर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अविनाश मल्होत्रा ने तैयार किया है। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े पिछले दिनों अलवर पहुंचे। उन्होंने मत्स्य यूनिवर्सिटी के 6ठे दीक्षांत समारोह में भाग लिया। समारोह में उन्होंने 71 मेधावी छात्रों को उपाधि और मेडल प्रदान किए। इनमें 37 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 28 पीएचडी उपाधियां शामिल हैं। राज्यपाल ने समारोह में कुल 44,293 छात्रों को डिग्री और उपाधि प्रदान की। बीते दिनों केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर शहर में पार्क लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने आमजन और विभिन्न संस्थाओं से लाइब्रेरी के लिए पुस्तक दान करने की अपील की। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से पिछले दिनों जिले में भी एसआई पुलिस भर्ती 2025 की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। 2 दिन तक 2-2 पारियों में हुई इस परीक्षा के लिए कुल 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा संपन्न कराने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से सख्त निगरानी की गई। साथ ही डमी कैंडिडेट पकड़वाने या नकल की सूचना देने वालों के लिए 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई। अलवर में नगर निकाय चुनाव के लिए जिले के सभी वार्डों की निर्वाचक नामावलियां तैयार की जा रही हैं। नगर निगम के 65 वार्डों के लिए निर्धारित सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इस दौरान मतदाता अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर प्रगणक के पास उपलब्ध फोटो युक्त मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार प्रसार और योजना से मिलने वाले लाभों की जानकारी देने के लिए पिछले दिनों जिले के विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 575 लाभार्थियों के पंजीकरण किए गए और 243 आवेदकों ने मौके पर ही वेंडर का चयन किया। शिविर के दौरान लाभार्थियों को इंडक्शन कुक टॉप भी वितरित किए गए। ग्राम रथ अभियान के तहत जिले में पिछले दिनों विकास रथों को कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया गया। ये रथ जिले के अलवर ग्रामीण, रामगढ़, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठुमर और थानागाजी में विभिन्न क्षेत्रों में 15 दिनों तक संचालित होंगे। इन विकास रथों के माध्यम से 13 सरकारी विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और पात्र लोगों को इन योजनाओं से जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। जिले में संविधान निर्माता और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती श्रद्धा भाव से मनाई गई। शहर में कई स्थानों पर कार्यक्रम और समारोह आयोजित हुए। इसी कड़ी में जेल सर्किल से अंबेडकर सर्किल तक मैराथन और स्वास्थ्य दौड़ के साथ शोभा यात्रा भी निकाली गई। अंबेडकर छात्रावास में विचार गोष्ठी और सामुदायिक भवन में जनसभा का आयोजन हुआ। वहीं महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर भी जिले में कई कार्यक्रम हुए। कलेक्ट्रेट सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। नगर निगम कार्यालय सहित सभी उपखंड कार्यालयों में

0: महात्मा ज्योतिबा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेकर समाज के विकास का प्रण लिया गया। सरिस्का बाघ परियोजना की बफर रेंज में इन दिनों बाघिन ST-19 और उसके चार शावकों की अच्छी साइटिंग देखी जा रही है। सरिस्का में वर्ष 2008 में बाघों के पुनर्स्थापन के बाद अब यहां बाघों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। जिले में पिछले दिनों मौसम के कई रूप देखने को मिले, कभी तेज गर्मी तो कभी आंधी बारिश और ओलों का दौर चला। फिलहाल जिले में एक बार फिर से तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है। बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे दिन के समय अनावश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर ना निकले, साथ ही तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। इधर जिला प्रशासन भी तेज गर्मी से लोगों के बचाव के लिए प्रयासरत है। वहीं नगर निगम की टीम शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही है। जयपुर में आयोजित ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार में भाग लेने आए पोलैंड, थाईलैंड, स्लोवाकिया, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी देशों के टूर ऑपरेटरों के दल ने पिछले दिनों सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान प्रतिनिधियों ने इको टूरिज्म गतिविधियों और टाइगर सफारी का भी लुत्फ उठाया। सरिस्का में पिछले दिनों वन्य जीव गणना संपन्न हुई। इस बार बघेरों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा लंगूर, बंदर और नील गाय की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही अलवर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण में समाजरी भागीदारी ने राजनीतिक व्यवस्था सो कारगर बतायो। देशभर में काल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रो आयोजन, राज्य स्तरीय जलसो जयपुर राज झारखंड महादेव मिंदर माए वेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली दौरा मात है, राज्य रा विकास खातर केंद्रीय मंत्रियों मुलाकात करी। और पश्चिमी राजस्थान माए हीट वेव रो प्रकोप जारी, दिन रस आगे रात भी घने गरम। समाचार आ रहे सागे, मैं रचना पारिक और अब है समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत बनाबा खातर सगलाऊं एकजुट हो बारी अरज करी। वे कया के राष्ट्र निर्माण माए समाजरी भागीदारी राजनीतिक व्यवस्थाओं बत्ती कारगर है। प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु माए आर्ट ऑफ लिविंग री 45वीं जयंती जलसा माए बोल रहा। वणा संस्थान माए नया बनिया ध्यान मंदिर उद्घाटन भी करियो। इन मौके श्री मोदी पर्यावरण खातर जिम्मेदारी, नौजवाना ने रोजगार और आंतरिक शुचितारी भावना रह सागे राष्ट्र बनाबा माए सगड़ाओं मिलर काम कर बारी अरज करी।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री कया के आध्यात्मिक केंद्रारा समर्थनों कास्कारा ने प्राकृतिक खेती ने बढ़ावो देवा और धरती ने नुकसान देबा वाला रासायनिक उर्वरक सु बचाबा माए इमदाद मिल सके है। देश भर माए काल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनायो जावेला। सोमनाथ मंदिर में विया हमला रा 1000 बरस और मंदिर पुनर्निर्माण रा 75 बरस पूरा हो बारे मौके ओ पर्व मनायो जा रियो है। राष्ट्रीय जलसो गुजरात रा सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व रा रूप में मनायो जा रियो है। प्रधानमंत्री श्री मोदी री मौजूदगी में काल ध्वज पूजा वेला अमृत पर्व रे मौके पुनर्निर्मित मंदिर रा शिखर रो 11 तीर्थ स्थला रा जलो अभिषेक करियो जावेला। प्रधानमंत्री श्री मोदी कया के विकसित भारत खातर इन भात्रा मौका नुवी ऊर्जा देवे है।
2: कल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए

0: विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
1: राज्यमय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनायो जावेला, राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुरा झारखंड महादेव रामेंद्र मायवेला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जलशामाय शामिल वेला, कला और संस्कृति महकमारी शासन सचिव सुचित त्यागी बतायो के इन मौके प्रदेश भर माय शिव मंदिरा माय खास धार्मिक कार्यक्रम वेला, सागे ही राष्ट्रीय आयोजन रो सीधो प्रसारण भी करियो जावेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली रा दौरा माथेरिया वणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मुलाकात करी। इन दौरान राज्य माए जल जीवन मिशन री प्रगति, राम जल सेतु लिंक परियोजना और जमुना जल समझौता माथे चर्चा करी गई। सागे ही राजस्थान खातर न्यारी न्यारी महताऊ सिंचाई और पेयजल परियोजना वा खातर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री शर्मा केंद्रीय ऊर्जा आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल सू भी भेंट करी। इन दौरान राजस्थान माए ऊर्जा हल्का माए आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा

0: परियोजना और जमुना जल समझौता माथे चर्चा करी गई सागे ही राजस्थान खातर न्यारी न्यारी महताऊ सिंचाई और पेयजल परियोजना वा खातर भी चर्चा हुई मुख्यमंत्री श्री शर्मा केंद्रीय ऊर्जा आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल सु भी भेंट करी इन दौरान राजस्थान माय ऊर्जा हल्का माय आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़िया विषय माते बातचीत हुई वणा भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महासचिव बी एल संतोष सु भी भेंट कर हाल ही माय विया विधानसभा चुनाव माय पार्टी री जीत री बधाई दी केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव आज अलवर माय साइकिल रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना करिया रैली माय बड़ी तादाद माय महिला मा भाग लीना श्री यादव सगला ने मातृ दिवस री शुभकामना मा देता थका कया के महने जन्म देबा वाली मां और धरती माता दोनों रो आभारी रहनु चाहिए आरे बिना मिनख रो अस्तित्व नी रह सके है केंद्रीय मंत्री श्री यादव और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज अलवर खैरथल तिजारा और कोटपुतली हलकारा करीब 10,000 करोड़ रुपया री लागत वाली विकास परियोजना वारी समीक्षा करी अलवर माय प्रेस वार्ता ने संबोधित करता थका श्री यादव कया के इन विकास कामा ने तय बगतरी मियाद माय पूरो करियो जावेला
1: जो राम जल सेतु परियोजना है उसमें विशेष रूप से डडीकर का रिजर्वायर नीमराना का रिजर्वायर अलवर भरतपुर चंबल मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को लेकर के यमुना लिंक प्रोजेक्ट हरियाणा और राजस्थान को लेकर राणा प्रताप सागर से बिलासपुर वाटर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर उसके साथ ही अलवर शहर के वाटर सप्लाई के 25 करोड़ के विषयों को लेकर उसके साथ ही जहां तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का विषय है रामगढ़ में जो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं वो हमारा एनसीपी जोन में आ रहा है उसको लेकर के चर्चा हुई
0: शिक्षा मंत्रालय गर्मी री छुट्टियां माय देश भर स्कूल माय भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर राखेला एक हफ्ता माय ओ शिविर भारतीय भाषा वा माय बुनियादी संवाद कौशल सिखावा शब्दा ने जानबा आपरो परिचय देवा और रोजमर्रा जीवन री बातचीत और संस्कृति री सराहना माते केंद्रित वेला इंड्रो मकसद राष्ट्रीय शिक्षा नीति रे मुजब समावेशी और समान शिक्षा रा दृष्टिकोण ने बढ़ावो देनो है ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो व्याख्याता कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा 2022 माय पेपर लीक और नकल गिरोरो खुलासो वियो है एसओजीरा एडीजी विशाल बंसल आज जयपुर माय प्रेस वार्ता माय बताया के भर्ती परीक्षा माय मेल मिलापो पेपर लीक करियो गयो और फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट रे जरिए नौकरी हासिल करबारी कोशिश करी गई गिरफ्तार अभ्यर्थी अशोक कुमार यादव पूछताछ माय पेपर लीक री बात कही एडीजी बतायो के पेपर लीक मामला माय शेर सिंह भी गिरफ्तार करियो गयो है आरपीएससी रा पहला आला सदस्य बाबूलाल कटारा और उनरा रिश्तेदार विजय डामोर ने भी गिरफ्तार करियो गयो है एसओजी कटारा और आरपीएससी सदस्य बनबारी नियुक्ति प्रक्रिया और उन रिकानी करिया गया पेपर लीक से जुड़िया नेटवर्क री भी जांच करी जा रही है
2: हमारे द्वारा बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया है बाबूलाल कटारा के गिरफ्तारी के उपरांत में उनसे पूछताछ करी जा रही है पूछताछ में तरह तरह के जानकारियां प्राप्त हो रही है मेन चीज की बाबूलाल कटारा द्वारा स्वयं द्वारा क्या क्या गड़बड़ियां करी गई उसके बारे में जानकारी इसके अलावा उनके कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने स्वयं ने नहीं करी हो लेकिन उनकी नॉलेज में होगी और क्या क्या गड़बड़ियां हुई है उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन एकत्रित करी जा रही है
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इन बीच नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़ियां खातर राजस्थान एसओजी री जांच माय इमदाद करी है एनटीए इन मामला माय सगला जरूरी डेटा और तकनीकी सहायता भी दे रही है एनटीए रिकानियो जारी बयान माय कहो गयो है कि 3 मई ने आ परीक्षा पूरा सुरक्षा प्रोटोकॉल रे तहत राखी गई ही 7 मई ने परीक्षा रा 12 माय कथित कदाचार गतिविधियां रा 12 माय एनटीए ने सूचना मिली इनरे पछे जरूरी कार्यवाही खातर ये सूचना केंद्रीय एजेंसियां ने भेज दी गई फिलहाल आरी जांच चल रही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभावित बाढ़ और लू रा हालात से निपटबा खातर देश ने तैयारियां ने समीक्षा बैठक करी नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह सरकारी एजेंसियां ने तैयारियां रो जायजो करियो शुरुआती चेतावनी प्रणालियां संसाधन री तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय री समीक्षा करी गृह मंत्री देश में करिया जारिया दीर्घकालीन

0: बाढ़ निवारण उपायों की प्रगति की भी समीक्षा करी। जनमाय महताव ढांचागत परियोजनावान बचाव नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान में वैज्ञानिक प्रगति भेली है। बैठक में जन जागरूकता जानमाल और नुकसान ने रोकबा खातर निर्माण कार्यक्रम जरूरी राहत सामग्री और चिकित्सा तैयारियां चावता भंडार ने पक्को करबा माथे भी चर्चा करी गई। बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर और आरएसआरए रा हल्का माय हीट वेव रो असर बणियोड़ो है। मौसम महकमो आपदा दो तीन दिना खातर पश्चिमी राजस्थान रा कई जिला माय तेज गर्मी और लू खातर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करियो है। अठे दिन रसा गए रात माय भी हीट वेव रो असर रह सके है। आज भी आ जिला माय लू रो असर रियो। जिन जिला माय दिन रो पारो करीब 44-45 डिग्री सेल्सियस मापियो जा रियो है। वठी ने चित्तौड़गढ़ बीकानेर उदयपुर जालौर और श्रीगंगानगर भी तेज गर्मी री चपेट माए हैं। अठी ने पूर्वी राजस्थान रा जिला माए बतो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज करियो जा रियो है। हालांकि जयपुर अलवर दौसा करौली सीकर टोंक और झुंझुनू माए धूप री तपिश और उमस लोगों ने परेशान करी है। सुमारे सिंजा हल्की हवा चालबासु मामूली सी राहत मिल रही है। कालू राज्य माए नया पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय हो बारा आसार है। इनसु कई जिला माए और बिरखा होबारो अंदाजो है। सवाई माधोपुर जिला में ढांडा ढोरी मुंहपका खुरपका बीमारियां बचाबा खाता टीकाकरण करियो जा रियो है। पशुपालन महकमारी कानियो ओ अभियान 15 मई तय चालेला। महकमारा संयुक्त निदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग बताया कि जिला में हाल तई 2.5 लाखों बत्ता पशुआरे टीका लगाया जा चुकिया है। वणा पशुपालकों गोवंशो टेम माथे टीकाकरण करवार इन अभियान में भागीदारी निभावारी अरज करी है।
1: सवाईमाधोपुर जिले में खुरपका मुंहपका रोग के लिए जो FMD टीकाकरण कार्य का सप्तम चरण अभी इस वर्ष राजस्थान के अंदर सवाईमाधोपुर जिले ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करते हुए अधिक से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया है। मेरा समस्त जिले के पशुपालकों से अधिक पशुओं में अपने टीकाकरण कराने का आह्वान किया जाता है ताकि हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकें ताकि ये पशुओं को नुकसान ना पहुंचा पाए।
0: उत्तर पश्चिमी रेलवे बाड़मेरू हरिद्वार बीच कालू खास रेलगाड़ी चलावेला और सेवा सप्ताह में 2 भगत चालेला। उत्तर पश्चिमी रेलवारा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन रे मुजब ये रेलगाड़ी बाड़मेरू हर सोमवार और गुरुवार ने मुहैया रेवेला। यह खास गाड़ी 16 जिला तई चालेला। और अब आखिर माए खास खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण में समाज री भागीदारी ने राजनीतिक व्यवस्था सु कारगर बताया। देशभर में काल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रो आयोजन राज्य स्तरीय जलसो जयपुर राज झारखंड महादेव मिंदर माए वेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली रा दौरा माथे राज्य रा विकास खातर केंद्रीय मंत्रियों मुलाकात करी। और पश्चिमी राजस्थान माए हीट वेव रो प्रकोप जारी दिन रसा गए रात भी घनी गर्म। इंद्र सागे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन अठाई पूरो वियो। मां को आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमार है 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल।

में फसल चक्र जरूर अपनाना चाहिए। किसान भाइयों, फसल चक्र अपनाता टाइम ई बात को ध्यान रखना है कि एक बार गहरी जड़ वाली फसल के बाद आपने कम गहरी जड़ वाली फसल की ही बीजांत करनी चाहिए। इसी फसलों की जड़ां ज़्यादातर गहरी और माटी का अंदर तक होवे। जिस पौधा माटी के ऊपर से आपको भोजन पानी नहीं लेगे, अंदर गहराई से पोषण लेवे, जगह की वजह से जमीन के ऊपरी सतह पर मौजूद जगह जरूरी पोषक तत्व है बे काम को नहीं आवे, और आपा जे दूसर बाई फसल बीज छा तो माटी का पोषक तत्व खत्म होता जाएगा। जे आपा फसल फिर बदल करके बीज छा तो भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और जमीन में उर्वरा शक्ति पैदा होने को जमीन ने मौको भी मिलते रहेगा। इनके अलावा आप ई बात को भी ध्यान रखा कि ज़्यादा खाद लेने वाली फसल के बाद कम खाद से पकन वाली फसल बीजनी चाहिए। जे आप ज़्यादा खाद ले गए पका वाली फसल बार बार बीजता रहें तो खाद की खपत ही तो ज़्यादा हो जाएगी और आपा ने बिंगी पूर्ति करनो औखो हो जाएगो। इनके अलावा माटी की रंगत में भी फर्क देखने मिलसी। और जे आप फसल चक्र अपना के बीजांत करांगा तो किसान भाइयों, पहली फसल में ना खड़ी खाद अपनी दूसरी फसल में भी अच्छो असर करेगी। तो हाँ, सगड़ी बातों को ध्यान रख के आप खेती कर सका। इनके अलावा आप फसल चक्र के बारे में और भी बात करांगा। पहला आप सुन लिया वो भजन सुनो सर।

सुनियो भाई लोगों भजन और भजन शू पहला आपा बात करा फसल चक्र की, तो फसल चक्र का मां आपा ने पानी सिंचाई की बचत को भी ध्यान रखना है, यानी ज़्यादा पानी वाली फसल के बाद आपा कम पानी वाली फसल बीजा। ईशू एक तो सिंचाई का साधना को आपा ने ज़्यादा उपयोग को नहीं करना पड़े, दूसरी बात आ कि जमीन में ज़्यादा दिन पानी टिके रहने शू जमीन में होवन वालो वायु संचार में भी की भीतरिया की बाधा को नहीं आवे, क्योंकि ज़्यादा पानी जमीन में रहने से जरूरी जीवाणु क्रियाशीलता बाधित हो जाए। किसान भाइयों, फसल चक्र अपनाता टाइम आप यही बात को भी ध्यान रखा कि अनाज वाली फसलों के सागे सागे दलहन की फसल भी फसल चक्र के दौरान आपने बीजनी चाहिए, क्योंकि ई तरिया से फसल जब आप काट लेवा तो भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी हद तक रह जावे, क्योंकि आप जब भी अदला बदली की फसल बीजा तो आपने नाइट्रोजन खाद या यूरिया की ज़्यादा जरूरत कौन पड़े और आपनो खर्चो पानी भी बचे। और एक बात ध्यान रखनी है कि आप बेई फसल बीजा जकी फसल में ज़्यादा खेचल न करनी पड़े और आपनो पीसो टको भी कम लगे। बिया तो कृषि विशेषज्ञ कहवे कि ज़्यादा जुताई गुड़ाई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईशू जमीन की संरचना बिगड़ जाए। इनके अलावा भाई लोगों, जे आप हरी खाद खेत में ही तैयार करके फिर अच्छी तरह खेत की जुताई कर देशा तो माटी की उल्टा पलटी शू खाद बढ़िया तरीके से सड़गे तैयार हो जाएगी। हरी खाद तैयार करने में ज़्यादा खेचड़ भी कौन करनी पड़े और ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी कौन पड़े। किसान भाइयों, फसल चक्र में हरी खाद की बीजांत भी आपा ने अपनानी चाहिए। इनमें आपा ढेंचो, सनई, ग्वार, चना अन्य मिला के बीजांत कर देवा और बीज बनने से पहली एक दो पानी लगाना है। इनके बाद में जमीन से जब पौधा ऊपर तक आ जाए, यानी जमीन ने जब अच्छी तरह ढक लेवे, तो ट्रैक्टर की सहायता से

तोई या रूटावेटर से अच्छी तरह से जुताई कर देवा ताकि हरी खाद का अवशेष माटी में बढ़िया तरीके से मिल जावे। ई तरह से आप अपने खेत में फसल चक्र अपनाता थका हरी खाद तैयार कर सका और रासायनिक खादा में होन आड़ो फालतू वो खर्चो आप बचा सका। इनके अलावा किसान भाइयों अपनी जमीन में रासायनिक उर्वरक न नाके गोबर की अच्छी सड़ी गली खाद नाखा, कंपोस्ट खाद भी तैयार करके खेत में नाख सका, वर्मी कंपोस्ट खाद भी तैयार करके इस्तेमाल कर सका ताकि जमीन की ताकत लंबे टाइम तक बनी रहे। जिस अपनी फसल ने अच्छी उर्वरा शक्ति मिलेगी, जमीन उपजाऊ बनेगी, अच्छी पैदावार है, अच्छी आमदन होगी। पर किसान भाइयों पानी धानी को भी पूरा ध्यान रखना है, कम पानी वाली फसलों को ही चुनाव करना है ताकि आप खेती वाले पानी की बचत कर सका। इनका सागे सागे आप फंवारा विधि और बूंद बूंद सिंचाई विधि को इस्तेमाल भी कर सका जिस जरूरत के हिसाब से ही फसल ने पानी मिलेगा और पानी की बचत भी होगी। फसल चक्र में हमेशा हरी खाद को आपने ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। हरी खाद से माटी की उर्वरा शक्ति बढ़ने के सागे सागे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी ज़्यादा बढ़े और भूमि की भौतिक और रासायनिक दशा में सुधार भी होवे। किसान भाइयों घरेलू जरूरत और आवश्यकता ने भी ध्यान में रखे फसल चक्र में आपा भांत भांत की फसलों को भी जांच करा और आपा बाँ फसलों ने ज़्यादा जरूरी माना जबकि माटी कटाव कम करें तो इसी फसलों की ही भी जांच करनी चाहिए। अनाज खातर गेहूँ, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरो, दाल, तरकारी खातर मूंग, मोठ, मसर, अरहर, पशुओं के चारे खातर ज्वार, जई, इनके अलावा नरमे कपास, गन्ना, आलू ये सब फसलां फसल चक्र अपनाता टाइम आप बीज सका और माटी की उर्वरा शक्ति बचावन के सागे सागे अच्छी उपज भी ले सका। तो बातें और भी करांगा, पहला आप सुन लिया वो गीत सुनो सर।

सुनियो भाई लोगों गीत और बात करा खेती का माँ आपा जका पोषक तत्व ना खा बांगी उपयोगिता की, क्योंकि अब जिया ही अपना किसान भाई फसलों की बीजांत करेगा तो फसल की अच्छी बढ़वार खातर और अच्छी फलत खातर फसल की भूमि की पूरी सार संभाल करनी जरूरी है। और आप बात थे भी समझो कि बिना जानकारी कोई भी फसल की बीजांत करा तो फायदे की जगह नुकसान ज़्यादा हुए। पीसो टको खर्च करके और दपाऊगी हार्ड तोड़ मेहनत करके जे हाथ पर ले की नहीं आवे तो बड़े दुख वाली बात है। भाई लोगों खेती ने जोर जबरदस्ती सागे कौन पैदा कर सका नहीं, इनके लिए खेचड़ का सागे सागे खेती करने का गुर भी होना चाहिए। किसान भैया ने किस्मा की जानकारी, बीज की गुणवत्ता की जानकारी होनी चाहिए। इनके अलावा किसी फसल ने किसा उर्वरक देना है, कितनी मात्रा में और कद देना है, पानी धानी को जाब तो भी पूरा रखना, ये सब बातें जे अगर कोई किसान भाई जाने तो फिर आपा कह सकें कि वो मिनक खेती करने के लायक है। और आज को टाइम आपा मशीनी युग को मान सकें तो हर किसान ने आधुनिक तौर तरीके से खेती करने को ज्ञान भी होना चाहिए। क्योंकि पुराने टाइम में जकी खेती करता बा मिनखा और पशुओं पर ही आधारित थी, पर अब जागरूक किसान नुआ नुआ नवाचार करके आधुनिक तरीके से खेती करें। कई किसान भाई बीजांत तो कर देवे पर फलत कम होवे जद माथे गात लगा लिए। इन वास्ते हर सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। और आपा ईशा बहुत सा पोषक तत्व फालतू में नाखा जकांगी मौके पर जरूरत कोनी होवे। इन वास्ते किसान भाइयों माटी की जांच भी जरूर करवा लेनी चाहिए। इंशु पतो चाल जाए कि अपनी फसल में किसा पोषक तत्व ज़्यादा है और किसा कम है। जे कम होवे तो आपा बिंगी पूर्ति भी कर सका।

और फसल कोई भी बीजांत करा तो बीज उपचारित करना बहुत जरूरी है। बीज की छंटाई के सागे सागे बीज या पौध उपचारित कर लेवा तो आधी से ज़्यादा खेचड़ और पीसो टको भी बचा सका। इं तरिया से ही एक कल्चर है पीएसबी कल्चर। तो आज आप पीएसबी कल्चर की पूरी जानकारी थारे सागे साझी कर छा, पर पहला आप सुन लिया वो भजन सुनो सा।

सुनियो भाई लोगो गीत, बात करा खेती बाड़ी की। तो भाई लोगो, जियां जियां अपनी जनसंख्या बदेपो लेन लाग रही है, बियां बियां अपने खेती की उपज भी बदान खातर आपने नया नया तरीका शुरू खेती करने की जरूरत महसूस होने लाग रही है। क्योंकि खेती करता टाइम या फसल बीजने के साथ गई भांत भांत का कीटनाशक दवाइयाँ उर्वरक खाद ना आगे उपज तो सांतरी ले लेवा। पर किसान भाइयों, इनमें चेतन वाली बात आ है कि आपने उपज तो ज़्यादा जरूर मिल जाएगी, लेकिन इंगे सागे सागे ज़्यादा रासायनिक खाद या दवाइयों को प्रयोग करके आप माटी की ताकत तो कम करण लाग रही हैं। इंगे सागे सागे मानव जीवन ने भी खतरा में पुगाने को काम करण लाग रहे हैं। वो इं के जद आप रासायनिक दवाइयाँ फसल पर छिड़का तो इंगो असर प्राणी जगत पर खान पान के माध्यम से सीधो पड़े। तो इं वास्ते आप जे आ रासायनिक खाद उर्वरकों को खेड़ो छोड़ गए, जे जैविक खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान

अभी ग्रामीण श्रोता चौपाल कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं यशुदास को फिल्म नैया में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे फिल्म अभिमान के नगमे।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आइए अब सुने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में ये नगमा।

ये थे लता मंगेशकर और मनहर। एक ही फिल्म से कार्यक्रम आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज आप सुन रहे हैं फिल्म अभिमान के नगमे। आइए सुने किशोर कुमार की आवाज में ये नगमा।

अभी आप एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुन रहे थे, आज आपने फिल्म अभिमान के नगमे सुने। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने को है। अब आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पे आज हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ विजय लोकपल्ली। विजय, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीता। आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू डांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। और एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता कल से गांधीनगर में शुरू होगी। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 4 गेंद शेष रहते ही 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के लिए उर्विल पटेल ने 23 गेंदों में ताबड़तोड़ 65 रन की पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। जबकि शहबाज अहमद और दिग्विजय राठी ने लखनऊ के लिए 2-2 विकेट लिए। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए थे। लखनऊ के लिए जॉश इंग्लिश ने 33 गेंदों में 85 रन की पारी खेली। चेन्नई की ओर से जेमी ओवर्टन ने 3 विकेट लिए। वहीं रायपुर में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच इस समय मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 11 ओवर में 3 विकेट खोकर 91 रन बना लिए थे। बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। तो पहले मैच की बात की जाए, चेन्नई

0: वापस लगता है कमबैक के मूड में नजर आ रही है विजय।
1: हाँ जी, इसमें अगर आप देखें, हिस्ट्री उठा के देखिए, चेन्नई की खासियत है कि जब आपको लगता है कि ये टीम गई, वो एक कुछ ऐसा पलटती है टूर्नामेंट का रास्ता कि कंटेंडर हो जाती है। और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि जिस ढंग से उन्होंने वापसी की है और उनके प्लेयर्स फॉर्म में आ रहे हैं, और ख़ास करके उरविल जैसे अगर खिलाड़ी हैं उनके पास जो मतलब किसी भी क्षण अपने दम पे मैच बदल सकते हैं, तो चेन्नई को किसी कभी भी आप रूल आउट नहीं कर सकते।
0: जी बिल्कुल, आपने उरविल का जिक्र किया और आज के मैच के स्टार कह सकते हैं, युवा खिलाड़ी है, लेकिन जो छक्के लगाए हैं आज, जो गेंद को बाउंड्री पार फेंका है, क्या कहेंगे इस तारीफ के लिए, इस खिलाड़ी के लिए।
1: एक टाइम टाइम था जब हम, मैं 14-15 साल का था, मैं सलीम दुर्रानी जी आते थे तो देखने जाता था, एक छक्का देखने को मिल जाएगा। यहाँ तो एक ही खिलाड़ी 8-8 छक्के मार रहा है। आप आज गेम बदल गया है, उनका टेक्निक बदल गया है, और उर्विल जो हैं वो मारते दम से हैं। मैं
0: जी
1: हाँ, क्योंकि गुजरात में और बड़ौदा में उनका बहुत रेपुटेशन है बड़े बड़े छक्के मारने का, और आज दिखाई दिया उन्होंने बड़े स्टेज पे कि कितने प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं वो।
0: जी बिल्कुल, अपनी प्रतिभा दिखाई। अगर दूसरे मुकाबले की बात कर ली जाए जो इस समय खेला जा रहा है, जहां आरसीबी और मुंबई इंडियंस आमने सामने हैं, मुंबई इंडियंस के लिए खोने के लिए बहुत कुछ इस प्रतियोगिता में बचा नहीं है, टीम 9वें स्थान पर है। और अगर आरसीबी की बात की जाए तो टॉप 4 में बने रहना इस समय आईपीएल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है, रोज टेबल बदलती है, कभी आप ऊपर कभी आप नीचे, 4थे नंबर पर है आरसीबी, कितना सेफ महसूस कर रही होगी अपने आप को।
1: आरसीबी का सबसे मेन ये है कि उनको ना वो कॉन्फिडेंस है अब कि जो है वो डेफिनेटली प्लेऑफ में जगह बनाएंगे, और उनके पास वो क्षमता भी है, खिलाड़ी भी हैं। ये फैक्ट है कि विराट के होने से टीम को बहुत फ़र्क पड़ता है। और जहाँ तक मुंबई की बात है, वो तो बिल्कुल फिसलते चले गए हैं। मेरे ख्याल से अब तो हम कह सकते हैं कि वो तो आउट ऑफ रेकनिंग है, और वही हाल लखनऊ का है। उन लखनऊ का भी कोई टैक्टिक्स समझ में नहीं आते हैं, और ख़ास करके शक्ति आज जब हमने देखा, कप्तानी भी कोई मतलब थोड़ी निराशाजनक थी।
0: जी बिल्कुल, एक जो आपकी अंक तालिका में स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं आपके प्रदर्शन में नज़र आती है, आपके डगआउट में नज़र आती है, और ऐसा ही शायद इन टीमों के साथ भी देखने को मिल रहा है। और अब क्रिकेट के बाद बात करते हैं उन निशानों की जिन्होंने भारत के लिए आज पदकों की बारिश की। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत की तिकड़ी ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया।
2: Kumari on the line.
3: Nine.
2: Kumari into the nine. And that is a very impressive performance from India here in Shanghai.
4: भारतीय महिला रिकर्व टीम ने आज फाइनल मुकाबले में शानदार खेल कौशल और संयम का प्रदर्शन किया। भारतीय तिकड़ी ने उतार चढ़ाव भरे फाइनल मुकाबले में शूट ऑफ में चीन को 5-4 से हराकर 2021 के बाद तीरंदाजी विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। 4 सेट के मुकाबले के बराबरी पर समाप्त होने के बाद मैच शूट ऑफ में चला गया। निर्णायक क्षण में जब दबाव चरम पर था, तब अनुभवी दीपिका कुमारी ने दबाव के बीच इस यादगार जीत को पक्का करने की जिम्मेदारी संभाली और शूट ऑफ के आखिरी तीर पर महत्वपूर्ण 9 अंक हासिल किए। विश्व कप में यह भारत का दूसरा पदक है। इससे पहले कल प्रवीण जाधव ने कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश के पदकों का खाता खोला। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस उपलब्धि पर भारतीय टीम को बधाई दी है। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: विजय, अगर ये कहा जाए कि तीरंदाजी में विश्व कप के पहले चरण में और दूसरे चरण में भारत की साख बचाती हुई नजर आई, भारत की बेटियां, पहली बार भी एक ही पदक था जो मेक्सिको में खेला गया पहला चरण, और आज दीपिका का वो 9 पॉइंटर, क्या कहेंगे इस प्रदर्शन पे, क्योंकि जो सेमीफाइनल में इस टीम ने करिश्मा किया शायद उसको मेजबान चीन को हरा करके आज दोहराया है।
1: हाँ, जो आप बता रहे थे कि कोरिया को हराया, कोरिया और चाइना को एक ही टूर्नामेंट में बैक टू बैक आपने हरा के रिकव, मैं कहूँगा मुझे सबसे बड़ी इस जीत में ये अच्छा लगा कि दीपिका जो है उनका जो टेम्परामेंट है वो उन्होंने दिखाया यहाँ पे, और कितना प्रेशर होगा आप समझिए, उनको पता है कि इतने 9 पॉइंट लेने हैं इस शॉट में, और उन्होंने लिए वहाँ से जो है, और वो भी शूट ऑफ बहुत कठिन होता है शक्ति, और यहाँ पे मैं कहूँगा दीपिका के लिए मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि पीछे जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही थी उनकी बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, लेकिन उन्होंने अच्छी वापसी की है। और एशियन गेम्स वाले ईयर में, इस साल एशियन गेम्स भी हैं, तो इसमें आप आर्चरी से बड़ी उम्मीदें हैं।
0: जी बिल्कुल, आर्चरी से उम्मीदें होंगी, जहाँ पे एशियन गेम्स भी हैं और

0: कुछ वर्ष बाद जब ओलंपिक में उतरेंगे तो दीपिका शायद उस मेडल की कसक को भी पूरा करने में सफल साबित हों इसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए।
1: हाँ, दीपिका से उम्मीद है क्योंकि वो उस लायक हैं, मतलब
0: जी
1: वर्ल्ड लेवल की आर्चर हैं, और ऐसा कुछ कमाल करेंगी तो उनके लिए अच्छा, उनके करियर के लिए भी अच्छा है।
0: जी बिल्कुल। और अब तीरंदाजी के बाद बात करते हैं निशानेबाजी की, जहां कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू डांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने एकदम सटीक लगाए। दूसरे स्थान पर रही जहां इटली के साथ ये टीम थी, लेकिन क्योंकि क्वालिफिकेशन में हम इटली से पीछे थे इसलिए इस बार ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा और चीनी ताइपे ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, इटली ने रजत पदक जीता। तो सबसे अच्छी चीज़ तो यह है कि ये स्पर्धा अब ओलंपिक खेलों का भी हिस्सा है, तो ऐसे में हमारी दावेदारी जो है नज़र सब खेलों की, खिलाड़ियों की ओलंपिक जैसे आयोजनों पे होती है, तो एक अच्छा संकेत कि खिलाड़ी आ रहे हैं और मेडल्स लेकर के आ रहे हैं। पहला मेडल है इस जोड़ी का।
1: जी हाँ, और अगर आप देखिए, ये भी वही स्पोर्ट है जिसमें भारत ने हमेशा अच्छा किया है, और विश्व स्तर पे कहें या एशियन स्तर पे कहें, अच्छा परफॉर्म करते हैं और लगातार
0: जी
1: आपको टैलेंट मिलता जा रहा है।
0: जी बिल्कुल। अब तक इंडिविजुअल्स में हम देखते थे कि लगातार भारत के मेडल्स आ रहे थे ISSF की प्रतियोगिताओं में, लेकिन अब मिक्स्ड में और टीम लेवल पे भी भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मिस्र के गीजा में विश्व स्क्वाश प्रतियोगिता के दूसरे दौर में आज वीर चोटरानी का मुकाबला मिस्र के मुस्तफ़ा असल से होगा, जो कि विश्व नंबर एक खिलाड़ी हैं वर्तमान में। वीर चोटरानी ने पहले राउंड में हमवतन अभय सिंह को हराया था, और अगर बाकी खिलाड़ियों की बात की जाए तो रमित टंडन और सेंथिल कुमार का सफ़र भी समाप्त हो चुका है इस अभियान, इस प्रतियोगिता से, और अभय सिंह भी बाहर हो चुके हैं। तो एकमात्र चुनौती है और उम्मीद होगी विजय की आज कुछ बेहतर करें और अगले दौर में पहुँचें।
1: उन पे उम्मीदें तो रहेंगी क्योंकि अभय को जो है आप हरा के आगे पहुंचे हैं, और चोटानी भी ऐसा नहीं है कि कोई जो है मंझे खिलाड़ी नहीं है, पर यही है कि जब तक आप एक खिताब नहीं जीतेंगे आप उस रैकिंग में नहीं आते हैं।
0: जी बिल्कुल। अपनी पहचान बनाने के लिए वो खिताब की दरकार होगी, अभय को हरा करके हौसला मिला होगा और उम्मीद होगी कि खिताब की दौड़ में भी एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आए। गुजरात के गांधीनगर में कल से एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। भारत 44 वर्षों में पहली बार एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: चैंपियनशिप के लिए 28 देशों के लगभग 180 एथलीटों ने पंजीकरण कराया है। यह प्रतियोगिता आगामी राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के लिए योग्यता मार्ग में योगदान देने के कारण महत्वपूर्ण है। ओलंपिक और विश्व चैंपियनों से सजी स्टार खिलाड़ियों की सूची में कई ओलंपिक पदक विजेता और विश्व चैंपियन इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता में चीन 31 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष पर था। इस आयोजन में उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान के दल भी हिस्सा लेंगे, जबकि भारत, चीन और श्रीलंका चैंपियनशिप में 16-16 भारोत्तोलकों के साथ सबसे बड़ी टीम उतारेगा। भारत को घरेलू मैदान पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। भारतीय टीम में राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता विंध्या रानी देवी और अजीत नारायण, निरुपमा देवी, लवप्रीत सिंह, वेदा बरात भराली जैसे बड़े भारोत्तोलक शामिल हैं। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: काफी दिग्गज खिलाड़ियों से सजी हुई भारतीय टीम है, लेकिन शायद एक खिलाड़ी की कमी इस टीम को खले, ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू। इसके पहले गुजरात में अच्छा प्रदर्शन दिया है, लेकिन भारत को शायद उनकी कमी खलती भी नजर आएगी।
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका इश्यू है इंजरी, वो बार बार चोटिल हो जाती हैं, तो उससे वो उनके प्रिपरेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और जब आपके आपके दिमाग में बैठ जाए कि चोटिल होने का डर, उसमें फिर आपकी परफॉर्मेंस भी लड़खड़ाती है।
0: जी बिल्कुल। और अगर इस आयोजन से इतर एक बात और भी देखा जाए, इस पहलू की, गुजरात मेज़बानी कर रहा है, 44 साल में पहली बार भारत के पास मेज़बानी होगी, और गुजरात यहाँ से हर प्रतियोगिता दर प्रतियोगिता अपनी उस सभ्यता को भी साबित करना चाहेगा, क्योंकि अब आपको राष्ट्रमंडल खेल जैसे बड़े आयोजन की मेज़बानी करनी है। कितना बड़ा एक अवसर, या फिर कह सकते हैं कि एक वार्म अप की तरह ये आयोजन होने वाले हैं इस प्रदेश के लिए।
1: बिल्कुल, वार्म अप आपने सही शब्द इस्तेमाल किया यहाँ पे, और मैं ये कहूँगा कि कभी भी आप देखें, भारत जब मेज़बानी करता है ना, सबसे आगे ही रहता है, कभी कमियाँ नहीं रहती है। इंटरनेशनल लेवल के बहुत बहुत टूर्नामेंट्स कराए हैं, और गुजरात तो बहुत बड़ा हब उभर के आ रहा है। अगर आप देखें,
0: जी
1: कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी जो है तैयारी होगी, और आगे आप ओलंपिक का दावा कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी अगर आपको मिला तो वो भी सब सब कहते हैं कि बेस्ट होगा गुजरात उसको होस्ट करने के लिए। सो एक ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं।

0: की एक प्रिपरेशन है।
1: जी बिल्कुल, एक तैयारियों के रूप में इसको आंका जा सकता है, जो कि गुजरात ही दावेदारी कर रहा है ओलंपिक के लिए, तो कितना तैयार है 2036 की इस दौड़ के लिए, ये आजमाने के लिए तमाम इस प्रकार के तमाम जो टूर्नामेंट हैं आपके लिए काफ़ी सहायता करते हुए नजर आएंगे। फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई खिलाड़ियों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी भागीदारी की। इस बार संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना के सहयोग से ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी प्रिया मलिक और दीक्षा मलिक ने युवाओं को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। दीक्षा मलिक ने कहा कि हर इंसान को संडे ऑन साइकिल का हिस्सा बनना चाहिए।
2: मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सब लोगों को इतना एनर्जी में देख के, और बड़ा अच्छा लगा कि लोग इतना एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ रह के इतना अच्छे से खेलते हैं साइकिलिंग करते हुए।
1: तो एक अभियान जो धीरे धीरे पूरे जन आंदोलन का रूप ले रहा है। विजय, रोज संडे के दिन लोग अपनी छुट्टी के सुबह के आलस को त्याग करके उतरते हैं, साइकिल चलाते हैं और एक फिटनेस का संदेश और साथ ही साथ एक संदेश एक अच्छे पर्यावरण के लिए।
0: बहुत ही लोकप्रिय भी है और आप देखिए दिल्ली में बहुत सारे अब साइकिलिंग क्लब्स उभर के आए हैं, वो इस कारण से कि सबको लगता है कि एक संडे के दिन कम से कम आप सुबह जाके साइकिलिंग करेंगे, आपकी एक्सरसाइज भी होगी और एक पार्टिसिपेशन होता है, मास पार्टिसिपेशन, जहाँ पे नए नए दोस्त आप बनाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा वेंचर है।
1: जी बिल्कुल, और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी फुटबॉल की, जहाँ पे इंडियन सुपर लीग में इस समय नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और चेन्नई एफसी के बीच मुकाबला जारी है, जहाँ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 2-0 की बढ़त बना ली है और इसके पहले केरला ब्लास्टर्स ने मोहम्मदन क्लब को 3-1 से हराया है। तो फुटबॉल भी भारत में अगर लीग खेलों की बात की जाए, आईपीएल ने एक पूरी नज़ीर पेश की हमारे सामने कि किस तरह लीगों में आपके लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर मौजूद है, एक अच्छा पूल मिलता है, एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, फुटबॉल में ये लीग काफ़ी सार्थक साबित होती हुई नज़र आ रही है अब तक।
0: जी हाँ, और ये तो फुटबॉल का साल है, अब सारी नज़रें एक महीने में अमेरिका की तरफ होंगी जब वर्ल्ड कप विश्व कप फुटबॉल होगा। और ये आपने बात कही आईपीएल है या आईसीएल आईएसएल है, ये सब टूर्नामेंट्स और ये लीग बहुत बहुत ज़रूरी हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको एक बुनियादी स्तर पर खिलाड़ियों को एक अच्छा पूल प्रदान करने में काफ़ी सहायक साबित होती हैं। चलते चलते एक बार स्कोर बोर्ड पर वापस नज़र घुमा लेते हैं, जहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। मुंबई इंडियंस ने इस समय 14 ओवर में 4 विकेट खोकर 125 रन बना लिए हैं और तिलक वर्मा 33 गेंदों में 43 रन बना करके अभी भी डटे हुए हैं, तो टीम के लिए एक छोर भी संभाले हुए हैं और रन की गति को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। विजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से

0: ईंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता

0: चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
2: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के भिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर

0: ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है, ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।

सुगम संगीत कार्यक्रम में इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज कलाकार हैं जगजीत सिंह।

अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम सुन रहे थे। कलाकार थे जगजीत सिंह। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 9:30 होने को है। अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

0: In the National Programme of Features, you just heard a feature titled Of Memories and Milestones. Thank you for joining us on this journey through 90 years of sound, stories and milestones. Script, Boshuda Banerjee. Narrator, Rini Khanna. Additional voicing, Manoj Mainkar. Produced by Nitish Arora for the Central English Features Unit. This broadcast came to you from Akashvani, Delhi.
1: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। अब आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम रविवारी संगीत सभा, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: श्रीनिवास तेलंगाना के एक अग्रणी कर्नाटक संगीतकार हैं। एक संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे श्रीनिवास ने 7 साल की उम्र में अपनी मां श्रीमती डीएल तुलसी के मार्गदर्शन में वीणा शिक्षा का श्री गणेश किया। 9 साल की उम्र तक वे एक बाल प्रतिभा बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं
1: और उन्हें उगादि विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर ईमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
2: विद्वान डी श्रीनिवास ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन from Telangana was born into a musical lineage. He began the art of Veena at the age of 7 under the guidance of his mother Srimati D. L. Tulasi. By the age of 9, he was a child prodigy. The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top grade Veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. Emani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar style plucking pushed the boundaries of Veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian

0: Classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
1: आज रात के प्रसारण में विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
0: In tonight's broadcast, Vidwan D. Srinivas is accompanied on mridangam by Sri Yashwant Hampiholi and on ghatam by Sri M. Chandrakant.
1: Vidwan D. Srinivas ne apne veena vadan ki shuruaat raag gola mein Mysore Vasudevachar ki ek rachna se kar rahe hain jo aadi taal mein nibadh hai.
0: Vidwan D. Srinivas begins his veena recital with a composition of Mysore Vasudevachar in the raag Gaula set to Aditaal.

0: अब आप रामस्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन ऑफ रामस्वामी शिवन इन द राग सरसांगी सेट टू खंड चापू ताल।

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदिताल त्रिस्र गति।

0: निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास कंक्लूड्स हिज वीना रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ सदाशिव ब्रह्मेंद्र इन द राग आहिर भैरवी सेट टू आदिताल।

0: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एम के स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इसके साथ ही आज की रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on Mridangam by Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Shri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाश

0: The sporting event will conclude on the 17th of this month. Around 180 athletes from 28 countries will compete in one of Asia's biggest weightlifting events of the year. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर, एफएम पर 100.1 मेगा हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातः है पहली सभा में 5:52 पर पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।